आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
1: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
3: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
4: नमस्कार, सुप्रभात। इहा कार्यक्रम आपन देह आपन देखभाल जेकर करेली रउआ सब बेसब्री से इंतजार। अरे इंतजार काहे ना रही, राउर रेडियो दोस्त दीपाली जी रोज लेके आवेली रउआ स्वास्थ्य और सौंदर्य के चमकावे खातिर कुछ हेल्थ टिप्स और ब्यूटी टिप्स। चली आज के कार्यक्रम आपन दी आपन देखभाल की शुरुआत कई जाओ, जिमे आज हम बताए चिरचिटा यानी अपमार्ग के बारे में। दोस्त लोग, अपमार्ग के पौधा खेत में घास के साथ प्राय पावल जाला। ई शुष्क स्थान पर पैदा होला। ई पौधा लगभग 2 से 4 फुट ऊंचा होला। कर दो किस्म पावल जाला, लाल और सफेद। लाल रंग के अपमार्ग के डंठल लाल और ओई पर लाल रंग के दाग होला। जबकि सफेद अपमार्ग के डंठल और पत्ता हरा रंग के होला, जे पर सफेद भूरा रंग के दाग होला। एकर बीज कांटा के समान नुकीला होला। दोस्तों चले जानल जाओ अपमार्ग यानी चिरचिटा के गुण के बारे में। अपमार्ग के प्रकृति गर्म होला, जौन पीड़ा के दूर करेला। ई रुचिकारक दस्त लागे वाला, विपाक में कड़वा तीखा, अग्नि के दीपन करे वाला, विष दूर करे वाला, ज्वर हरे वाला। और कृमि नाशक भूख के नियंत्रण में रखे वाला, रक्त के शोधन करे वाला, गर्भधारण में सहायक और आसानी से प्रसव करावे वाला होला। यूनानी तिब में एकर कामोदीपक, धातु परिवर्धक, मूत्र लागे वाला और प्रथम श्रेणी के ठंडा मानल गयल बा। जड़ की राख में पोटाश अधिक मात्रा में पाए जाए के कारण ई क्षार युक्त दवा के महत्वपूर्ण घटक है, जेकर प्रयोग अम्ल नाश खातिर कही जाला। एकर बीज और सुखल बूटी पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाला। एकर जड़ की राख और पत्ता में अनेक तत्व पावल जाला, परंतु जड़ की राख में अपेक्षाकृत तत्व अधिक होला। जैसे इमे 30% पोटाश के क्षार, 7% सूरज क्षार, 13% चूना, 2% गंधक और नमक तथा 4% लोहा पावल जाला। जानल जाओ चिरचिटा यानी अपमार्ग की रोगोपचार के बारे में। गर्भाधान और संतान प्राप्ति खातिर यदि अपमार्ग की जड़ के साफ करके ओकर रस 5 ग्राम की मात्रा में मासिक धर्म समाप्त होके के बाद 21 दिन तक लगातार सेवन कर जाए तो गर्भ ठहर जाए। विकल्प के रूप में अपमार्ग के ताजा पत्ता के रस 10 ग्राम यानी 2 चम्मच के 200 ग्राम दूध के साथ मासिक धर्म समाप्त होके के बाद सेवन कर जाए तो गर्भ ठहरे की संभावना बलवती हो जाएगी।

0: गर्भवती महिला के प्रसव के पहले बहुत अधिक दर्द होके और ये प्रसव होके में देर हो रहा होके तो ओके कटी प्रदेश में अपमार्ग के जड़ समेत उखाड़ के बांधे से प्रसव आसानी से जल्दी और बिना दर्द हो जाए। परंतु बच्चा पैदा करे के तुरंत बाद जड़ के वही समय हटा दी वरना गर्भाशय भी बाहर निकल पड़ी। दूसर विधि है एकर कि पुष्य नक्षत्र या रविवार के दिन जड़ समेत उखाड़ल गई अपमार्ग के जड़ काला कपड़ा में लपेट के गर्भवती महिला के गला में बांधे से भी प्रसव शीघ्र और आसानी से हो जाला। शीघ्र पतन रोके और स्तंभन बढ़ावे खातिर अपमार्ग के जड़ के उखाड़ के धोली फिर एकर चूर्ण बना ली। आ ई चूर्ण ठंडा दूध के साथ रोजाना 10 ग्राम की मात्रा में कुछ समय तक लगातार सेवन करते रहे से लाभ हुई। अधिक और शीघ्र प्रभाव खातिर दूध में 1-2 चम्मच शहद भी मिला ली। स्वप्न दोष रोके खातिर अपमार्ग के जड़ के चूर्ण और मिश्री बराबर मात्रा में मिला के रोजाना 1 चम्मच के मात्रा में दिन में 2-4 बार सेवन करे से स्वप्न दोष समाप्त हो जाए। तिली के बढ़ल यानी अपमार्ग के जड़ के चूर्ण 15-25 ग्राम दिन में 2 बार लस्सी या दही के साथ 3-4 सप्ताह तक नियमित रूप से सेवन करे से तिल्ली के आकार सामान्य हो जाए और सूजन कम हो जाए। खांसी दूर करे खातिर अपमार्ग बूटी के भस्म तैयार करके ओके 4 गुना पानी में भिंगा के रात के रख दी। आ ई पानी के भाव पैदा होके तक उबाली। उबाले के बाद एके छान ली। एकर मात्रा 1/4 से 1/2 चम्मच रोजाना 2-3 बार सेवन करी तो प्राय सब प्रकार की खांसी में लाभ हो सकेला। चर्म रोग होके पे अपमार्ग के पत्ता के बांधे से तीखा औजार यानी चक्कू ब्लेड शीशा आदि द्वारा होके वाला घाव भी ठीक हो जाए। यदि अपमार्ग के पत्ता घाव पर बांधल जाए तो घाव सूख जाए। अल्सर और मस्सा खातिर एकर जड़ के राख के हड़ताल में मिला के मरहम तैयार करी और प्रभावित जगह पर लगाई। के कारण होखे वाला सूजन में जब गुर्दा सामान्य रूप से काम ना करे तो कई बार हाथ पाँव मुंह आदि पर सूजन आ जाला। तो ई रोग से निवृत्ति खातिर 60 ग्राम अपमार्ग के पत्ता के 150 ग्राम पानी में 20-30 मिनट उबाल के काढ़ा तैयार करी। के ठंडा करके छलनी से छान ली। दिन में 2-3 बार ई काढ़ा की 30-60 ग्राम मात्रा लेवे से सूजन मिट जाए। विष दंत में अपमार्ग के पत्ता के पानी में पीस के लेप तैयार करी। तैयार करके उस स्थान पर लगाई जहाँ कीड़ा मकोड़ा मक्खी मकड़ी या कोनो अन्य जहरीला जानवर कटले होके तो ऐसे विष दंत खत्म हो जाए। दस्त पेचिश पेट दर्द बवासीर और पेट के अन्य रोग में अपमार्ग के पत्ता के चूर्ण बना के ओकर काढ़ा तैयार करके 1-3 चम्मच के मात्रा में दिन में 2-4 बार ओके मिश्री या शहद मिला के सेवन करें। शरीर के पुष्टि खातिर अपमार्ग के बीज के तवा पर धीमा आंच पर भून के ओकर चूर्ण बना ली। आ इमे बराबर मात्रा में मिश्री मिला के 10 ग्राम रोजाना प्राय सांगे दूध के साथ यदि नियमित रूप से सेवन कर जाए तो शरीर पुष्टि हो जाए। भूख मोटापा और वजन कम करे खातिर कुछ लोग आवश्यकता से अधिक भोजन करे के अभ्यस्त होला, जौना कारण उ लोग के शरीर के वजन बढ़े लगेला, परिणाम स्वरूप उ मोटा होके लगेला। सब लक्षण पर काबू पावे खातिर अपमार्ग के खीर बना के रोजाना सेवन करे के चाहिए। ऐसे शरीर में जमा होकर अतिरिक्त चर्बी घटे लगी। कमजोर दांत और दांत में दर्द, मुंह से दुर्गंध आवल के शिकायत दूर करे खातिर अपमार्ग के फूल के मंजरी के पीस के ऐसे दांत के मालिश करे। दांत में पीड़ा होके त अपमार्ग के पत्ता के रस वेदना में दांत पर लगाई, दांत के बदबू दूर करे और दांत के मजबूत करे खातिर रोजाना अपमार्ग के जड़ या तना के दातुन करी, इसे अन्य दांत रोग भी दूर हो जाए। मलेरिया ज्वर से बचाव खातिर जे दिन मलेरिया ज्वर फैले के आशंका होके उ दिन मलेरिया से बचाव खातिर अपमार्ग के पत्ता और काली मिर्च के समान मात्रा में लेके पीस ली। और फिर उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला के मटर के आकार की गोली बना ली। यदि मलेरिया फैले के आशंका होके या मलेरिया फैल रहा होके तो नियमित रूप से 2 से 4 दिन तक एक एक गोली भोजन के बाद ली। गंजापन में अपमार्ग के पत्ता के जलावे के बाद सरसों के तेल में मसल ली तो ये प्रकार मरहम तैयार हो जाए। यदि ये मरहम के गंजा वाला जगह पर रोजाना लगावल जाए तो गंजापन की जगह नया बाल उग सकेला। तो दोस्त लोग अब घड़ी के सुई कर रहल बा इशारा कि हम ली रउआ से जाए के विदा। तो रउआ सुनत रही रेडियो रिमझिम 90.4। नमस्कार।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
5: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: जो हाथ झाड़ के महफिल से न निकले वो जुआरी क्या। वाह, तो पांडव भी अपना सब कुछ उठाकर वनवास के लिए निकल पड़े। इस बात का सबसे ज्यादा दुख देवव्रत भीष्म को हुआ। मैंने भीष्म को टूटते और बिखरते देखा है। मैं आकाश हूं, वो आंख जो सब कुछ देखती है। भीष्म भले ही शरीर से कौरवों के साथ थे, लेकिन मन से वो हमेशा पांडवों के साथ रहे। वो कभी अपने लिए नहीं जिए, लेकिन अगर उनका कुछ अपना था तो वो था उनका कुरुवंश। इसी कुरुवंश के लिए उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का प्रण किया था। उनका ये त्याग देखकर सत्यवती के पिता निषाद राज भी झुक गए थे। त्याग और बलिदान ने मुझे जीत लिया थे व्रत। एक बेटा अपने पिता के लिए ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा कर सकता, ऐसा मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। अब महान है देवव्रत, अब सचमुच महान। ऐसी प्रतिज्ञा आज तक इस संसार में न किसी ने की है और न कोई कर सकेगा। मैं निशान इसी समय अपनी पुत्री का हाथ आपके पिता महाराज शांतनु को देता हूं।
7: तुम्हें देखकर जीवन में पहली बार लग रहा है जैसे मेरी कल्पना सच हुई। सत्यवती, मैंने असंभव को पाने की कल्पना की थी और तुमने उसे सच कर दिया। धन्य हो, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी भूल नहीं पाऊंगा। सत्यवती, तुम्हारा प्रेम मुझ प्यासे के लिए अमृत समान है। तुम्हें पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। सत्यवती,
8: आपके मुख से सत्यवती नाम सुनना अच्छा लग रहा है। निषाद पुत्री हूँ, इसलिए मछलियों के साथ खेलते हुए मेरा बचपन बीता है। सब मुझे मत्स्यगंधा कहते थे, फिर एक महर्षि ने मेरा नाम सत्यवती रखा।
7: अब तुम एक महान राजवंश की महारानी हो सत्यवती, गुरुकुल की प्रतिष्ठा हो।
8: आपका ये प्रेम मेरे लिए ईश्वर के आशीर्वाद समान है महाराज। पर आपको याद है न स्वामी, जब आपने मेरी कामना की थी तब मेरे पिता ने आपसे क्या वचन मांगा था?
7: मुझे याद है देवी, उन्होंने कहा था कि वो इस संबंध के लिए तभी तैयार होंगे जब तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न पुत्र ही मेरा उत्तराधिकारी होगा। पर मेरे लिए ये वचन देना इतना असंभव था कि मैं निराश होकर हस्तिनापुर लौट आया था, तुम्हें भूलने की कोशिश करने लगा था। पर सत्यवती, तुमसे दूर होकर मैं अपने आप में घुटने लगा था, तुम्हें खोकर मैं अंदर ही अंदर बिखरता जा रहा था। पर अचानक जाने ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि तुम मेरे जीवन में वापस लौट आई, और अब तुम्हें अपने सामने पाकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सारा संसार तुम्हारे सौंदर्य के मधुरस में डूबता जा रहा है।
8: तो क्या महाराज, कभी आपके मन में ये प्रश्न नहीं आया कि अचानक ये चमत्कार कैसे हुआ? मेरे पिता आपसे मेरा विवाह करने के लिए तैयार कैसे हो गए?
7: मुझे तो लगता है सत्यवती कि ईश्वर बहुत दयालु हैं। उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। तुम्हारे पिता इस विवाह के लिए तैयार हो गए, ये ईश्वर का ही चमत्कार हो सकता है।
8: क्या आप जानना चाहते हैं कि ये चमत्कार करने वाला वो ईश्वर कौन है?
7: ये क्या कह रही हो सत्यवती?
8: वो ईश्वर कोई और नहीं, आपका पुत्र है महाराज, आपका पुत्र देवव्रत।
7: क्या देवव्रत ने ऐसा क्या किया?
8: आपके पुत्र देवव्रत ने आपके विवाह के लिए सिंहासन का त्याग और जीवन भर अविवाहित रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की है। उसने मेरे पिता को वचन दिया है कि मेरा पुत्र ही आपका उत्तराधिकारी होगा।
7: नहीं देवी, नहीं, ऐसा ना कहो। देवव्रत ने अपने पिता के विवाह के लिए आजीवन अविवाहित रहने का व्रत ले लिया? हे ईश्वर, एक पिता के लिए इससे दुखद और क्या हो सकता है?
9: मैं विवश था पिताश्री, मैं बस आपको सुखी देखना चाहता था।
7: देवव्रत।
9: हाँ पिताश्री, हाँ, मुझसे आपकी पीड़ा नहीं देखी गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आप ऐसे किस दुख में डूबे हैं, और फिर जब मुझे पता चला कि कौन सी पीड़ा आपको मृत्यु के मुख में धकेल रही है, तो मैं निषाद राज से मिला। आपके दुख के सामने मेरे लिए इस त्रिभुवन का सिंहासन बहुत ही छोटा है पिताश्री।
7: पर तुमने ऐसा क्यों किया पुत्र, ऐसा क्यों किया? मेरे लिए अपने सुखों की बलि क्यों दी?
9: पिता के सुख के लिए क्या एक पुत्र इतना भी नहीं कर सकता? क्या पिता को प्रसन्न देखना एक पुत्र की इच्छा नहीं होनी चाहिए पिताश्री? ऐसा कौन सा महान त्याग कर दिया है मैंने? आपका उत्तराधिकार मुझे मिले या मेरे भाइयों को, इससे क्या अंतर पड़ता है पिताश्री?
7: देवव्रत, जब तक ये धरती है ये संसार मुझे धिक्कारेगा पुत्र, धिक्कारेगा मुझे। मेरे इस महापाप के लिए ईश्वर मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा पुत्र।
9: नहीं पिताश्री, नहीं, ये पाप नहीं है। मैंने केवल कुरुवंश की मर्यादा का पालन किया है, अपना पुत्र धर्म निभाया है मैंने।
7: पर क्या मैं कभी इस सोच से मुक्त हो सकूंगा गंगा पुत्र, कि तुमने एक ऐसी प्रतिज्ञा की है जो संसार में आज तक किसी पुत्र ने नहीं की? मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा तो वापस नहीं कर सकता गंगे, परंतु तुम्हारी पितृ भक्ति के सामने सर झुकाकर तुम्हें वरदान देता हूँ पुत्र, कि तुम सदा इस धरती पर रहोगे और संसार का कल्याण करते रहोगे। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी इच्छा से ही होगी और अपनी इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण तुम भीष्म कहलाओगे पुत्र, भीष्म।
9: मैं आपको वचन देता हूं पिताश्री, कि आपका उत्तराधिकारी चाहे कोई भी हो, मैं कुरुवंश की मान मर्यादा और सम्मान पे कभी आंच नहीं आने दूंगा। यदि अपने प्राण देकर इस महान वंश की रक्षा करनी पड़े तो मैं वो भी करूंगा।
6: एक सच्चाई और है, वो ये कि कुरुवंश की ही परंपरा को निभाते हुए भीष्म ने वो सब कर डाला जो उनको नहीं करना चाहिए था। मतलब ऐसा भी क्या त्याग कि सत्यवती की जायज ना जायज मांगे मानते जाओ।
8: मेरा पुत्र विचित्र वीर आज हस्तिनापुर राज सिंहासन का अधिकारी है देवव्रत। तुम्हारे त्याग के कारण ही मैं आज राजमाता हूँ, किंतु अब मेरी चिंता ये है देवव्रत कि विचित्र वीर्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। तुम तो जानते हो अभी तक उसके योग्य कन्या ही नहीं मिली, पर आज काशीराज की कन्याओं के रूप और गुणों की चर्चा सारे आर्यवर्त में है। यदि वो हमारी कुलवधु बन सकती तो हम हस्तिनापुर के योग्य उत्तराधिकारी पा सकते हैं, है ना देवव्रत?
9: आप क्या चाहती हैं माते? मैं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए क्या कर सकता हूँ?
8: काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है, पर हस्तिनापुर के मान और शक्ति से चिढ़कर उन्होंने हमें न्योता नहीं भेजा।
9: दुस्साहस किया है उन्होंने, कुरुराज के प्रति दुस्साहस किया है। पर मैं आपको वचन देता हूँ माते, कि काशीराज चाहे जितने बड़े स्वयंवर का आयोजन करें, काशी की कन्याएं हस्तिनापुर में ही ब्याही जाएंगी।
8: क्रोध में कोई निर्णय ना लो पुत्र, मैं केवल इतना चाहती हूँ कि काशीराज की कन्याओं का विवाह हमारे पुत्र से हो। अब ये कैसे होगा तुम समझो, पर शत्रुता का उत्तर शत्रुता से देना ठीक नहीं है।
9: प्रश्न केवल विचित्र वीर के विवाह का नहीं है माते, प्रश्न कुरुकुल के अपमान का है। काशीराज की पुत्रियों के स्वयंवर में मैं स्वयं जाऊंगा।
10: मैं काशीराज, मेरी पुत्रियों की स्वयंवर सभा में विभिन्न राज्यों से आए आप सभी राजाओं महाराजाओं युवराजों का स्वागत करता हूँ। मुझे विश्वास है आप में से हमारी तीनों कन्याओं अंबा अंबिका और अंबालिका को सुयोग्य वर मिलेंगे। मैं विशेष रूप से सौराज शाल्व का इस सभा में पधारने के लिए आभारी हूँ जो हमारी पुत्री अंबा के।
9: ये स्वयंवर नहीं हो सकता,
10: ये ब्रह्मचारियों की सभा नहीं है गंगा पुत्र भीष्म, यहाँ आपकी कोई आवश्यकता नहीं है।
9: तुम्हारे इस अहंकार के लिए मैं इसी क्षण तुम्हारे प्राण ले सकता हूँ काशीराज।
11: हस्तिनापुर को निमंत्रण ना भेजकर तुमने कुरुराज का अपमान किया है। इसका दंड भोगना होगा तुम्हें। सैनिकों, उठा लो काशीराज की तीनों कन्याओं को।
10: रुक जाओ गंगा पुत्र, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा।
11: मुझे ललकारने का दुस्साहस मत करो काशीराज, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी मूर्खता काशी का सर्वनाश कर बैठे। मैं गंगा पुत्र भीष्म काशीराज की तीनों कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका को हस्तिनापुर ले जा रहा हूँ और इस पूरी सभा को चुनौती देता हूँ कि यदि किसी में मुझे रोकने का साहस है तो मेरे सामने आए।
10: नहीं नहीं, रुक जाओ गंगा पुत्र भीष्म।
12: छोड़िए मुझे।
10: ये क्या कर रहे हो आप?
12: छोड़ो छोड़ो, ये आप अनर्थ कर रहे हैं।
10: ये घोर अन्याय है।
12: छोड़ो दुष्ट, छोड़िए।
10: रुक जाओ,
12: मुझे बचा लो शाल।
13: अम्बा को मुक्त कर दो देवव्रत।
11: मेरा सामना करो शाल, मुझसे युद्ध करो। है कोई शेष जो देवव्रत भीष्म का सामना करे? मैं इस सभा में उपस्थित समस्त राजाओं को युद्ध की चुनौती देता हूं।
14: ये कौन सी राज परंपरा है महाराज? कैसी परंपरा है ये? क्या ये हम कन्याओं का अपमान नहीं है?
15: आपने हमारी स्वतंत्रता छीनी है देवव्रत भीष्म, हमसे हमारे पति चुनने का अधिकार छीना है आपने।
11: तुम सबके साथ न्याय होगा, अवश्य न्याय होगा। आज भी ये संसार गांगेय भीष्म के न्याय पे उंगली नहीं उठा सकता।
14: संसार भले आपके भय से आप पर उंगली ना उठाए गंगा पुत्र, पर मैं चीख चीख कर कहूंगी कि मेरा हरण करके आपने मेरे साथ अन्याय किया।
10: देवव्रत भीष्म ने हमारी कन्याओं का स्वयंवर भंग कर आर्यव्रत के सभी राजाओं की मान पर चोट पहुंचाई है। मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं कर सकता।
16: पर मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है महाराज। अम्बा हृदय से मुझे अपना पति मान चुकी थी। मैंने भी अम्बा को वचन दिया था कि मैं उसी से विवाह करूंगा।
10: किंतु आपको ये सत्य भी स्वीकारना होगा कि आप महाराज होकर भी अपनी होने वाली पत्नी की रक्षा नहीं कर सके।
16: स्वीकार करता हूँ महाराज, पर पूरे आर्यवर्त में ऐसा कौन राजा है जो भीष्म की चुनौती को स्वीकार कर सके? आप भी तो थे स्वयंवर सभा में, आपने भीष्म की चुनौती को क्यों नहीं स्वीकार किया? क्यों हाथों पे हाथ धरे बैठे रहे?
10: किंतु ऐसे आपस में टकराने से क्या होगा? हम सभी को मिलकर भीष्म का सामना करना होगा। मैं पहले से ही जानता था कि भीष्म अपनी शक्ति के अहंकार में ऐसी ही मनमानी करेंगे, इसीलिए मैंने उन्हें निमंत्रण नहीं भेजा था। लेकिन जो होना था वो तो हो ही गया।
17: हाँ ठीक है भैया, मान रहे हैं कि देवव्रत भीष्म जैसा त्याग और किसी ने नहीं किया, पर जैसे धृतराष्ट्र अपने बेटों के मुंह में फंसे थे, उससे कहीं अधिक भीष्म कुरुवंश के मुंह में फंसे थे, नहीं? और अपने इसी मोह में वो एक ऐसी पहेली बन गए जिसे सुलझाना खुद उनके लिए असंभव हो गया। अरे यहां कोई सदा के लिए आया है क्या? फिर काहे का मोह, काहे की माया। महाभारत।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
6: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
7: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
6: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
7: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
6: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
7: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
6: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
8: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
9: स्टूडियो 5 एन इस्लामिक

0: बताऊं यार, मेरी मामा तो मुझे कभी भी रोजा नहीं रखने देती।
1: क्यों भाई क्यों, वो क्या कहती हैं?
0: मेरी मामा कहती हैं

0: आमदा, क्या तुम्हारी मम्मा तुम्हें रोजा रखने देंगी?
1: नहीं यार, मेरी मामा तो बड़े प्यार से समझाती हैं।
0: अच्छा, वो क्या कहती हैं?
1: मेरी मामा तो ये कह देती हैं।

0: यार खिजर, तुम तो रोजा रखते होगे, तुम्हारे घर वाले तो नहीं मना करते होंगे।
1: नहीं यार, मेरे घर वाले तो हर साल यही कहते हैं।
0: क्या कहते हैं खिजर, हमें भी बताओ।
1: अम्मी जान तो यही कहते।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और

0: आसान फाइनेंस सुविधा के साथ।
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
4: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पीएम विश्वकर्मा योजना की हुई समीक्षा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को दी गई श्रद्धांजलि, शिक्षक निर्वाचन को लेकर सांसद के आवास पर हुई खास बैठक, सिधवलिया महावीरी अखाड़ा में 150 लोगों पर केस दर्ज और सड़क हादसे में एक युवक की हो गई दर्दनाक मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। आज जिलाधिकारी समीर सौरभ के अध्यक्षता में पीएम विश्वकर्मा योजना के आवेदनों की समीक्षा की गई। इस दौरान कुल 34 आवेदन की बिंदुवार तरीके से जिलाधिकारी ने समीक्षा की, जिसमें 12 आवेदन को स्टेज 3 के लिए योग्य पाते हुए अग्रसारित किया गया, तो वहीं कुल 22 आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने बैंक समन्वयकों को स्वीकृति और भुगतान में तेजी लाने का निर्देश दिया। वहीं PMFME योजना में 67 आवेदन स्वीकृत हुए और 46 आवेदन का भुगतान भी किया गया। पीएम विश्वकर्मा योजना में 278 आवेदन स्वीकृत हुए हैं और 234 लाभुकों को भुगतान भी किया गया है। योजनाओं के लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए बैंक और विभाग में बेहतर समन्वय स्थापित कर कार्य करने का जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया। भाजपा के जिला कार्यालय पर आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश मंत्री जन्मेजय सिंह, पूर्व मंत्री जनक राम और विधान पार्षद राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू मौजूद रहे। भाजपा नेताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों और अंत्योदय के दर्शन को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। जन्मेजय सिंह ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान पंडित दीनदयाल जी के चिंतन का मूल मंत्र था। तो वहीं जनक राम ने राष्ट्र सेवा, सादगी और सिद्धांत निष्ठा को याद करते हुए पंडित दीनदयाल जी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने बताया कि उनके जीवन की प्रेरणा सादगी, सत्य निष्ठा, राष्ट्र सेवा और सिद्धांत निष्ठा थी। विधान पार्षद ने सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संदेश और संवाद जैसे 7 सूत्रों का उल्लेख किया। जयंती कार्यक्रम में भाजपा के पदाधिकारियों और सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सिधौलिया में आयोजित हुए महावीरी झंडा और अखाड़ा को लेकर पुलिस ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। लगभग 150 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। सिधौलिया पुलिस के सशस्त्र बल के साथ हसनपुर अहिर टोला महावीरी मेला जुलूस में विधि व्यवस्था ड्यूटी और गश्ती के लिए तैनात की गई थी। इसी क्रम में हसनपुर अहिर टोली स्थित अखाड़ा के पास एक ट्रैक्टर पर डीजे ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से तेज आवाज में अश्लील भोजपुरी गीतों को बजाया जा रहा था। जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश और प्रतिबंध के बावजूद भी अखाड़े में शामिल लोग और कार्यकर्ताओं द्वारा तेज आवाज में डीजे बजाया गया। साथ ही ऑर्केस्ट्रा का आयोजन कर अश्लील नृत्य कराया गया। जुलूस में शामिल कुछ व्यक्तियों द्वारा लाठी डंडा और अन्य हथियारों का भी सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया था। मौके पर मौजूद पुलिस बल और पदाधिकारियों ने उपस्थित लोगों को प्रशासन के जारी आदेश, अनुमति, लाइसेंस इत्यादि के निर्धारित शर्तों का पालन करने और डीजे तथा अश्लील कार्यक्रम को बंद करने और हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करने के लिए समझाया गया। इसके बावजूद भी निर्देशों की अवहेलना करते हुए कार्यक्रम को जारी रखा गया, जिससे आम जन में भय और असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न होने और विधि व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए घटना से संबंधित वीडियो फुटेज और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। इस मामले में अखाड़ा संचालक और उनके सदस्यों, डीजे संचालक, ट्रैक्टर मालिक और ऑर्केस्ट्रा संचालक को नामजद करते हुए कुल 14 नामजद और 100 से 150 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें एक पावर ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ और साउंड बॉक्स इत्यादि को पुलिस ने जब्त भी किया है और अब इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट कहा है कि झंडा मेला में प्रशासन के दिशा निर्देशों का अगर उल्लंघन किया गया तो पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी आनंद पुष्कर का गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद सांसद आवास पर शिक्षक निर्वाचन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की गई। शिक्षकों के अधिकार, सम्मान और समस्याओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। शिक्षकों के बीच जनसंपर्क और संवाद अभियान को व्यापक बनाने पर जोर दिया गया। इस दौरान सांसद ने कहा कि शिक्षक समाज राष्ट्र निर्माण की आधार शिला है। शिक्षकों के मुद्दों को मजबूती से सदन तक पहुंचाने का उम्मीदवार पुष्कर आनंद ने संकल्प लिया और सभी शिक्षकों से उन्हें वोट देकर विजयी बनाने की अपील की। गोपालगंज शहर के तुरकहा पुल के पास एक दुखद सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। मृतक उचका गांव थाने के सांखे खास के रहने वाले सोनू कुमार बताए जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी अनुसार सोनू अपने पिता हरेंद्र कुमार का इलाज कराने के लिए शहर के एक निजी हॉस्पिटल में आया था। पर्ची लगाकर बाइक से लौट रहा था, तभी ई रिक्शा चालक ने अचानक रिक्शा को मोड़ दिया, जिससे मोटरसाइकिल जाकर ई रिक्शा में टकरा गई और इस घटना में बाइक सवार की जान चली गई। इसको लेकर पीड़ित के परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में भेजा और इस मामले की गहराई से जांच पड़ताल कर रही है। अलग अलग थाना की पुलिस ने 24 घंटों में कुल 19 लोगों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया था। इन सभी को आज न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस दौरान लगभग 200 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब को भी जब्त किया गया और आधा दर्जन वाहन भी पकड़े गए। इसमें कोर्ट के द्वारा जारी वारंट, NDPS एक्ट और अन्य मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। आज पुलिस केंद्र में लाइन डे का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने पुलिस कर्मियों की समस्याएं सुनी। पुलिस कर्मियों ने पुलिस अधीक्षक के सामने अपनी मांगे और समस्याओं को रखते हुए निवेदन किया था। SP ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित समाधान का निर्देश दिया। पुलिस कर्मियों की शिकायतों के निष्पादन में प्राथमिकता और तत्परता बरतने का भी निर्देश दिया गया। लाइन डे का उद्देश्य पुलिस कर्मियों की समस्याओं का सीधे समाधान करना बताया जा रहा है। इधर KGBV के वार्डन और लेखपालों के साथ DO अमरेंद्र कुमार पांडे ने बैठक की, जिसमें छात्रावास, शौचालय, रसोई और परिसर की नियमित साफ सफाई का निर्देश दिया। तो वहीं जर्जर भवन, शौचालय और चहारदीवारी की मरम्मत का भी प्रस्ताव तत्काल देने का निर्देश दिया गया। छात्राओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही गई। लक्ष्य के अनुरूप 100% नामांकन और छात्राओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। वहीं छात्राओं को मेन्यू के अनुसार समय पर गुणवत्तापूर्ण भोजन देने के भी निर्देश दिए गए। कहानी बदलाव की के तहत छात्राओं से 1 मिनट का वीडियो क्लिप बनवाने का भी निर्देश दिया गया और लापरवाही मिलने पर संचालक, वार्डन और लेखपाल पर कड़ी विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। आज गोपालगंज में राजद पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला दहन किया। शहर में राजद कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर मोनिया चौक पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पुतला को दहन किया। इस दौरान पार्टी के नेताओं ने कहा कि SIR प्रक्रिया और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर देश भर में लोगों में आक्रोश है। नेताओं ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाता सूची को लेकर सवाल उठाए। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई। बेलबनवा के संकट मोचन हनुमान मंदिर पर प्रशासन की अब कार्रवाई लगातार जारी है। प्रशासन ने मंदिर की व्यवस्था को अपने नियंत्रण में ले लिया है। मंदिर के महंत और सहयोगियों को परिसर से हटा दिया गया। धार्मिक न्यास परिषद के निर्देश पर 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है जो मंदिर की निगरानी कर रही है। मंदिर की सुरक्षा के लिए महिला और पुरुष बल की भी तैनाती की गई है। साथ ही प्रशासन ने दान पेटियों को अपने संरक्षण में लिया है और राशि बैंक खाते में जमा कराने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। वायरल वीडियो के मामले में कुचायकोट थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कर दी गई है और जांच जारी है। साथ ही वायरल वीडियो को तकनीकी और वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत डिजिटल साक्ष्य के रूप में सुरक्षित भी रखा गया है। आज जदयू पार्टी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें जिला अध्यक्ष राधेश्याम साहनी ने अध्यक्षता की। समीक्षा बैठक में प्रदेश से आए जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बबलू कुमार मंडल तथा पार्टी के एकमा से विधायक मनोरंजन कुमार सिंह उर्फ धूमल सिंह और पार्टी के सूर्यगढ़ा से विधायक रामानंद मंडल जी का भी अंगवस्त्र और पुष्प गुच्छ से पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद पटेल ने स्वागत किया। इस दौरान राधेश्याम साहनी ने स्वागत करते हुए सम्मानित भी किया। बैठक में तमाम पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के भी कार्यालय में आज शिकायतों की सुनवाई की गई और समस्याओं को निष्पादित करने के लिए संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को पुलिस अधीक्षक ने आवश्यक निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने माझागढ़ थाने का भी वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान अपराध नियंत्रण, शराब तस्करी पर रोक लगाने और फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए आवश्यक निर्देश दिया गया। साथ ही थाना परिसर की साफ सफाई, अभिलेखों का संधारण और रखरखाव को लेकर भी जांच पड़ताल करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस दीदी की टीम लगातार स्कूलों और बाजारों इत्यादि में पेट्रोलिंग कर रही है। इस दौरान पिंक कलर की स्कूटी और हेलमेट पहने पुलिस दीदियां लगातार विद्यालयों में छात्राओं महिलाओं से संवाद कर रही हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर उन्हें आश्वस्त कराया जा रहा है। फाइलेरिया के संक्रमण को रोकने के लिए उसकी पहचान को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि फाइलेरिया के ऐसे संक्रमण की पहचान हो रही है जिसमें बीमारी के लक्षण स्पष्ट सामने नहीं आए हैं। इसके लिए गोपालगंज में नाइट ब्लड सर्वे की तैयारी तेज कर दी गई है। कुचायकोट प्रखंड को छोड़कर शेष 13 प्रखंडों में यह सर्वे कराया जाएगा। इसके तहत 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के रक्त के नमूने रात में लिए जाएंगे। प्रत्येक प्रखंड में एक स्थायी और 2 अस्थायी स्थल चिन्हित कर रक्त संग्रह की व्यवस्था की जाएगी। स्वास्थ्य कर्मियों को सर्वे की प्रक्रिया और नमूना संग्रह की तकनीक का प्रशिक्षण देने के लिए सदर अस्पताल में 2 दिवसीय क्षमता संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर सुषमा शरण ने की। पीरामल के जिला प्रतिनिधि मिथिलेश कुमार ने स्वास्थ्य कर्मियों को तकनीकी जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान नाइट ब्लड सर्वे की आवश्यकता, रक्त नमूना संग्रहण की प्रक्रिया और निर्धारित समय में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा प्राप्त नमूनों की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी दी गई। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर सुषमा शरण ने बताया कि नाइट ब्लड सर्वे के लिए जिले के 13 प्रखंडों के प्रत्येक प्रखंड में 3 स्थल निर्धारित किए जाएंगे। इनमें 1 स्थायी स्थल यानी सेंटिनल साइट और 2 अस्थायी स्थल यानी रेंडम साइट होंगे। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बारिश की संभावना बनी हुई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। PM विश्वकर्मा योजना की हुई समीक्षा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को दी गई श्रद्धांजलि, शिक्षक निर्वाचन को लेकर सांसद के आवास पर हुई खास बैठक, सिधौलिया महावीरी अखाड़ा में 150 लोगों पर केस दर्ज और सड़क हादसे में एक युवक की हो गई दर्दनाक मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
9: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
10: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
11: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0-97-06-575।
12: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
13: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
13: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
14: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
15: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
14: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
16: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अभय। अब हमने यह प्रोग्राम इसलिए शुरू किया था कि लोगों को सेहत के बारे में पता चले और साथ ही उनके सेहत पर होने वाले खर्चे कम हो। तो श्रोताओं, आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान PMJAY की बात करने वाले हैं, जो कि आपके जेब के खर्चे बचाता है। और यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। इसका मकसद है कि हर जरूरतमंद नागरिक को सही और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मिले, चाहे वो गांव में रहता हो या शहर में। आयुष्मान भारत के तहत दो बड़ी सुविधाएं दी जाती हैं। पहला, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, और दूसरी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJAY के तहत बड़े अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा। कहने का मतलब है कि अगर किसी को बड़ा ऑपरेशन करवाना पड़े या लंबे इलाज की जरूरत हो तो उसे पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ती। सरकार की तरफ से पूरा खर्च कवर किया जाता है। इस विषय पर और बेहतर जानकारी के लिए हमारे साथ हैं सेहतिया भैया। सेहतिया भैया सेहत संबंधी काम की बातें आसानी से समझाते हैं।
1: RJ और सभी श्रोताओं को भी मेरा धन्यवाद। भाई सच कहूँ तो आयुष्मान PM जन आरोग्य योजना देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। हमारे ही गांव के एक किसान है मनोज जी, उन्हें कुछ महीने पहले हार्ट की सर्जरी करवानी पड़ी। खर्च लगभग 4 लाख रुपए था, जो उनके लिए नामुमकिन था, लेकिन उनके पास आयुष्मान कार्ड था। उन्होंने PM जन आरोग्य योजना की सुविधा का लाभ उठाते हुए इस स्कीम के अंतर्गत सक्रिय प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त सर्जरी करवाई। अब वो बिल्कुल ठीक है और खेत में काम भी करने लगे हैं। अगर आयुष्मान PM जन आरोग्य योजना नहीं होती तो शायद मनोज जी जिंदा नहीं रहते। PM जन आरोग्य योजना खास तौर पर उन परिवारों के लिए होती है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। इसके तहत हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है, वो भी कैशलेस यानी बिना एक पैसा दिए। अब इलाज चाहे सरकारी अस्पताल में हो या किसी सूचीबद्ध या इम्पैनल्ड प्राइवेट अस्पताल में, बस आयुष्मान कार्ड होना चाहिए।
0: वाह भैया, सच में ये तो बहुत बढ़िया योजना है। लेकिन एक बात बताइए कि आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कौन पात्र है, मतलब कौन इस योजना का फायदा ले सकते हैं?
1: देखिए, आयुष्मान PM जन आरोग्य योजना खास तौर पर गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बनाई गई है, जिन परिवारों के नाम सामाजिक आर्थिक जनगणना के रिकॉर्ड में हैं या जो मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत आते हैं, वे सीधे इस योजना के पात्र हैं। इसके अलावा जो भवन और निर्माण कार्य में मजदूरी करते हैं, अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 60 साल से ज्यादा उम्र के अकेले बुजुर्ग सभी इस योजना के दायरे में आते हैं। साथ ही विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, पंजीकृत पत्रकार, 70 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को भी आयुष्मान योजना का लाभ मिल सकता है। 70 साल से अधिक उम्र के लोगों पर तो आय की भी कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए 70 साल से अधिक किसी भी वर्ग के बुजुर्ग हो, वो आयुष्मान व्यय वंदन योजना के तहत सभी सुविधाएं ले सकते हैं।
0: भैया इसका मतलब सरकार ने हर वर्ग का पूरा ध्यान रखा है, चाहे वे मजदूर हो, आशा बहन हो या हमारे बुजुर्ग। लेकिन जरा ये बात बताइए कि PMJAY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से आखिर कितने लोगों को फायदा मिल रहा है और ये योजना इतनी खास क्यों मानी जाती है?
1: देखिए, आयुष्मान PM जन आरोग्य योजना कोई साधारण योजना नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। अब तक देश के 12 करोड़ से ज्यादा गरीब और कमजोर परिवार यानी करीब 55 करोड़ लोग इस योजना के तहत कवर किए जा चुके हैं। हर परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है, वो भी कैशलेस यानी बिना एक भी पैसा दिए। आयुष्मान PM जन आरोग्य योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर किसी को बड़ा ऑपरेशन करवाना हो या लंबा इलाज चलाना पड़े तो परिवार को कर्ज नहीं लेना पड़ता। पहले लोग महंगे इलाज के लिए जमीन बेच देते थे या उधार ले लेते थे, लेकिन अब आयुष्मान कार्ड से इलाज तुरंत और बिल्कुल मुफ्त हो जाता है।
0: आपने बिल्कुल सही कहा भैया, अब गरीब परिवार भी बिना चिंता के अच्छे अस्पतालों में इलाज करवा पा रहे हैं। अब ये बताइए कि आयुष्मान PM जन आरोग्य योजना में आखिर क्या क्या इलाज शामिल है, मतलब कौन कौन सी बीमारियों या सुविधाओं का खर्च सरकार उठाती है?
1: लोगों को यह जानना बेहद जरूरी है कि आयुष्मान PM जन आरोग्य योजना लगभग हर बड़ी बीमारी और इलाज को कवर करता है, पर सबसे अहम ये समझना है कि यह योजना इन बीमारियों के लिए है जिसमें हमें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। और तो और, इस योजना के तहत पहले से मौजूद बीमारियां भी शामिल होती हैं, यानी अगर किसी को पहले से ही शुगर, दिल की बीमारी, किडनी की समस्या हो तो उसके बावजूद इस बीमा योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड से इलाज हो सकता है। इसके अलावा योजना में करीब 1949 तरह की प्रक्रियाएं शामिल हैं, जैसे ऑपरेशन, डिलीवरी, कैंसर का इलाज, हार्ट सर्जरी और कई अन्य गंभीर बीमारियां। सबसे अच्छी बात ये है कि अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले का खर्च और भर्ती के बाद 15 दिन तक का खर्च दोनों सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। इनमें दवाइयाँ, टेस्ट, डॉक्टर की परामर्श फी और फॉलो अप विजिट्स का खर्च भी शामिल है।
0: इसका मतलब मरीज को इलाज के पहले और बाद की कोई चिंता नहीं रहती। लेकिन आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आखिर किसे किसे कवर किया जाता है? क्या सिर्फ परिवार का मुखिया या बाकी सदस्य भी इसके तहत आते हैं? और ये इलाज कहाँ और कैसे कराया जाता है?
1: देखिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में पूरा परिवार कवर होता है। मतलब इसमें माँ, पिता, बच्चे, नवजात शिशु, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं सभी को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। पर ध्यान रहे, परिवार के हर सदस्य का अपना अपना अलग अलग आयुष्मान कार्ड बना होना चाहिए। सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही नहीं बल्कि सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी इलाज मुफ्त होता है। आयुष्मान कार्ड दिखाइए और इलाज शुरू। सबसे अच्छी बात है कि अब तक इस योजना का 9 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फायदा उठाया है, यानी करोड़ों परिवार की सेहत अब सरकार की जिम्मेदारी है।
0: भैया, लोगों को इस योजना के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? गांव या छोटे कस्बों में तो कई लोग अभी भी नहीं जानते कि आयुष्मान कार्ड बनता कैसे है और इसका इस्तेमाल कहां करें। ऐसे में उन्हें कौन समझाता या मार्गदर्शन करता है?
1: दरअसल आयुष्मान पीएम जन आरोग्य योजना को जमीन पर सही तरीके से लागू करने में हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी भूमिका है। गांव और शहर दोनों जगह आशा बहनें, ANM, स्टाफ नर्स, मेडिकल ऑफिसर और आरोग्य मित्र सब लोगों तक योजना की सही जानकारी पहुंचाते हैं। इनका काम लोगों को बताना है कि आयुष्मान PMJAY क्या है, कौन कौन इस योजना के पात्र हैं और उन्हें सही अस्पतालों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। ये स्वास्थ्य कर्मी गांव-गांव जाकर उन परिवारों को पहचानते हैं जो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, फिर उन्हें कार्ड बनवाने में मदद करते हैं और इलाज के लिए सही जगह तक मार्गदर्शन भी देते हैं।
0: भैया, शायद इसीलिए कहा जाता है कि हमारे स्वास्थ्य कर्मी जैसे आशा बहने, ANM, CHO और आरोग्य मित्र अपने गांव या मोहल्ले के स्वास्थ्य नायक हैं।
1: सही कहा आपने, आयुष्मान पीएम जन आरोग्य योजना को लोगों तक पहुंचाने में सबसे अहम भूमिका हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की ही होती है। ये लोग सीधे आम जनता से जुड़े होते हैं, घर घर जाकर जानकारी देते हैं, परिवारों से बात करते हैं और उन्हें इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इनका काम सिर्फ जानकारी देना नहीं बल्कि लोगों को जीवन रक्षक इलाज से जोड़ना भी है, यानी ये अपने समुदाय के सच्चे स्वास्थ्य नायक बन जाते हैं। अब सवाल उठता है कि ये क्या करते हैं, तो जवाब है कि स्वास्थ्य कर्मी गाँव की बैठकों में या घर घर भ्रमण के दौरान लोगों को बहुत ही सरल भाषा में आयुष्मान पीएम जन आरोग्य योजना के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी योजना के बारे में जानकारी दे रहा हूं जो गरीब और मेहनत कश परिवारों की जिंदगी बदल रहा है। उस योजना का नाम है आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। फिर वे समझाते हैं कि ये योजना पूरे परिवार का इलाज कवर करती है, पहले से मौजूद बीमारियों का भी इलाज करती है और अस्पताल से छुट्टी के बाद 15 दिन तक का खर्च भी देती है। सबसे बड़ी बात है कि परिवार को कर्ज नहीं लेना पड़ता, न ही जमीन बेचनी पड़ती है, क्योंकि हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सरकार देती है।
0: भैया, ये आशा बहने और आरोग्य मित्र ही हैं जो गांव के लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं, उन्हें बताते हैं कि कैसे कार्ड बनवाना है और इलाज कहाँ मिलेगा। सच में ये लोग हमारे समाज के असली हीरो हैं जो हर घर की सेहत की रक्षा कर रहे हैं। भैया, आजकल मैं ई कवच ऐप का नाम बहुत सुन रहा हूँ, क्या ये ऐप भी इस योजना से जुड़ा हुआ है और इसमें आशा बहनों और ANM की क्या भूमिका होती है?
1: देखिए, जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है वैसे वैसे सरकार भी स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बना रही है। इसी दिशा में ई कवच ऐप एक बहुत उपयोगी कदम है। इस ऐप के जरिए आशा और ANM बहने अपने क्षेत्र के सभी आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाभार्थियों का पूरा डेटा दर्ज करती है, यानी जो भी परिवार योजना के तहत आता है उसका नाम, कार्ड स्टेटस और कार्ड नंबर सब कुछ ई कवच एप्लीकेशन में भरा जाता है। इससे सरकार को यह पता चलता है कि किस क्षेत्र में कितने लोग योजना का लाभ ले रहे हैं। आशा और ANM इस योजना की रीढ़ हैं। इनका काम है लोगों को आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जानकारी देना, ऐसे परिवारों की पहचान जो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, और उन्हें सही अस्पताल तक मार्गदर्शन करना। जब मरीज अस्पताल से छुट्टी पाए तो उनका देखभाल और फॉलो अप में मदद करना। साथ ही अगर किसी को कोई सवाल या परेशानी हो तो वे आसानी से ऑनलाइन मदद ले सकते हैं। जैसे आयुष्मान संपर्क हेल्पलाइन है 1800 1 1800-444-444 यानी 1800-1800-4444। आयुष्मान सारथी एंड्रॉयड मोबाइल ऐप है और आयुषी आयुष्मान पीएम जन आरोग्य योजना का चैट बोट। इन माध्यमों से कोई भी व्यक्ति अपने जानकारी या समस्या का समाधान घर बैठे पा सकता है।
0: मतलब अब सब कुछ ऑनलाइन और पारदर्शी हो गया है। लोगों को न सिर्फ इलाज की सुविधा मिल रही है बल्कि योजनाओं से जुड़ी हर जरूरी जानकारी भी सीधे उन तक पहुंच रही है, चाहे वो मोबाइल ऐप हो, चैट बॉट हो या हेल्पलाइन नंबर। इससे लोगों का भरोसा भी बढ़ रहा है और योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक पहुँच रहा है। दोस्तों, सच कहा जाए तो आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी योजना ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों को नई उम्मीद दी है। मुफ्त में इलाज, सम्मानजनक सेवा और डिजिटल सुविधा तक आम लोगों की पहुंच बनी है। श्रोताओं, अब सेहत सही लाभ कई के इस एपिसोड को समाप्त करने की इजाजत दीजिए। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े ऑनलाइन एप्लीकेशन के इस्तेमाल के बारे में और जानेंगे इस योजना से महिलाओं और बच्चों को क्या क्या लाभ मिल रहे हैं। तब तक के लिए अपने सेहत का ध्यान रखिए, पर जाने से पहले अपनी सेहत की शपथ लेना ना भूलें। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। दीजिए मुझे जाने की इजाजत, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
2: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
2: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
2: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
2: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
4: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
5: सुनिए सुनिए सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
5: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
4: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
7: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
4: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
7: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
4: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
7: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
4: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9779-14-8661
7: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।
8: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
6: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
7: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
5: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
7: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
7: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
7: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
5: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
8: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
9: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
8: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
9: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99 399 66 999।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ

0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
1: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
1: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।
2: ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाएं।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: पक्षी से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने खाड़ी संघर्ष से संबंधित भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात वाले इस समूह का उल्लेख करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों के नेताओं ने ब्रिक्स सहयोग की समीक्षा की। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ के बाद हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है, उसमें नागरिक, सरकार और उद्योग भी शामिल हैं। श्री पाटिल ने नई दिल्ली में कल 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के समापन सत्र में ये बात कही। श्री पाटिल ने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थानों के बीच सहयोग के माध्यम से ही किया जा सकता है।
1: जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो, ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा। तीन बातें विशेष रूप से सामने आई हैं। पहली, जल संरक्षण से जन भागीदारी सबसे जरूरी है। दूसरी, विज्ञान और नई तकनीक का लाभ जमीन तक पहुंचना चाहिए। और तीसरी, जल की चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थाओं के बीच निरंतर सहयोग से ही मजबूत होगा।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं हिमांशु कांडपाल।
2: पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। बरवाल ने 2 घंटा 11 मिनट और 37 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। आज महिला और पुरुष वर्ग में भारत की कबड्डी टीमें अपने अपने फाइनल मैच खेलेंगी। फाइनल में दोनों वर्गों में भारत का मुकाबला ईरान से होगा। बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु सिंगल्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला पूर्व विश्व चैंपियन सिंगापुर के लो की यू से होगा। एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर में रजत पदक जीतने के एक दिन बाद अब 1500 मीटर स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। पारुल चौधरी और पूजा महिलाओं के 1500 मीटर फाइनल्स में उतरेंगी। एशियाई खेलों के 7वें दिन कल भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 10 रजत और 12 कांस्य पदकों सहित कुल 24 पदक जीतकर 12वें स्थान पर बना हुआ है। 99 स्वर्ण पदकों के साथ चीन शीर्ष पर है। जापान दूसरे स्थान पर है, उसने अब तक 29 स्वर्ण पदक जीते हैं। दक्षिण कोरिया 13 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में विश्व चैंपियन डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को पराजित किया। इस जीत के बाद भारतीय पुरुष टीम दूसरे स्थान पर आ गई है। अब 10वें दौर में भारत का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होगा। महिला वर्ग के 9वें दौर में भारतीय टीम उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर दूसरे स्थान पर आ गई है। अगले दौर में भारतीय टीम का मुकाबला चीन से होगा।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज की कड़ी में पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी से बातचीत प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और Facebook पर All India Radio News को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री मोदी के भजन क्लबिंग में शामिल होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मोदी जेंजी के साथ भजन क्लबिंग में हुए शामिल। नवभारत टाइम्स के अनुसार जेंजी के साथ पीएम की भजन क्लबिंग। अमर उजाला के अनुसार भजन क्लबिंग में युवाओं संग झूमे प्रधानमंत्री मोदी। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी का बयान देते हुए लिखा है, देश में दिखा बदलाव, मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे, पीएम ने गिनाई उपलब्धियां, निवेश, रक्षा उत्पादन, विनिर्माण और निर्यात में हुई उल्लेखनीय वृद्धि। हिंदुस्तान के अनुसार देश का विकास इंजन बना यूपी। गृहमंत्री अमित शाह बोले, डेड इकोनॉमी कहने वालों की सोच ही डेड। दैनिक जागरण लिखता है, गृहमंत्री ने यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन समारोह में विपक्ष पर साधा निशाना। पंजाब केसरी के अनुसार तमंचों की फैक्ट्री की जगह बन रही ब्रह्मोस। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, भारत की पहल, जहाजों नाविकों पर हमले रोकने के लिए बना ग्लोबल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, समुद्र में हमले वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा। जनसत्ता के अनुसार न्यूयॉर्क में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, हॉर्मुज खोलने के लिए 7 दिनों का प्रस्ताव। अमर उजाला का शीर्षक है स्वर्णिम निशाना, सुरुचि और कमल ने देश को दिलाया दूसरा गोल्ड, एक ही दिन में भारत को 2 रजत सहित 6 पदक। दैनिक जागरण की सुर्खी है अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर बनाने की तैयारी में गूगल, सौर ऊर्जा से चलेगा एआई कंप्यूटिंग सिस्टम।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता। और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
4: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 9853252599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9939951 पे।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9956-59536 या 9956-57902।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
5: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
5: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या? मुरारी लाल विजय कुमार,
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 अमरजैट पर।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
8: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें 6052-62112 पे।
7: आज से तुम कोई गलत काम नहीं करोगे और वादा करो हमेशा साथ निभाओगे।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
3: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
6: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
5: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
6: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
6: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
6: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत आज पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन करेंगे। लोक भवन में व्याख्यान माला को भी करेंगे संबोधित। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार राज्य के नए मुख्य सूचना आयुक्त होंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने दी मंजूरी। प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एडीजी से डीआईजी स्तर के 36 अधिकारियों को जिलों का प्रभारी और नोडल पदाधिकारी बनाया गया। और प्रदेश में पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश के चलते आम जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। भारत के मुख्य

0: सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। फिलहाल ये केंद्र पटना जिले में एक वर्ष की पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया जा रहा है। बाद में इसे राज्य के सभी जिलों में विस्तारित किया जाएगा। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत बिहार लोक भवन में आयोजित एक व्याख्यान माला को भी संबोधित करेंगे। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार राज्य के नए मुख्य सूचना आयुक्त होंगे। वहीं विधि विभाग के पूर्व सचिव और न्यायिक सेवा के अधिकारी अंजनी कुमार सिंह को राज्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय त्रिसदस्यीय चयन समिति की बैठक में दोनों नामों पर सहमति बनी। बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव भी मौजूद थे। गौरतलब है कि विनय कुमार फिलहाल छुट्टी पर हैं और उनकी अनुपस्थिति में प्रीता वर्मा डीजीपी का प्रभार संभाल रही हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने एडीजी से डीआईजी स्तर के 36 अधिकारियों को 40 पुलिस जिलों का प्रभारी और नोडल पदाधिकारी बनाया है। मुख्यालय ने अधिकारियों को 27 सितंबर तक अपने अपने जिलों का निरीक्षण कर पुलिस महानिदेशक प्रीता वर्मा को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। समीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था, लंबित कांडों के अनुसंधान और निष्पादन, ट्रायल, थानों की कार्यप्रणाली, गश्ती, महिला अपराध और पॉक्सो सहित विभिन्न कानूनों के क्रियान्वयन की स्थिति देखी जाएगी। वहीं क्षेत्रीय आईजी और डीआईजी 25 से 28 सितंबर तक संबंधित जिलों में रात्रि विश्राम कर लंबित कांडों, वारंट, इश्तिहार, कुर्की और गश्ती व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। उन्हें 29 सितंबर तक पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट सौंपनी है। प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस गश्त बढ़ाई जाएगी। छेड़खानी से जुड़े वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मुख्यालय ने जमुई, समस्तीपुर और मधेपुरा समेत कई जिलों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साइबर सेल को ऐसे वीडियो पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया है। समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम थाना क्षेत्र में किशोरी से दुर्व्यवहार के मामले में प्रशासन ने आरोपितों के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की है। जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा के निर्देश पर प्रशासन की टीम ने जगत सिंहपुर और बिजौलिया में सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया। कार्रवाई के दौरान दो आरोपितों के झोपड़ी नुमा अवैध निर्माण और एक चाय दुकान को ध्वस्त किया गया। साथ ही मुख्य आरोपित के मकान के बाहर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए 24 घंटे का नोटिस चस्पा किया गया है। वहीं एक अन्य आरोपित की जन वितरण प्रणाली की दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इधर बांका के मंदार पर्वत पर एक नाबालिग किशोरी से अभद्रता और वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। मामले के अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई है। प्रदेश में नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2026 तैयार की जाएगी। इसके लिए उद्योग विभाग और IIM बोधगया के बीच समझौता हुआ है। उद्योग निदेशक मुकुल कुमार गुप्ता और IIM बोधगया के निदेशक डॉ. विनीता सिंह सहाय ने MOU पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत IIM बोधगया नीति अनुसंधान, बेंचमार्किंग, हितधारकों से परामर्श और आर्थिक विश्लेषण में सहयोग करेगा। प्रदेश में मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए नाबार्ड ने 195 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है। यह राशि मत्स्य पालन अवसंरचना विकास निधि के तहत बिहार सरकार को दी जाएगी। राशि का उपयोग सिवान जिले में आधुनिक मत्स्य पालन इकाइयों समेत अन्य सुविधाओं के विकास में किया जाएगा। प्रदेश के शहरी निकायों में अब कचरे को 4 श्रेणियों में अलग अलग जमा किया जाएगा। नगर विकास विभाग ने सभी निकायों को इस संबंध में 17 अक्टूबर तक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के तहत कचरे को गीला, सूखा, सेनेटरी और इलेक्ट्रॉनिक श्रेणियों में बांटा जाएगा। इस दौरान प्लास्टिक मुक्त बाजार बनाने और लोगों को खरीदारी के लिए कपड़े का थैला इस्तेमाल करने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने रेलवे बोर्ड को पत्र लिखकर गंगा नदी पर प्रस्तावित रेल पुल को रेल सह सड़क पुल के रूप में विकसित करने का आग्रह किया है। उन्होंने विक्रमशिला कटारिया नई रेल लाइन परियोजना के तहत प्रस्तावित पुल का दायरा बढ़ाने की मांग की है। श्री अमृत ने कहा कि इससे भागलपुर और कटिहार

0: के बीच सीधा संपर्क स्थापित होगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। नक्सलवादी आंदोलन से बिहार के 23 जिले प्रभावित थे। कई दशकों तक माओवादी उग्रवादियों ने अपना प्रभाव बनाए रखा, जहां राज्य का शासन और प्रशासन प्रभावी रूप से नहीं पहुंच पाता था। इस साल फरवरी में बिहार को नक्सल गतिविधियों से मुक्त घोषित किया गया। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री आते जाते रहे, सरकारें बदलती रही, लेकिन नक्सलवादी संघर्ष का कोई समाधान नहीं निकल पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की प्रयासों से देश इस वर्ष 31 मार्च को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त घोषित हुआ। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है।
4: वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है।
3: बीती फरवरी मुंगेर में आखिरी हथियारबंद माओवादी सुरेश कोड़ा के आत्मसमर्पण के बाद बिहार को नक्सल गतिविधियों से मुक्त घोषित किया गया। प्रदेश के नक्सल प्रभावित रहे 23 जिलों में अब कोई भी हथियारबंद नक्सली दस्ता सक्रिय नहीं है। वर्ष 2025 में बिहार में नक्सली हिंसा की एक भी घटना दर्ज नहीं हुई, जबकि 220 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। 30 मार्च 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद में बताया कि अब कोई भी जिला वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित नहीं रह गया है। प्रदेश के नक्सल गतिविधियों से मुक्त होने पर प्रभावित जिलों के लोगों ने राहत की सांस ली। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में स्थानीय लोगों ने कहा कि अब हम बिना किसी भय के इलाके में रह रहे हैं।
5: आज से पहले हमारे गांव में, पूरे पंचायत में ऐसा नक्सली का प्रभाव था कि हम लोग का बच्चा बुतरू जो है गांव में नहीं पढ़ पाता था ढंग से। जगह जगह पर जा करके स्कूल को भी बर्बाद करते थे, जितना भी सरकारी जगह था उसको नष्ट करते थे। और हम लोग को इतना भय था उसके वजह से कि हम लोग गांव में रहना बहुत मुश्किल होता था। और आज क्या समय है कि नक्सल प्रभावी से हम लोग मुक्त है और आज हम लोग खुशहाल से रह रहे हैं, गांव में भी रह रहे हैं।
3: आखिरी नक्सल के आत्मसमर्पण के साथ बिहार में शांति और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंगेर से प्रशांत कुमार सिंह के साथ समाचार कक्ष से राहुल कुमार।
0: प्रदेश में पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश के चलते आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अन्य जिलों में भी तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान है।
6: दिनांक 26 सितंबर को राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के पूर्वी चंपारण, गोपालगंज एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों और प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते कोसी, गंडक और बागमती समेत कई अन्य नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कोसी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए वीरपुर कोसी बराज के 36 फाटक खोल दिए गए हैं। सुपौल के जिलाधिकारी सावन कुमार ने बताया कि पूर्वानुमान के अनुसार कोसी नदी में जल प्रवाह लगभग 3 लाख क्यूसेक तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि जलस्तर में वृद्धि के बावजूद बावजूद स्थिति सामान्य बनी हुई है।
7: कोसी में जलस्तर में वृद्धि हुई है, बट अभी भी स्थिति सामान्य है। किसी प्रकार कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा अन्य सभी मीडिया से भी, कृपया स्थिति की वास्तविकता को दिखाएं। यहाँ चूंकि जितना बारिश का फोरकास्ट था उतना बारिश नहीं हुआ है। जैसे ही एडवाइजरी जारी होता है कि तटबंध खाली किया जाए, जरूर उसको अमल लाइएगा, जब तक कि जिला प्रशासन के माध्यम से अधिकृत सूचना प्रसारित नहीं की जाती।
0: इधर वाल्मीकिनगर गंडक बराज पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत बेगूसराय को 5 लाख से अधिक आबादी वाले जिलों की श्रेणी में बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल जिला का सम्मान मिला है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित आरोग्य मंथन 2026 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद कुमार वर्मा को यह सम्मान प्रदान किया। प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में अब 5 अक्टूबर की जगह 3 अक्टूबर को ज्योतिया पर्व का अवकाश रहेगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। पटना में सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर ग्रामीणों से ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। साइबर अपराध और सुरक्षा इकाई तथा पटना साइबर पुलिस ने ठगी गिरोह की सक्रिय सदस्य सीता कुमारी को बाढ़ के सालिमपुर से गिरफ्तार किया। 16वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए बिहार की टीम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खिलाड़ियों के चयन के लिए 27 और 28 सितम्बर को राजगीर स्थित राज्य खेल अकादमी में ट्रायल होगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, कोसी के पूर्वी और पश्चिमी तटबंध पर 354 किलोमीटर सड़क बनेगी। दैनिक जागरण ने लिखा है, नेपाल में मूसलाधार वर्षा से उफनाई प्रदेश की नदियां, कई जिलों में अलर्ट। प्रभात खबर की सुर्खी है, समस्तीपुर में किशोरी से बदसलूकी के 3 आरोपियों के घरों पर चला बुलडोजर। दैनिक भास्कर ने लिखा है, चीफ इलेक्शन कमीशन के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, गया जी में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। आज अखबार की सुर्खी है, डीजीपी विनय कुमार बने राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत आज पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन करेंगे। लोक भवन में व्याख्यान माला को भी करेंगे संबोधित। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार राज्य के नए मुख्य सूचना आयुक्त होंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने दी मंजूरी। प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एडीजी से डीआईजी स्तर के 36 अधिकारियों को जिलों का प्रभारी और नोडल पदाधिकारी बनाया गया। और प्रदेश में पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश के चलते आम जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434068 पे।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करें 6052 62112 पे।
9: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। तो दोस्तों, हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए आपको कॉल करना होगा हर रविवार 12 बजे से हमारे स्टूडियो के नंबर 8029294921 8029294921 पर। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं रेडियो रिमझिम के इस रोमांचकारी खेल के रूल्स को। इस हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे 10 प्रश्न, हर प्रश्न के होंगे 3 ऑप्शन, जिसमें से होगा एक सही जवाब और आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय। यदि आप 10 सेकंड में जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप इस खेल से बाहर हो जाएंगे। 10 प्रश्न के सही जवाब देने वाले प्रतिभागी को मिलेगा रेडियो रिमझिम के तरफ से एक एक्साइटिंग गिफ्ट और हमारे स्टूडियो में आने का मौका। तो दोस्तों, आपको अपने तरफ से इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके मोबाइल में पर्याप्त बैलेंस हो। साथ ही हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के दौरान शांत जगह से कॉल करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी से सहायता ना लें और इंटरनेट पर जवाब सर्च ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट को और लेते हैं पहले प्रतिभागी का कॉल।
10: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में।
11: जी नमस्ते मैम।
10: जी नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
11: मेरा नाम शालू कुमार, सिरिसिया बीती टोला से।
10: कहाँ से?
11: सिरिसिया बीती टोला से।
10: सिरिसिया,
11: हाँ
10: जी। कैसे हैं शालू जी? शालू नाम बताया आपने?
11: हाँ
10: जी जी। तो क्या करती हैं शालू आप?
11: पढ़ाई करते हैं।
10: किस क्लास में पढ़ती हैं?
11: नाइन्थ क्लास में।
10: नाइन्थ में पढ़ती है। पढ़ाई कैसे चल रही है?
11: अच्छी चल रही है।
10: चलिए बढ़िया बात है, अच्छा चल रहा है। और आगे क्या करना है?
11: हमें रिकॉर्डिंग को सुनाया जाता है।
10: ये अगले मतलब सैटरडे को सुनाया जाएगा सुबह 9 से 11 के बीच में, ठीक है?
11: ये वाला,
10: ये वाला। और रिपीट चलेगा अगले संडे को। ओके
11: ठीक है।
10: ठीक है, तो सालू जी आप सोचे हैं कि आगे क्या करना है आपको पढ़ के?
11: हाँ, आगे यूपीएससी सिविल सर्विस में जाना है।
10: अच्छा, सिविल सर्विस में जाना है। चलिए बढ़िया बात है। तो अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
11: मम्मी का नाम निर्मला देवी, पापा का नाम बलिंद कुमार।
10: अच्छा अच्छा, पापा जी क्या करते हैं आपके?
11: बिजनेस मैन।
10: अच्छा, बढ़िया है। तो आज का पहला प्रश्न लिया था आपसे?
11: यस मैम।
10: ओके

0: तो सालू जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, रतौंधी नामक बीमारी किस विटामिन के कमी से होती है? रतौंधी नामक बीमारी किस विटामिन के कारण से होती है, विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी और ऑप्शन सी विटामिन सी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: विटामिन ए।
0: श्योर हैं आप?
1: यस मैम।
0: लॉक कर दूं?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए सालू जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विटामिन ए को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: आपसे आज का दूसरा प्रश्न ये है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए रोहिणी, बी आर्यभट्ट, सी भास्कर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: आर्यभट्ट।
0: श्योर है?
1: श्योर तो नहीं है लेकिन लॉक कीजिए।
0: लॉक कर दें?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए सालू जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी आर्यभट्ट को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: जी, आज से आपका तीसरा प्रश्न ये है, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायता करता है? कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायता करता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी और ऑप्शन सी विटामिन के। आपका समय शुरू होता है अब।
1: विटामिन सी।
0: विटामिन के?
1: नहीं, सी।
0: विटामिन सी।
1: यस मैम। ऑप्शन
0: कोई है आपके पास?
1: नहीं मैम।
0: नहीं
1: मैम, विटामिन सी होगा ऑप्शन।
0: अच्छा अच्छा, लॉक करूं?
1: यस मैम।
0: ओके, ध्यान रहे कि आपकी सहायता कोई और ना कर रहा हो, हमें पता चलेगा तो हम कॉल कट कर देंगे। ठीक?
1: नो मैम, हम शांत जगह पे।
0: ओके, बढ़िया है। तो चलिए आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विटामिन सी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन
1: सहारा मरुस्थल।
0: श्योर है?
1: यस मैम।
0: ब्लॉक कर दूं?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए आपके चौथे प्रश्न का उत्तर सहारा मरुस्थल को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार हैं आप पांचवे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे है? बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे है? ऑप्शन ए गंगा, बी यमुना, सी सरयू। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन ए क्या था?
0: गंगा।
1: मैम गंगा हो।
0: श्योर है?
1: यस मैम।
0: ब्लॉक कर दो?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए सालू जी आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर गंगा ऑप्शन ए को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर सही है। तैयार है आप छठे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: ओके, आपसे आपका छठा प्रश्न ये है, बिहार राज्य को कितने परमंडल में विभाजित किया गया है? बिहार राज्य को कितने परमंडल में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 7, बी 8, C9। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम प्रमंडल क्या होता है?
0: प्रमंडल का मतलब होता है कि बिहार को कितने भाग में बांटा गया है, कितने डिवीजन में बांटा गया है।
1: ओके
0: ओके, तो बिहार को कितने भाग में बांटा गया यही होगा।
1: मैम क्या ये क्वेश्चन चेंज हो सकता
0: है? ऐसा तो ऑप्शन अभी तक ऐसा कुछ है नहीं, बोला नहीं गया है।
1: ठीक है, तो 7। सात प्रमंडल में बांटा गया।
0: सात को लॉक करो।
1: श्योर
0: है? श्योर तो है
1: नहीं, श्योर नहीं।
0: ओके, तो चलिए लॉक कर रहे हैं आपके छठे प्रश्न का उत्तर 7। और आपको बता दें कि आपके छठे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा 9। ओके
1: ठीक है।
0: हेलो
2: जी,
0: नमस्ते। बहुत स्वागत है आपका रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
2: मेरा नाम श्वेता कुमारी, मेरा घर साता मुसा।
0: जी कैसी हैं श्वेता जी?
2: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। क्लास में पढ़ती हैं श्वेता आप?
2: मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ।
0: 7th में? कहाँ, सरकारी में पढ़ती हैं या प्राइवेट में?
2: मैं प्राइवेट में।
0: प्राइवेट में पढ़ती हैं। और अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: मम्मी का नाम है निर्मला, पापा का नाम है बलिंदर पंडित।
0: जी, और आप क्या करना चाहती हैं आगे पढ़ाई करके, कुछ सोचा है आपने?
2: मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ।
0: चलिए बढ़िया बात है। और सो मैं ये हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में पहली बार कॉल की हैं आप?
2: यस मैम।
0: तो तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
2: यस मैम।
0: ओके, तो श्वेता जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है

0: भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए जनगण मन, बी वंदे मातरम, सी विजयी विश्व तिरंगा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: जनगण मन।
0: श्योर है आप?
1: यस मैम।
0: लॉक कर दूं?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए श्वेता जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए जनगण मन को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा वंदे मातरम। जनगण मन जो है वो राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। हेलो, क्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034 48652 पे।
7: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
8: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
7: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
8: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
7: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
8: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
7: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
4: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
9: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
10: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
9: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
10: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
11: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
12: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
11: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
12: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
11: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजन के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: हेलो,
13: क्या मैम आप हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट से बोल रहे हैं?
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिंग के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में।
13: यस मैम, आज क्यूज होगा?
0: जी हो रही है क्यूज। आप नाम बता दीजिए अपना।
13: सुमित कुमार।
0: सुमित कुमार कहाँ से बात कर रहे हैं सुमित जी?
13: सासामुसा।
0: जी, क्यूज कॉन्टेस्ट में पहली बार कॉल किए हैं?
13: यस मैम।
0: ओके, क्या करते हैं आप सुमित जी?
13: अभी पढ़ाई कर रहे हैं।
0: किस क्लास की?
13: अभी मैं टेंथ में अब हूँ।
0: अच्छा, इस साल टेंथ में गया है, मतलब आपका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है नेक्स्ट ईयर?
13: अगले साल।
0: जी जी, पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी?
13: बढ़िया चल रही है।
0: आगे क्या करना है, कुछ सोचा है आपने?
13: हाँ, आगे टेंथ की पढ़ाई करके उसके बाद क्रिकेट में ज्वाइन होऊंगा।
0: अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया बात है। अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
13: मम्मी का नाम श्रीमती मीरा देवी और पापा जी का नाम श्री संतोष सोनी।
0: ओके, तो शुरू किया जाए पहला प्रश्न आपके साथ।
13: यस मैम।
0: ओके,

0: आपसे आपका पहला प्रश्न ये है, बिहार राज्य को कितने परमंडल में विभाजित किया गया है? बिहार राज्य को कितने परमंडल में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 7, बी 8, सी 9। आपका समय शुरू होता है अब।
1: नौ।
0: श्योर हैं?
1: यस मैम श्योर। नौ।
0: लॉक कर दो?
1: यस मैम लॉक कर दीजिए।
0: ओके, तो चलिए सुमित जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 9 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी खजिरगा राष्ट्रीय उद्यान और सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम ऑप्शन फिर से बोलिएगा।
0: ऑप्शन ए जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी खजिरगा राष्ट्रीय उद्यान, सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान।
1: खजिरगा।
0: श्योर है?
1: यस मैम।
0: लॉक करूं?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए सुमित जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी खजिरगा राष्ट्रीय उद्यान को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमिशन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: जी मैं सोनू जी बात कर रहा हूँ प्योर पार्टी से।
0: जी कैसे हैं सोनू जी?
2: बढ़िया है मैम, अपने बताइए।
0: हम भी बढ़िया है। पढ़ाई कहाँ तक हुई है सोनू जी आपकी?
2: ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर चल रहा है।
0: पढ़ाई ठीक चल रहा है ना?
2: जी
0: जी। मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: मम्मी का नाम कलिंदा देवी और पिताजी का नाम संतोष दुबे।
0: जी तो लिया जाए पहला प्रश्न।
2: जी
0: ओके, तो सोनू जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है,

0: भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी उपराष्ट्रपति। आपका समय स्रोत है अब।
1: उपराष्ट्रपति को फिक्स कीजिए।
0: श्योर है? आपके बगल से आवाज आ रही है, शायद रेडियो चल रहा है।
1: हवाएं चल रही है अभी, ठीक जा रहा है।
0: हेलो, ठीक है, हवा का आवाज नहीं आ रहा है, कुछ और चीज का आवाज आ रहा है।
1: ठीक है,
0: ओके, तो लॉक कर दे उपराष्ट्रपति को।
1: जी जी
0: जी। तो सोनू जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आज से आपका दूसरा प्रश्न ये है, ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? ऑप्शन ए O2, बी O3, सी CO2। आपकी कॉल स्पीकर पे है।
1: जी।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
3: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-30992 या 90765-6750।
7: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: मैं बनूंगा।
7: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AM पर।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 80-29-94-921 80-29-94-921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: हेलो
8: हेलो जी नमस्कार
0: जी नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
8: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। नाम बता दीजिए अपना।
8: शुभम कुमार सिंह।
0: शुभम?
8: हाँ शिवम।
0: शिवम कहाँ से बात कर रहे हैं शिवम जी?
8: मीरगंज।
0: मीरगंज से क्या करते हैं आप?
8: अब तो करता कुछ नहीं है, बैठा है घर।
0: पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी?
8: मेरा ग्रेजुएशन हो गया है।
0: ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद कुछ नहीं कर रहे हैं?
8: करते थे, अभी घर पे बैठे हैं।
0: अच्छा अच्छा, मतलब अभी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं है?
8: नहीं है, बीच में भी ब्रेक लिया है।
0: अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है।
8: इसी कारण है।
0: ओके, मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
8: जी मम्मी का नाम है मनोरमा देवी, पापा का नाम है मनोज सिंह।
0: तो तैयार है आप शिवम जी आज के पहले प्रश्न के लिए?
8: जी

0: आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, आपकी फोन स्पीकर पे है
1: क्या?
0: आपका फोन स्पीकर पे है?
1: नहीं।
0: स्पीकर पे होगा तो स्पीकर बंद कर लीजिए, नहीं तो मैं कॉल कट कर दूंगी।
1: अरे नहीं है भाई, कैसे ही आपको
0: मुझे कभी कभी लगता है, और ऐसा नहीं
1: लगता तो नहीं,
0: लगता है। नहीं तो ऐसे ही तो नहीं लगता है, स्पीकर पे होता है तभी लगता है।
1: नहीं तो है नहीं।
0: चलिए बढ़िया है, नहीं है क्योंकि अभी आवाज क्लियर हो गया आपका।
1: अच्छा
0: जी, तो आपसे आज का पहला प्रश्न ये है शिवम जी,
1: जी
0: सुरक्षित शनिवार।
1: हाँ।
0: सुरक्षित शनिवार में फरवरी माह का विषय क्या है? सुरक्षित शनिवार में फरवरी माह का विषय क्या है? ऑप्शन ए मैं हूँ समाज सेवक, बी मैं हूँ शिक्षक, और सी मैं हूँ साहित्यकार। आपका समय शुरू होता है अब।
1: क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया।
0: ओके,
1: दूसरा क्वेश्चन पूछिए, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया।
0: आपसे पहला प्रश्न ये है, बिहार के नाम से किस महापुरुष को जानते हैं? बिहार केसरी के नाम से किस महापुरुष को जानते हैं?
1: और श्री कृष्ण से।
0: हाँ,
1: श्री कृष्ण से, बिहार केसरी।
0: श्योर है?
1: हाँ।
0: लॉक कर दो?
1: हाँ करिए।
0: ओके, तो चलिए शिवम जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण सिंह को लॉक करते हैं, और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी
0: जी। आज से आपका दूसरा प्रश्न ये है,
1: जी
0: ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी है? ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी है? ऑप्शन ए O2, बी O3, सी CO2। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बी।
0: ऑप्शन बी।
1: हाँ।
0: O3।
1: हाँ।
0: श्योर है?
1: हाँ।
0: तो चलिए शिवम जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी O3 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आज से आपका तीसरा प्रश्न ये है, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का प्राकृतिक झील कौन सी है? भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का प्राकृतिक झील कौन सी है? ऑप्शन ए बुलर झील, बी चिल्का झील, सी संभर झील। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बुलर झील।
0: बुलर झील।
1: हाँ।
0: चोर है आप?
1: थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है सांभर झील को लेकर, लेकिन बुलर झील को ही करिए।
0: ओके, तो चलिए शिवम जी आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बुलर झील को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: चौथा प्रश्न ये है आपसे, लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लौह पुरुष के नाम से कौन?
1: सरदार वल्लभ भाई पटेल।
0: चोर है?
1: हाँ।
0: लॉक कर दो?
1: जी। अरे बिना ऑप्शन दिए बोल रहे हैं तो श्योर है?
0: श्योर है ना?
1: चलो। हाँ, हाँ।
0: तो चलिए शिवम जी आपके चौथे प्रश्न का उत्तर सरदार वल्लभ भाई पटेल को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर सही है। तैयार हैं आप पांचवें प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: संविधान के प्रस्तावना समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? आपका पांचवा प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ऑप्शन ए 42वां, बी 44वां, सी 52वां। आपका समय श्रोता है अब।
1: 42वां।
0: चोर है?
1: हाँ, 1978 में हुआ था।
0: तो चलिए आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर 42वां संशोधन लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर सही है। तैयार है आप छठे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आज से छठा प्रश्न ये है, गीतांजलि के रचयिता कौन है? गीतांजलि के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए
1: बोलिए
0: बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: वही होगा रविंद्रनाथ ठाकुर
0: ने, अच्छा टैगोर होगा। हाँ जी जी, यहाँ टैगोर ही लिखना था लेकिन ठाकुर लिख दिया गया है।
1: हाँ तो वही होगा रविंद्रनाथ टैगोर।
0: श्योर है, लॉक कर दें?
1: जी जी।
0: चलिए आपके छठे प्रश्न का उत्तर रविंद्रनाथ टैगोर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके छठे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप सातवें प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका सातवां प्रश्न ये है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को किस भाषा में लिखी थी? ऑप्शन ए हिंदी, बी अवधी, सी संस्कृत। आपका समय शुरू होता है अब।
1: किस भाषा में लिखे थे? अवधी कोई करिए।
0: श्योर है?
1: नहीं है, संस्कृत भी लग रहा है, अवधी भी लग रहा है।
0: तो कौन सा करे, अवधी या संस्कृत?
1: अवधी करिए।
0: ओके चलिए, तो चलिए सिवम जी आपके सातवें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी अवधी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके सातवें प्रश्न का उत्तर सही है। तैयार है आप आठवें प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका आठवां प्रश्न ये है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी कार्बन, सी कैल्शियम। आपका समय शुरू होता है अब।
1: कार्बन होगा।
0: कार्बन होगा
1: शायद, कंफर्म तो नहीं है, ऑक्सीजन भी लग रहा है लेकिन कार्बन की चूज कर रहे हैं,
0: तो कार्बन को लॉक करें।
1: जी
0: जी। तो चलिए शिवम जी आपके आठवें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी कार्बन को लॉक करते हैं।
1: जी।
0: और बता दें कि आठवें प्रश्न का उत्तर आपका गलत है, सही उत्तर होगा ऑक्सीजन।
1: ऑक्सीजन
0: जी।
1: कितना होता है इसका, मतलब रेशियो या परसेंटेज?
0: परसेंटेज यहाँ नहीं लिखा हुआ है लेकिन सबसे अधिक अच्छा। मात्रा में ऑक्सीजन होता है।
1: जी जी
0: जी। हेलो पीयूष, कॉल किए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी जी, बहुत बहुत।
0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम का कार्यक्रम हेलो पीयूष कॉन्टेस्ट में। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
2: मैम मेरा नाम आराध्या श्रीवास्तव है और मैं गोपालगंज बिहार में रहती हूँ।
0: जी, क्या करती हैं आराध्या जी?
2: कर अभी 8 स्टैंडर्ड में है।
0: 1 में?
2: 8 यस। हाँ
0: अच्छा, और पढ़ाई कैसी चल रही है आराध्या?
2: अच्छी चल रही है।
0: चलिए बढ़िया है, आगे क्या करना है कुछ सोचा है आपने?
2: हाँ सोचे हैं एक IAS ऑफिसर बनने का।
0: जी बहुत ही अच्छा सोचा है आपने, आपकी सोच बहुत अच्छी है। और आपके मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: मम्मी का नाम नीलम देवी और पापा का नाम है शशि श्रीवास्तव।
0: जी, क्या करते हैं पापा जी आपके?
2: पापा अम्बी टोयोटा में काम करते हैं।
0: आप इससे पहले हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं?
2: नहीं, आज तक तो नहीं किए हैं।
0: अच्छा, कहाँ से पता चला आपको इसके बारे में?
2: रेडियो रिमझिम जो बजता है ना छोटे वाले फोन में, तो उसी से पता चला है।
0: अच्छा अच्छा, तो आप तैयार हैं आज के पहले प्रश्न के लिए?
2: हाँ तैयार है।
0: चलिए लिया जाए पहला प्रश्न आपसे।
2: हाँ
0: आपसे आज का पहला प्रश्न ये है,

0: बिहार राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है? बिहार राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए बोधि वृक्ष, बी बरगद, सी पीपल। आपका समय शुरू होता है अब।
1: पीपल का।
0: श्योर है आप?
1: हाँ श्योर।
0: लॉक कर दो?
1: हाँ लॉक कर दीजिए।
0: और चलिए आराध्या जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन सी पीपल का लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा बोधि वृक्ष।
1: ठीक है सर।
0: ओके, हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: तो दोस्तों ये रहा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का आज का एपिसोड। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर और बने हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के विनर। और हमें दीजिए अब जाने की इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।

0: सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91 626 64 498 पे।

0: तो भौजी आज सुबेर ही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
3: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आएं नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
1: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करें खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
6: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमज।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97097065775।

0: दौरान मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67-666।
5: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।

0: गोपालगंज। अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।

0: का संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434068 पे।
6: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
7: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
6: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
7: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
6: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
7: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
6: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9774-86165
7: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
8: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: Excuse me, boss. You have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू सो SMS फरमाइश के साथ रेडियो रेमछेम 90.4 FM पे। समय 9:24 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना कि जब भी गाने की फरमाइश करें तो आप पुराने गाने की फरमाइश करें ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। ऐसा ना हो कि आप गाने की फरमाइश करें और नए गाने की वजह से हम आपकी फरमाइश ना सुना पाए। तो ये बातें आप सभी के बीच हर रोज जब से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है तब से बताई जाती है, तो आप लोग थोड़ा सा समझेंगे और पुराने गाने के साथ इस कार्यक्रम में अपना भी हाजिरी लगाएंगे। यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए थे, मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और पहला मैसेज पहुँचा हुआ है, हाय सर, मैं सनी पटेल में भी जुड़ चुका हूँ, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हेलो सर माय नेम इज़ तृप्ति फ्रॉम नवादा गोपालगंज से और सॉन्ग सुनना है अखिया मिलाओ कभी अखिया चुराओ। तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने के फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है और हो सके तो आप ही के गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मैं अजय कुमार मिश्रा ग्राम गणेश स्थान माझा से और मुझे गाना सुनना है, फिल्म का नाम है मुस्कान। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय सर, मैं अंश कुमार, मुझे भी सॉन्ग सुनना है, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। फिलहाल आप बन रहे हमारे साथ और कहां से मैसेज किए हुए ये तो बताएं ताकि आपकी पहचान हो सके, और पहचान तो हो गई है, ये हमें ज्ञात हो सके कि आप कहां से रेडियो रेमझिम को सुन रहे हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ते हुए गाने की फरमाइश प्ले करते हैं और तृप्ति की फरमाइश के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं अखिया मिलाओ कभी अखिया चुराओ।

कमाल के गाने सुनने हैं हम सब रेडियो रमछेम 94.4 FM पे शो चल रहा है SMS फरमाइश का। यदि आप भी इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। टेक्स्ट मैसेज के लिए नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि 90s के गाने या ओल्डीज गोल्ड गाने कुमार किशोर कुमार जी और मुकेश जी के जमाने के गाने की फरमाइश करनी है। कुछ मैसेज आगे पहुँचे और मैसेज में लिखा गया कि सुनो भाई नमस्कार और सभी को नमस्कार, हम भी जुड़ गए हैं दिलीप राम दिल्ली से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो हाय नमस्कार सर, क्या हाल है, आई सॉन्ग सुनना है, मीठी मीठी सर्दी है, भीगी भीगी जवानी है, यही सॉन्ग सुनना दीजिए। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में और इस मैसेज को करते हैं ओम साई टेलर राघव जी, चलिए अब बने रहे हमारे साथ और फरमाइश से तो बिल्कुल पूरा होगी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सर नमस्कार, मंकेश शाहनी वेस्ट चंपारण से सॉन्ग सुनना था सर, दिल जले फिल्म का, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, प्लीज़ सर। हम भी जुड़ गए हैं, बिल्कुल जुड़े रहे हैं और बने रहे हमारे साथ, आपकी फरमाइश है तो आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। फिलहाल हम रहते हैं आगे और अजय जी की फरमाइश हम प्ले करते हैं और गाने के फरमाइश किए हुए हैं, कभी जागे कभी सोए।

0: सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 8470309 या 9765665।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
3: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
5: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रूपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
5: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म, और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है टेडी रेमसिम के कार्यक्रम एसएमएस फरमाइश में। और समय जो है 9:42 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में, और आगे कई मैसेज पहुंचे हुए आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय सर, मेरा भी वेलकम कीजिए। और लिखा गया है कि अखिया मिलाओ कभी चुराओ, क्या तूने किया जादू, कभी घबराओ कभी गले लग जाऊँ, मेरा खुद पे नहीं काबू, बिना पायल के ही बजे घंघरू। सुपर सॉन्ग। और इस मैसेज को करती हैं निशा भारती, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सोनू जी नमस्कार, जय प्रकाश जी मानिकपुर गोपालगंज से जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और बन रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सर आज सीट खाली है क्या, मैं सॉन्ग प्ले करवा सकता हूँ। तो आज तो सीट खाली नहीं है, खाली रहता है तो हम बिल्कुल बताते हैं आप सबको। आगे मैसेज पहुँचे हुए और लिखा गया है कि बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी गाना सुनाने के लिए, आपको धन्यवाद है रेडियो रेमसिम सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय नमस्ते सर, बिट्टू शर्मा फ्रॉम पिपराही से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, और गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है, फिलहाल आप बन रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि, और इस मैसेज को पहुंचाए हुए हैं और लिखा गया है कि हेलो सुनो भैया, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। और शहाबुद्दीन अंसारी फरीदाबाद हरियाणा से जुड़े हुए हैं और कहते हैं कि मेरा सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा, बिल्कुल प्ले होगा और आप बन रहे हमारे साथ। और आगे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो पहले से, उनकी फरमाइश को प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश देशभक्ति। और इस गाने के फरमाइश करने वाले हैं मंकेश शाहनी वेस्ट चंपारण से, और गाने का बोल देते हैं मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, प्ले करते हैं और सुनते हैं, एंजॉय करते हैं हम सभी रेडियो रेमसिम 90.4 FM पे।

0: मेरी बात तो सुनो।
1: मैं कुछ नहीं सुन

काफ़ी प्यारा सॉन्ग रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे सुन रहे थे अभी हम सभी। और इस गाने की फरमाइश करने वाले मंकी साहनी जी वेस्ट चंपारण से और अगली मैसेज पहुंचा हुआ है। और अगली गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं राघव जी की, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है मीठी मीठी सर्दी है भीगी भीगी जवानी, यही सॉन्ग सुनना है सुना दीजिए। और सुनाना चाहता हूँ सभी रेडियो दोस्तों को और स्पेशल में डायरेक्टर साहब को। तो चलिए आपकी फरमाइश हम बिल्कुल प्ले करेंगे। यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए श्रोतागढ़ की, उनकी मैसेज दिख ले फिर आपके गाने प्ले करते हैं। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सोनू बाबू कैसे हैं, मौसम भी अपना रंग दिखा रहा है, हम भी जड़ा लेटे हैं, कोई बात नहीं और कार्यक्रम में हाजिरी बन गई। चलिए आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, एकदम बन रहे हैं। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है शाम प्ले करने के लिए, दिल से थैंक्स, आपको धन्यवाद है मंकी साहनी जी रेडियो रिमझिम को सुनने के लिए, आगे सुनते रहें। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है सुपर सॉन्ग शानू कुमार की आवाज़ में और दिल जले मूवी से, मैसेज करती हैं निशा भारती। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय नमस्ते बिट्टू शर्मा, तो बिल्कुल आपकी मैसेज हमारे पास पहुंची है बिट्टू शर्मा जी, आप थोड़ा सा वक्त दे और अपने को स्थिर रखें, आपकी भी नंबर आ जाएगी। अगर आप स्थिर नहीं रहेंगे तो आपकी नंबर भी नहीं आ पाएगी, क्योंकि हम एक एक करके सबकी फरमाइश प्ले कर रहे हैं जैसे मैसेज पहुँची है जिस कतार में लगी है। तो आप अपने कतार को इधर उधर ना करें, आप अपने कतार के स्थान पर रहें, हम आपकी फरमाइश बिल्कुल प्ले करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और राघव जी के गाने प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं इनके गाने के साथ।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
3: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में, और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
3: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
3: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
4: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
5: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
4: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
5: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
4: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
5: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
4: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
6: कब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
6: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
8: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
9: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम पे। सो चल रहा है इसमें फरमाइश का। यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए हैं। आगे मैसेज लिखा गया है कि दिल में रहकर दिल पर वार करते हो, क्यों सितम बार बार करते हो, तुम्हें पता है कितनी मोहब्बत है तुमसे, फिर भी औरों के लिए मुझे नज़रअंदाज करते हो। सुनो भाई नमस्कार और कैसे हैं, मैं भी सो से जुड़ गया हूँ रोहित देहरादून से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, हम बढ़िया हैं, अपना बताएं। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि शुक्रवार की ये सुबह खुशियों का पैगाम लाए, हर चेहरे पर मुस्कान और हर दिल में सुकून लाए, आपका आज का दिन बेहद खूबसूरत हो, इसी दुआ के साथ सुप्रभात। शुक्रिया आपको सॉन्ग चलाने के लिए, लेकिन अभी तो विश्राम का समय है, रात्रि का समय हो चुका है, तो आपने तो समय के उल्टे लाइन भेजे हुए हैं राघव जी। आप दिन चेंज कर देते तो बेहतर रहता। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मीठी मीठी सर्दी है तो सर्दी में क्या होगा, पर सॉन्ग ठीक है। मैसेज करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया खिखरी और अक्सल नेपाल बॉर्डर से। आगे मैसेज और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं और इस गाने की फरमाइश करते हैं बिट्टू शर्मा जी फ्रॉम पिपराही से, और गाने का बोल देते हैं हम जो काम करें वो खुलियाम करें।

रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम पे कमाल के गाने सुनने हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ। और आगे मैसेज पहुंचे हुए लिखा गया है कि शुक्रवार की ये रिमझिम रात दोस्तों के साथ हो तो बन जाए खास बात, बारिश के बूंदे और यारों की हंसी यही तो है ज़िंदगी की सबसे प्यारी खुशी। शुभ रात्रि मैसेज करते हैं राघव जी, प्यारी लाइन। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है सुपर सॉन्ग वेरी नाइस, और मैसेज करते हैं निशा भारती। और आगे गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है, गाने की फरमाइश करते हैं अंश जी और लखपतिया मोड़ से सुन रहे हैं, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं। और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है दिल की तन्हाई को आवाज़ बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। कुमार शानू की आवाज़ में है, चाहत मूवी से सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे।

रेडियो एमजीएम 94.4 एफएम सुन रहे हैं और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का और काफ़ी प्यारा सॉन्ग शेड और इस गाने के फरमाइश करने वाले अंश जी लखपतिया मोड़ से थे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि वक्त नूर को बेनूर कर देता है, वक्त नूर को बेनूर कर देता है, हंसने वालों को मजबूर कर देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर रहना, मगर ये वक्त सभी को मजबूर कर देता है। सुपर सैड सॉन्ग, बाय बाय, गुड नाइट। और मैसेज करती हैं निशा भारती। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है, हम तो सोने जा रहे थे, फिर याद आया कि आपको गुड नाइट कहना बाकी है। शुभ रात्रि सोनो भाई। और इस मैसेज को करते हैं रोहित जी, बिल्कुल अंतिम कगार पे हैं, अंतिम गाने प्ले करेंगे और साथ ही हम भी बोलेंगे यही। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, देख ले। आगे मैसेज लिखा गया है कि रिमझिम बारिश में दोस्तों का साथ और सुहानी रात, शुक्रवार की शाम हो तो यादें भी कुछ खास बन जाती है, दोस्ती बारिश और मस्ती बस यही तो चाहिए एक खूबसूरत रात के लिए। शुक्रवार की रात, रिमझिम बारिश दोस्तों के साथ, सुहानी रात, यादगार पल। इस लाइन को भेजे हुए राघव जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, बड़े मियां छोटे मियां सुपर सॉन्ग भाई, मैसेज करते हैं दिलीप जी। तो अभी समय जो है समाप्ति के हो चुके हैं, तो अभी अंतिम गाने हम प्ले करेंगे और जो भी गाने की फरमाइश हमारे पास पहुंची है जो प्ले नहीं कर पा रहे, नाराज़ नहीं होना है। और आज सप्ताह का अंतिम दिन है, सो आप सभी से निवेदन है कि अगले सप्ताह बिल्कुल मैसेज करें, हम कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश को हम प्ले करें और आपकी फरमाइश को प्राथमिकता दें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, सुनते रहें रेडियो एमजीएम 94.4 एफएम, जो हमेशा कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

0: का संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।

हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और समय हो गया है आप सभी के मन पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। तो इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91। जी हाँ, 9852 78 82 91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। जी हाँ, 7277 16 65 96। तो दोस्तों, जब तक आप सभी हमसे जुड़ रहे हैं तब तक आप सभी के लिए एक प्यारा सा सॉन्ग प्ले करूंगी और मेरी तरफ से एक प्यारा सा गाना है और गाने की बोल है समझावा सॉन्ग अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज़ में। तो बिना देरी किए गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

तो अभी आप सभी सुन रहे थे हमारी तरफ से एक प्यारा सा सॉन्ग अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज में, और गाने की बोल थी मैं तेनू समझावा की। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास काफी सारे मैसेज पहुंच चुके हैं जो कि लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग और मैं इसका ऑडियो बनाई हुई हूँ भेजूँ। अस्सलाम वालेकुम, और का हाल चाल बा आपके और पूरी टीम के, और दो दिन लगातार बारिश में तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाली हैं सानिया सैफी जी, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि हाय आई एम संदीप, कसीर सागर फ्रॉम महाराष्ट्र, और मुझे भी गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ हमारे पास जो कि लिख रहे हैं काफ़ी लंबा मैसेज लिखे हुए हैं, और मैसेज करने वाले हैं गणेश कुमार पिपरा नारायण से, और लिख रहे हैं कि आपके इधर लाइट है कि नहीं, और मेरे मैसेज शामिल कर लीजिए, नहीं तो मोबाइल स्विच ऑफ हो जा रहा है, और मेरा मैसेज जल्दी से शामिल कर लीजिएगा, मोबाइल में चार्ज 2% है, और इस गाने के बाद ज़रूर मेरा मैसेज शामिल कीजिएगा, और प्लीज़ दी बताइए, और मनोरमा दी कहाँ वानी, और कल मेरे गाने का गांव में मेला था और अच्छा नहीं, बारिश में अच्छा नहीं लग रहा था, और मेरी तरफ से क्या पार्टी चाहिए आपको बताइए, और मनोरमा दी के भी बोल देम गणेश जी गांव का मेला था क्या पार्टी चाहिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आप पूछ लिए, इतना ही हम लोग के लिए काफ़ी है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हमारे पास जो कि लिख रहे हैं जी मैम नमस्ते गुड आफ्टरनून, और हम हूँ आगलवानी, कैसी हैं आप जी मैम, वाओ सुपर सॉन्ग मैम, और मैसेज करने वाले हैं उत्तम सोनी जी, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हमारे पास जो कि लिख रहे हैं हेलो भारती मैम गुड आफ्टरनून, मैं रेहान खान कुटवा गोपालगंज से, और मेरे भी गाने की फरमाइश है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि हेलो हाउ आर यू, और मेरा भी सॉन्ग है प्ले हो जाएगा क्या, और आसिफ सैफी फ्रॉम मिरुट यूपी से जुड़े हुए हैं। तो जी मैं आपको बता दूं कि आपके गाने को मैंने शुक्रवार को ही पूरा किया था, इसीलिए मैं अगले शुक्रवार को ही पूरा करूँगी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं नमस्ते भारती मैम, संजय यादव दुबई से, और क्या हाल चाल है मैम। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और मेरा हाल चाल तो ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं। और यहाँ पे अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हेलो मैम नमस्ते कैसी हो आप। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। और जय किशोर जी मैसेज करने वाले हैं, और इसी के साथ यहाँ जो कि हमारे पास अगले मैसेज की फरमाइश मैसेज पहुंची हुई है जो लिख रहे हैं सोनी भारती जी नमस्ते, मेरा नाम उपेंद्र कुमार अहिरौली धन कुशीनगर यूपी से हूं, और मुझे सॉन्ग सुनना है। तो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और लिख रहे हैं फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने वाली है, कमिंग सून सॉन्ग। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती मैम नमस्ते, सूर्यभान सिंह वसुंधरी गुरवाल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं, और लिख रहे हैं कि मुझे यह गाना सुना दीजिएगा, यलगार फिल्म का गीत है, और गाने की बोल है कैसे प्यार ना जाने कोई सुनना है। और यहाँ हमारे पास कॉल आ रही है, तो व्हाट्सएप पे कॉल ना करें, और मैसेज करना है तो मैसेज कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे कृपया कॉल ना करें। और यहाँ पे गाने की जो बोल पहुँची हुई है हो जाते हैं कैसे प्यार, तो बिना देरी किए गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
5: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
3: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AM पर।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टा, व्हाट्सएप और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। तो यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि बहुत बहुत धन्यवाद मैम गीत सुनाने के लिए। और सूर्यभान सिंह विशुंदरी घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे जो कि अगला मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि अस्सलामुअलैकुम भारती मैम, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि, और मैसेज करने वाले हैं साबिर अंसारी। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि हाय मैम, मैं मिथिलेश कुमार शर्मा घर लोहिजरा हिजरा से, और एक लिंक है मुझे ऑर्गेनिक की फरमाइश पहुँची हुई है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून भारती जी, कैसी हैं आप? और मैं भी शो से जुड़ गया हूँ, और मैं रोहित देहरादून से, और बारिश हो रहा है, आपके यहाँ का मौसम कैसा है? तो जी, हमारे यहाँ तो मौसम अभी बारिश हो रहा है और दो दिनों से लगातार हो रही हैं। और इसी के साथ जो कि अगला मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास लिख रहे हैं, हेलो भारती मैम, मेरा भी सॉन्ग एक सुना दीजिएगा। और हम जावेद आलम जी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शो में कॉल ना करें। और यहाँ जावेद आलम जी की तरफ से काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं और लिख रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, हम जावेद आलम हैं। रामधन घर के रहने वाले हैं और पोस्ट जिला गोपालगंज बिहार के रहने वाले हैं। और अभी हम फ़िलहाल अबू धाबी दुबई से आपके लाइव कार्यक्रम सुन रहे हैं, और मैं रेडियो रिमझिम का बहुत पुराना श्रोता हूँ। और मैम आपके बोलने का और मैसेज पढ़ने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, और काफ़ी समय बाद आज जुड़ा हूँ। और लिख रहे हैं कि गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान रेडियो रिमझिम, आई लव यू। और लिख रहे हैं कि हम जावेद आलम अबू धाबी से, और मैं 2009 से सुनते आ रहा हूँ, और मेरे मैसेज को पढ़ दीजिए, नहीं तो मुझे टाइम फिर बाद में नहीं मिलेगा, मैं काम में हूँ। और लिख रहे हैं कि अच्छा लगता है मुझे उन लोगों को सुबह का अभिनंदन करना जो मेरे सक्षम न होते हुए भी मेरे हृदय से बहुत पास का एहसास दिलाते हैं। और लिख रहे हैं कि ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं ज़िंदगी उनके आगे सिर झुकाती है। और काफ़ी प्यारी लाइन के साथ जुड़े हुए हैं जावेद जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ कॉल ना करें व्हाट्सएप पे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गुड दोपहर दोस्तों, शनिवार की दोपहर रेडियो रिमझिम का साथ, दोस्तों की महफिल और मीठी मीठी बात, हंसी के दो पल यूं ही सजते रहें, हमारे रिश्तों में हमेशा खुशियों के रंग भरते रहें। और गुड आफ्टरनून दोस्तों, ओम साई टेलर राघव जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ हमारे पास जो कि लिख रहे हैं उद्घोषक जी, आदाब, और मैं नूर आलम बदरपुर बॉर्डर दिल्ली से, और मुझे एक गाना सुनना है, सुना दीजिएगा, फरमाइश भेज रहा हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और यहाँ गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, आपके भी गाने को प्ले करूँगी। पर उससे पहले यहाँ एक गाने की फरमाइश पहुँची हुई है जो कि उत्तम सोनी जी की तरफ से पहुँची हुई है, और लिख रहे हैं कि खुशबू जी, शाहजहाँ जी, शबनम जी, रानी जी, भास्कर भैया, देवेंद्र भैया, उमा शंकर भैया, बिरजू भैया, फिरोज भैया, समीर भैया, राकेश भैया, सन्यासी रंजन बाबा, संदीप भैया, आर्यन भैया, कमरान जी, सागिर जी, आजाद जी, राघव भैया, मुकेश भैया, अनुराग भैया, दिलीप भैया, मुन्ना भैया, MBBS, और सभी लोगों को मेरा नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद है मस्त बिंदास झकास होंगे। और मैसेज करने वाले हैं उत्तम सोनी हरपुर से,
और यहाँ पे इनकी तरफ से वॉइस मैसेज भी पहुँचा हुआ है, तो चलिए शामिल करते हैं और जानते हैं क्या इनकी फरमाइश।

हाय जी मैम, नमस्ते, गुड आफ्टरनून मैम, कैसे हैं आप? मस्त है ना? मैं उम्मीद करता हूँ एकदम मस्त और बिंदास आकाश होंगे आप, है ना? मैं उत्तम सोनी हरपुर से मैम एक लिंक भेज रहा हूँ, उसे प्ले कर दीजिएगा और जितने रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं मैं सभी लोगों को सुनवाना चाहता हूँ, बहुत ही खूबसूरत संग सुना दीजिएगा। ओके और सबसे पहले जितने रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं सभी प्यारे प्यारे लिसनर लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार जी। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है एकदम मस्त और बिंदास आकाश होंगे आप लोग, है ना? जी सन्यासी रंजन बाबा नमस्ते, प्रणाम, कैसे? उम्मीद है एकदम जगास होंगे आप, है ना? और एक लाइन सुना रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओ कहते ना, मोहब्बत की शुरुआत आंखों से होती है, कि मोहब्बत की शुरुआत आंखों से होती है, यकीन मानो ये मोहब्बत की कीमत भी आंखों को ही चुकानी पड़ती है।

0: हमसे तू
1: क्या कहा तुमने? मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन।
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
1: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: ठक ठक।
4: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
8: थोड़े से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में और आप सुन रहे हैं योर वॉइस योर चॉइस का शो। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि गणेश कुमार पिपरा नारायण से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि आपके इधर लाइट है कि नहीं ये नहीं बताई मेरे को। तो जी हमारे यहाँ तो लाइट है और प्लीज़ दीदी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपसे नहीं जुड़ पाएंगे और मेरा मोबाइल भी चार्ज नहीं है और मेरे को तो नहीं बताएं। तो जी मेरे यहाँ लाइट है, मैं आपको बता दूं। और मनोरमा दी भी अपने काम में लगी हुई हैं और यहाँ पे जो कि अगला मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि भारती मैम नमस्कार, और मैं राम कुमार पांडे लंदन से और मैं भी जुड़ गया हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं, हेलो मैम गुड आफ्टरनून, मैं बरौली गोपालगंज से हूँ और बरौली के आज मेला है और मुझे गाना सुनना है प्रिंस पासवान। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके भी गाने को प्ले किया जाएगा। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास मिथिलेश कुमार शर्मा जी की तरफ से और कुछ लाइन पहुँची हुई है और लिख रहे हैं कि मुझसे मोहब्बत करती हो तो मतलब नहीं है जमाने से, मुझसे अगर प्यार है तुमको तो सब कुछ छोड़ के आ जाओ मिलने किसी बहाने से। और काफ़ी खूबसूरत लाइन पहुँची हुई है मिथिलेश जी की तरफ से। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं, मैसेज करने वाले हैं उत्तम सोने जी और लिख रहे हैं थैंक यू सो मच मैम, ढेर सारा धन्यवाद जी मैम और मज़ा आ गया जी मैम गाना सुन के। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहा है कि रेडियो रिमझिम की जान है भारती जी और रेडियो रिमझिम की महफिल की शान है भारती जी, हर मुस्कुराते दिल की पहचान है भारती जी, उनकी आवाज़ में मिठास बातों में प्यार है और उनके बिना रेडियो की महफिल भी बेकरार है। और लिख रहे हैं जहाँ भारती जी की आवाज़ गूंज जाती है वहाँ हर उदास चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और मैसेज लिख रहे हैं रेडियो रिमझिम की धड़कन हर दिल की पहचान है, सच कहे तो भारती जी ही इस रेडियो की जान है। ओहो क्या प्यारी लाइन पहुंची हुई है और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लिख रहे हैं कि उत्तम सोनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो गाने में शामिल किए और गाना बहुत सुंदर है। तो आपने तो मैसेज काफ़ी बेहद खूबसूरत शामिल किया है, पर आपने अपना नाम नहीं बताया कि आप कौन हैं और कहां से हैं। प्लीज़ मुझे अपना नाम ज़रूर बताएं। और इसी के साथ जो कि अगला मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास, लिख रहे हैं, क्या बात है उत्तम सोनी जी, सुपर से ऊपर आपका वॉइस है और सॉन्ग ऐसे ही रेडियो रिमझिम में चार चांद लगाते रहें, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और यहाँ पे अगला मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि शुक्रिया मैम मेरा मैसेज को शामिल करने के लिए। और मैसेज करने वाले हैं जावेद आलम जी। और इसी के साथ अगला मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं,

0: प्लीज भारती मैम मेरा भी सॉन्ग बजा दीजिए। जी मैं आपको बता दूं कि आपके गाने को हमने यस्टरडे को ही पूरा किया था और फिर दोबारा आपके गाने को प्ले करूंगी, लेकिन एक हफ्ते के बाद। और यहाँ पे जो कि अगला मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, लिख रहे हैं भैया को धन्यवाद मैम और नाइस सॉन्ग मैम। और इसी के साथ अगला मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं थैंक यू मैम मेरा मैसेज शामिल करने के लिए। और यहाँ पे जो कि अगले गाने की फरमाइश पहुंची हुई है वॉइस के माध्यम से और संदीप जी की तरफ से पहुंचा हुआ है, और चलिए सुनते हैं क्या है इनकी वॉइस और क्या है इनकी फरमाइश।
1: हेलो, हाय, नमस्कार, मैं संदीप क्षीरसागर बोल रहा हूँ महाराष्ट्र से। लंबे दिनों के बाद वॉइस देख रहा हूँ, आज हमारा फरमाइश पूरा कीजिएगा। निम का नाम है, दिल कितना नादान है, और गाने का बोल है नज़र की बात है। मैं गाने का लिंक भी आपको शेयर कर देता हूँ, बहुत दिन से जुड़ रहा हूँ, आपका रेगुलर लिसनर हूँ, कई दिनों मैं जुड़ नहीं पा रहा था, अभी जुड़ा हूँ। हमारा फरमाइश पूरा कीजिएगा। दिव्या सिस्टर कहाँ गई है मैडम, ज़रूर बताइएगा। आप भारती मैम बहुत अच्छा आपका आवाज़ है और आपकी पेश कर बहुत अच्छी है, ज़रूर सुनवाएगा सॉन्ग। मैं संदीप सागर महाराष्ट्र में गोपालगंज में, क्या हाल है मौसम का ज़रूर बताइएगा। महाराष्ट्र में तो बारिश नहीं हो रही है, आपके उधर सुना है कि बारिश ज़्यादा हो गई है, थोड़ा बारिश महाराष्ट्र में भी भेज दीजिएगा, बहुत अच्छा होगा।
0: तो इतनी खूबसूरत मैसेज भेजने के लिए आपका दिल से धन्यवाद है, और काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुंच हुई है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ तो दो दिन से बारिश लगातार होई जा रही है और मौसम भी काफ़ी ठंडा है, और अभी भी आगे दो दिन और बरसात होने की संभावना है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आपके गाने की फरमाइश की तरफ, तो एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 91.4 FM में ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 5599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
2: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
2: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
2: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
4: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388 89470 या 9198886987।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 91.4 एफएम में और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:49 हो रहे हैं और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो मैं आप सबको बता दूं कि आप गूगल के प्ले स्टोर से रेडियो रिमझिम का ऐप डाउनलोड करके अपने रेडियो रिमझिम के सारे प्रोग्राम को सुन सकते हैं कभी भी कहीं भी अपने फोन के माध्यम से। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा। संदीप कुमार, मनोज श्रीवास्तव और केशव जी हसनपुर से, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं, हाय, मैं राजू कुमार यादव और आपके साथ जुड़ गया हूँ और मेरे साथ बड़ा खुद से रियांश यादव और भी लोग हैं और कोई भी अपने पसंद का सॉन्ग चला दीजिएगा और फैमिली सॉन्ग एक है जो भेजे हुए हैं और काफ़ी प्यारे से गाने की फरमाइश है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका भी। और इसी के साथ जो कि अगला मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि बारिश की रिमझिम रेडियो की तराना, दोस्तों के साथ हो तो हर पल सुहाना और शनिवार की दोपहर यूं ही मुस्कुराती रहे, दोस्तों की ये महफिल हमेशा सजती रहे। और गुड आफ्टरनून मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। और मैसेज करने वाले हैं राघव जी। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं, भारती जी नमस्कार, सभी दोस्तों को नमस्कार और हम भी आप सभी के बीच जुड़ गए हैं और हाजिरी लगा दीजिएगा, दिलीप राम दिल्ली से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रही है कि हाय और मैसेज करने वाली हैं, रेशमा जी पठानपट्टी से। और यहाँ पे अगला मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं भारती जी की आवाज़ में जादू कुछ ऐसा है जैसे सुबह की पहली किरण का उजाला हो, उनके लफ्जों में मिठास ऐसी घुलती है जैसे कानों में बजता कोई सुरीली तराना हो, और आवाज़ सुनकर दिल मुस्कुरा उठता है, हर लफ्ज़ दिल को छू जाता है। भारती जी आपकी आवाज़ की क्या तारीफ करें, आपको सुनकर तो रेडियो भी महफिल बन जाता है। और काफ़ी प्यारी लाइन के साथ जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं, नज़र की बात है किसी को क्या पता, आँखों में छुपा दर्द है किसी को क्या पता, हंसकर गुजर जाते हैं हम हर महफिल से, अंदर से कितने टूटे हैं किसी को क्या पता। और लिख रहे हैं कि जिसे अपना समझकर हर दर्द सुनाया था आज उसी की याद में रोते हैं,

बजा दीजिएगा तो जी बहुत बहुत स्वागत है और आपके भी गाने की फरमाइश को। पूरा किया जाएगा और जो कि गाने की फरमाइश पहुंची हुई है लिंक के माध्यम से है, तो चलिए जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश। और गाने की बोल है पहली बार हुआ है और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है, तो चलिए प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में ये प्यारा सा सॉन्ग।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफी बेहद खूबसूरत सा गाना, और गाने की बोल थी पहली बार हुआ है, और मूवी है बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ मैसेज पहुँचा है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि

कुछ जख्म वो होते हैं जो दिखते नहीं, कुछ दर्द वो होते हैं जो बिकते नहीं, जिंदगी का हर पन्ना एक कहानी है, कुछ बातें जो कहीं नहीं जाती सुनी जाती है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि तेरे बिना दिल को चैन कहाँ, तेरी मुस्कान है मेरी जान और हर खुशी तुमसे ही जुड़ा है, क्योंकि तू है मेरे दिल की अरमान। और मैसेज करने वाले हैं जावेद जी और लिख रहे हैं कि मैम गुस्सा मत होइएगा, मैम कॉल कर देते हैं और मेरा मैसेज को आप शामिल कर देंगे, और मेरे मैसेज बहुत देर कर देती हैं ना, इसके लिए कॉल करते हैं। और लिख रहे हैं अफसर भैया थे ना तो वो हर मैसेज पहले माइंड करते थे और रिमाइंड करते थे। तो जी मैं आपको बता दूँ कि मैं 5-5 मिनट तक आप सभी के मैसेज को शामिल करती हूँ, और यहाँ रूल्स तो हैं कि 2 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलना है, फिर भी आप सभी के लिए मुझे आप सभी के मैसेज को शामिल करने पड़ते हैं, और केवल आप ही के तो मैसेज को मैं शामिल नहीं कर सकती, और यहाँ हमारे काफ़ी सारे अभी लिसनर के मैसेज मैंने शामिल नहीं किया है। तो इसी के साथ गाना भी प्ले करना होता है और मैसेज भी शामिल करना होता है, तो थोड़ा वक्त तो लगता है। और लिख रहे हैं गुस्सा मत होइएगा मैम, आपका पुराना पुराना लिसनर हूँ। और जावेद आलम अबू धाबी से, तो जी बुरा बिल्कुल नहीं लगा आपको जो लगता है आपने लिखा। और लिख रहे हैं कि अबू धाबी का सहारा है रेडियो रिमझिम, और रेडियो रिमझिम को हम दिल से प्यार करते हैं, और क्या हुआ मैम शामिल एक बार फिर से कर दीजिएगा। तो जी बिल्कुल आपके मैसेज को मैंने शामिल कर लिया है और मुझे कोई बुरा नहीं लगा, बस मैंने आपको बताया। और यहाँ पे जो कि अगला मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहा है कि पता नहीं लोग प्रपोज कैसे करते हैं, मुझे तो समोसे के साथ चटनी मांगने में शर्म आते हैं। और मैसेज करने वाले हैं रोहित जी जो कि काफ़ी मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, और इसी के साथ यहाँ थैंक यू सो मच का मैसेज पहुंचा हुआ है, और जो कि लिख रहे हैं यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है उत्तम सोनी जी की तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहा है मैम मेरा गाना राघव भैया और राजू भैया को भी डेडिकेट था, वो छूट गए थे, तो कोई बात नहीं आपके मैसेज को शामिल कर लिए हैं और उन लोगों ने भी सुना होगा। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा है हमारे पास जो कि लिख रहा है शमशाद अली जी कि रात सोचा माँ तेरे एहसान लिखूँ, हो गई सुबह क्या क्या पैगाम लिखूँ, मेरे अल्फाज नहीं काबिल तेरी शान के, मैं किस तरह तेरी हस्ती के उनवान गुनवान लिखूं। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं शमशाद अली जी, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम नमस्ते कैसी हैं आप, और जय किशोर जी की तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है, और यहाँ पे जी मैं ठीक हूँ आप बताइए आप कैसे हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं मैम मेरी भी गाने की फरमाइश है जो पूरा कर दीजिए, और जी आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा करेंगे, पर उससे पहले यहाँ एक गाने की फरमाइश पहुँची हुई है जो कि गाना सुनना चाहते हैं, और लिख रहे हैं बरौली गोपालगंज से हूँ और बरौली का आज मेला है और मेला फिल्म का कोई भी सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा, तो चलिए मेला मूवी से आपके लिए गाना प्ले करती हूँ, और गाना वहीं रहेगा मेला दिलों का आता है, तो एंजॉय कीजिए रेडियो रिमझिम 91.4 FM में ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
6: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
5: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
6: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
5: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
6: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
5: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
7: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
8: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में और हमारी स्टूडियो की घड़ी में 1:08 हो रहे हैं और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेला फिल्म का गीत बहुत प्यारा लगा और यह फिल्म मैंने सन 2000 में देखा था जब मैं 12वीं में पढ़ रहा था और बहुत ही अच्छा फिल्म है। और सूर्यभान सिंह विश्वंदरी घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं और यहाँ मैसेज पहुँचा है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं रिमझिम रिमझिम बारिश की बूंदे आज मौसम भी गीत सुनाए। रेडियो रिमझिम पर भारती मैम की आवाज़ दिल के हर कोने को मुस्कुराए। और लिख रहा है बारिश की हर बूंदों में जैसे दोस्ती की मिठास है, दोस्त साथ हो तो हर पल खास है। भारती मैम की आवाज़ और रिमझिम का ये सुहाना मौसम बस यूं लगे जैसे खुशियों की बरसात है। और लिख रहे हैं जो दोस्त बारिश में भी साथ निभाए वहीं तो जिंदगी में रंग भर जाए। रेडियो रिमझिम सुनते सुनते आज दिल यही कहता है दोस्ती बनी रहे और बारिश यूं ही बरसती रहे। और मैसेज करने वाले हैं राघव जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका और काफ़ी बढ़िया लाइन के साथ जुड़े हुए हैं और इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद है एक बार फिर से। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि तरसते थे वो हमसे मिलने को भी कभी, आज वो मेरी परछाई से कतराते हैं। हम भी वही हैं, दिल भी वही है, जाने कैसे यूँ लोग बदल जाते हैं। और मैसेज करने वाले हैं धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ है जो कि मैसेज करने वाले हैं लिख रही हैं कि हेलो मैम, मैं सिया यादव सिवान से बोल रही हूँ और आप प्लीज़ मेरा गाना प्ले कर दीजिएगा और डेडिकेट करना चाहती हैं मधु कुमारी को। और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास और मैसेज तो शामिल करूँगी पर यहाँ लिख रहे हैं कि शुक्रिया मैम बहुत बहुत आपका मैसेज शामिल करने के लिए, और यहाँ काफ़ी सारे अभी भी मैसेज पहुँचे हुए हैं, और लिख रहे हैं यहाँ कि हमारा मैसेज नहीं पढ़ रही है जी, और प्लीज़ शामिल कर लीजिए, और मैसेज लिख रहे हैं कि भारती मैम नमस्कार प्रणाम, मिथिलेश चौहान हिजरे नवादा से, और मुझे भी गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ जो कि यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है और गाना सुनना चाहते हैं, और लिख रहे हैं कि हेलो मैम, मेरा नाम कन्हैया पासवान है और सिवान से और सुन रहा हूँ, और हमें मेला मूवी का गाना सुनना है, और यहाँ काफ़ी सारे लोगों की तरफ से आज मेले मूवी का गाना की फरमाइश पहुँच रही है, और लिख रहे हैं कि मेला मूवी का कोई भी गाना प्ले कर दीजिएगा। तो चलिए मेला मूवी से एक और गाने की फरमाइश को पूरा करते हैं, और गाने की बोल इस बार है कि कमरिया लचके रे। तो एंजॉय कीजिए गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

0: अभी हम लोग मेला मूवी का एक प्यारा सा सॉन्ग सुन रहे थे, कमरिया लचके रे, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरी हाजिरी लगा है, मैं नहीं सुन पाया। और मैसेज करने वाले हैं जितेंद्र बरौली से, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और जी, मैंने आपके मैसेज को शामिल किया था। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं, धनेश शर्मा सिवान डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और एक शायरी है और लिख रहे हैं आपके लिए, और आपकी कोयल जैसी आवाज़ में इतनी मिठास है। लिख रहे हैं कि आपकी कोयल जैसी आवाज़ में इतनी मिठास है कि दो इसके रस आगे रसगुल्ला भी बकवास है। ओहो, और क्या लाइन बना के भेजे हुए हैं, और काफ़ी बढ़िया है, और इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं मुकेंद्र कुमार कुशवाहा बंजारी से, और अभी दुबई से सुन रहा हूँ, और लिख रहे हैं कि टूटा हुआ आईना फिर से किसी ने जोड़ा है क्या, मोहब्बत ने भी किसी को छोड़ा है क्या, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो मेरी शायरी पढ़कर, तुम्हारा भी दिल किसी ने तोड़ा है क्या। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं मुकेंद्र कुमार जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं, पहले लोग सोते थे तो शरीर को आराम मिलता था, और अब लोग सोते हैं तो मोबाइल को आराम मिलता है। और मैसेज करने वाले हैं रोहित जी देहरादून से, और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि मोतिहारी से हैं मोहम्मद मीनू, और मोहम्मद मीनू ही जुड़े हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ अगला मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो मैम नमस्ते, कैसी हो आप, और लिख रहे हैं कि काहे मैम गाना ना चली का, तो जी आपके बता दें कि आपके गाना के फरमाइश हमने पूरा किया था यस्टरडे को ही, और आपके गाने की फरमाइश फिर एक हफ्ते बाद प्ले होगी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं, हमारे गांव विरई न्यायपरा जिला बालोद छत्तीसगढ़ में बाढ़ के खतरे से बाहर है, और हमारे गांव में 10 किलोमीटर की दूरी पर गंग रेल बांध है, और वहाँ का 14 गेट खोले गए हैं, और महानदी जलमग्न है। और बसंत कुमार ठाकुर न्यायपरा विरई से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे अगला मैसेज हमारे पास जो पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है, और साबिर अंसारी जी की तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुंचा हुआ हमारे पास अगला जो कि लिख रहे हैं, आई एम सुनील कुमार बिहार गोपालगंज बैकुंठपुर दिगवा दुबौली से जुड़ा हूँ, और हमको भी गाना सुनना है, और बहुत दिनों के बाद जुड़ा हूँ। और लिख रहे हैं कि ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा रुलाती है थोड़ा हंसाती है, खुद से ज़्यादा किसी पर भरोसा मत करना क्योंकि अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ जाती है। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं सुनील कुमार जी, तो बहुत बहुत स्वागत है, और आपके भी गाने को प्ले किया जाएगा। पर उससे पहले यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, और मैसेज शामिल करने से पहले कॉल लूँगी, और कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँचा हुआ है। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमझम 90.4 एफएम में।
1: नमस्कार
0: जी। नमस्कार,
1: क्या समाचार बा?
0: जी मेरा ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: हमारा भी ठीक है।
0: नाम बता दीजिएगा अपना।
1: नाम हमारा हसनैन है, तिजरिया से बोल रहे हैं।
0: जी जी, तो
1: गाना सुना दीजिएगा।
0: बता दीजिए
1: गाना जो है, कितना प्रभु को अपनी रोटी को लेकर करी हुआ है।
0: और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: आपको भी सुनाना है, सब कोई सुने। ठीक बा
0: जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: ठीक है ठीक है।
0: रेडियो रूम जी में कॉल किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

0: मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: प्रसाद क्लिनिक।
3: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
2: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
3: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034-48652 पे।
6: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और आप सबको एक और बात बता दूं कि आप सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, YouTube, ट्विटर, Facebook पर विजिट करके गोपालगंज के हालचाल रेडियो रिमझिम के वेबसाइट से जुड़कर जान सकते हैं और लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि लिख रही हैं सानिया सैफी जी कि मैम इस गाने पर कुछ नहीं कहूँगी वरना विवाद हो जाएगा। और जी बिल्कुल, आप कुछ बोलिएगा तो ज़रूर कुछ लाइन्स आएंगे। और यहाँ मैसेज पहुँचा हमारे पास जो कि लिख रहे हैं, मैम इस फिल्म का एक और बार गीत सुना कर मेरी पुरानी यादें इस फिल्म की एकदम ताज़ा कर दी। और बहुत बहुत धन्यवाद सूर्या भान सिंह, विश्वेंद्र गुरवाल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि हाय भारती मैम, मैं मोहम्मद जावेद पुणे महाराष्ट्र से और मेरे दोस्त विनोद ताज ने और मोहर दास, दिनेश भगत, हुकमत अली और वनखंडे मामा और मेरा गाना प्ले कर दीजिएगा। तो जी बहुत बहुत स्वागत है आप सबका भी, और आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है रोहित जी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं, नाखून काटने पर खून क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि उसका नाम ही नाखून है। और ऐसे विचित्र जानकारी के लिए बने रहे हैं हमारे साथ। तो जी बिल्कुल, हम सभी आपके साथ बने हैं और ऐसे ही मज़ेदार लाइन्स आप भेजते रहे। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून मैम, और मुस्तफ़ा सऊदी अरब से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसी के साथ जो हमारे पास यहाँ गाने की फरमाइश पहुँची है सिया जी की तरफ से, जो कि सिवान की रहने वाली हैं और गाना सुनाना चाहती हैं मधु जी को, और गाने की बोल है कमरियों से पातर बलुमुआ हमार। और प्रदुमन परदेसी और शिल्पी राज की आवाज़ में ये गाना है। तो गाना प्ले करते हैं, एंजॉय करते हैं रेडियो रमजिम 90.4 FM में।

अभी हम लोग सुन रहे थे पदुमन परदेसी और शिल्पी राज की आवाज में कमरियों से पातर पीवा हमारे, और मैसेज करने वाली थी सिया जी और यहाँ जो कि सिवान से जुड़ी हुई हैं, और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग कमरियों से पातर बलमुआ हमार, और मैसेज करने वाले हैं जय किशोर प्रसाद जी, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो

0: सुना नहीं सकती। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं कि नूर आलम बदरपुर बॉर्डर दिल्ली से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं। और गाने की बोल है, मुंबई से बोला तानी बुरा समाचार बा, और मनोज तिवारी का गाना है। तो बिना देरी के आपके गाने को प्ले करेंगे और इंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 91.4 FM में।
1: हेलो, कहीं हो भाई।

0: आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
9: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और आप सुन रहे हैं योर वॉइस योर चॉइस का शो। तो यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852-78-82-91, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72-77-16-65-96। तो दोस्तों, बिना देरी किए बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि जावेद अख्तर धनबाद झारखंड से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग, और अभी जो गाना बज रहा था, और जी गाना बज रहा था मनोज तिवारी की आवाज़ में, मंगरुआ बीमार बा। और यहाँ पे अगला मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं कि नूर आलम, जो कि लिख रहे हैं गाना बजा दिए, इसके लिए धन्यवाद। और हमारे सभी साथी लंच करने बाहर चले गए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ओहो, कोई बात नहीं, आप सुने, इतना ही काफ़ी है। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं नमस्कार मैडम जी, मैं भी सू से जुड़ गया हूँ। और नमस्ते मैडम जी, मैं जलंधर पंजाब से जुड़ गया हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं राघव जी की, कह दी दादी जल्दी से उन्हों आशीर्वाद भेज दी, मंगरुआ के चेहरा पर फिर से मुस्कान भेज दी, दूर बम्बई में बानी बाकिर दिल गांव में बा, दादी के प्यार ही तो मंगरुआ के जान में बा। और क्या लाइन पहुँची हुई है हमारे पास राघव जी की तरफ से। और यहाँ पे मैसेज पहुँचे हुए हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून मैम, मैं ज्वाला प्लम्बर पानीपत हरियाणा, और लिख रहे हैं क्या हाल चाल है और मुझे ये गाना सुनना है, और गाने की लिंक भेज रहा हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और जी आपके भी गाने की फरमाइश पूरी की जाएगी। पर इससे पहले यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि एक बात आज तक समझ नहीं आई, कपड़े का कच्चा रंग दूसरे कपड़े पर लग कर पक्का क्यों हो जाता है। और जी बात ये बिल्कुल आपकी सही है, और ये बात मुझे भी नहीं समझ में आई। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है सानिया सैफी जी की तरफ से, और लिख रही हैं कि एक होते हैं क्लासी, एक होते हैं एक्स्ट्रा क्लासी, और फिर आते हैं हम जैसे लोग जो फुल वॉल्यूम में गाने चला के बर्तन और झाड़ू को कंसर्ट बना देते हैं। और ये आपकी बात बिल्कुल सही है और काफ़ी मज़ेदार लाइन भी है। और यहाँ पे इनके तरफ से गाने की फरमाइश जो वॉइस के माध्यम से पहुँची हुई है, तो प्ले करते हैं और जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश।
0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हम सानिया सैफी चखसना से, कैसे हैं आप सभी? और आज के समय मुझे भी गाना सुनना है तो सुना दीजिएगा। और गोपालगंज में लगातार पिछले 2 दिनों से बारिश होती जा रही है और 2 दिन तक और होगा, तो सभी को ये अपना सेफ्टी का ख्याल ज़रूर रखिएगा और मुझे गाना सुना दीजिए। और गाने की बोल है, और गाने की बोल है, दिल दिल पे किसी का इख्तियार होता कहाँ है, दिल पे किसी

0: तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफी खूबसूरत सा गाना सानिया सैफी जी की तरफ से, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रही हैं, सुक्रिया आप भी गाना गा सकती हैं, और जी आपका गाना काफी बेहद खूबसूरत था। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं, सानिया सैफी जी सुपर सॉन्ग बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। और दिलीप राम जी की तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। और नूर आलम जी की तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है, और यहाँ पे जो कि अगला मैसेज यहाँ पे कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और जानते हैं क्या इनकी फरमाइश। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, मेरा ठीक है, आप बताइए आपका क्या हाल चाल है।
1: हमारा भी ठीक है।
0: तो आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: गाना सुनना है, हम के बड़ा जो सॉन्ग है वो सुनना है।
0: और गाना किसी को सुनवाना भी है? जी जी, बारिश तो हो ही रहा है, अभी भी बारिश हो रहा है हमारे यहाँ।
1: हम लोग
0: जी जी, यही सेम हाल यहाँ का भी है, यहाँ भी दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है।
1: आज तो नहीं खुलेगा मौसम
0: जी, अभी तो लगातार दो दिन और बारिश होने की संभावना है। अच्छा जी, ये तो बात है। तो आपका गाना प्ले करते हैं जी, एंजॉय कीजिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रंजीम 90.4 FM और हमारी स्टूडियो की घड़ी में 1:57 हो रहा है और सो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो मैं आप सबको एक और बात बता दूं कि आप फेसबुक पर से रेडियो रंजीम से जुड़कर वहां पोस्टर पे लगे सारे प्रोग्राम के नंबर को नोट कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मुस्तफ़ा जी सऊदी अरब से जुड़े हैं और लिख रहे हैं खाना हो गया क्या भारती जी? तो जी अभी तो हमारा लंच ब्रेक होगा 2:15 के बाद और उसी वक्त मैं अपना

खाना खाती हूँ और आपका हो गया क्या। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग हल्की बारिश में गाना सुनकर मज़ा आ गया। और लिख रहे हैं कि ज़माना बदल चुका है साहब, आजकल नींद आंख बंद करके नहीं नेट बंद करके आती है। और ये आपकी तो बात बिल्कुल सही है। और रोहित जी की तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रही हैं कि लिख रहे हैं कि हाय हेलो नमस्कार मैडम जी, और मैं सोनू कुमार दुबई से। और लिख रहे हैं न जाने वो हमसे क्या छुपाता था, बस दूर से ही मुस्कुराता था, पर न जाने वो हमसे क्यों शर्माता था, जब मुंह खुलवाया तब मालूम हुआ साला चुपचाप पान मसाला चबाता था। और काफ़ी मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। और लिख रहे हैं मुझे भी गाना सुनना है, तो जी आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचे हुए हैं हमारे पास, लिख रहे हैं कि थमके बरस ये बादल आज दिल की बात कहने दे, भींगी भीगी इस शाम को थोड़ा और संवरने दे, तेरी बूंदों में जैसे कोई मीठी सी आवाज़ है, आज थमके बरस के सॉन्ग यादों को भी बरसने दे। लिख रहे हैं बारिश की हर बूंद कह रही है प्यार का पैगाम, मौसम भी सुहाना है और दिल भी बेकरार तमाम। और मैसेज करने वाले हैं राघव जी और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास जो कि गाने की फरमाइश पहुँची हुई है सुनील कुमार जी की तरफ से, जो कि बिहार गोपालगंज बैकुंठपुर दिगवा दुबौली से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं। और इनकी तरफ से गाने की जो लिंक पहुँची हुई है और गाने की बोल है मांगी प्यार राजा जी और नीलकमल सिंह की आवाज़ में ये गाना है, तो रेडियो रिमझिम पे गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ।

तो अभी हम लोग बेहद खूबसूरत गाना सुन रहे थे नीलकमल सिंह जी की, और गाने की बोल थी मांगी प्यार राजा जी, और मैसेज करने वाले थे सुनील कुमार बिहार गोपालगंज बैकुंठपुर दिगवा दुबौली से, और इनके तरफ से मैसेज पहुंच गया है जो कि लिख रहे हैं कि थैंक यू सो मच भारती जी गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ पे जो कि अगला मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ है और गाना सुनना चाहते हैं, लिख रहे हैं कि ज्वाला प्लम्बर पानीपत हरियाणा से जुड़े हैं और गाना सुनना चाहते हैं, और जी आपके भी गाने को प्ले करूंगी, पर यहाँ एक मैसेज पहले पहुँचा हुआ उसे शामिल कर लूं। और मैसेज है सानिया सैफी जी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं, ये भी कोई बात हुई, एक मेरा पड़ोसी है, कभी सब्जी बना रहा है, कभी दाल बना रहा है, कभी झाड़ू पोछा कर रहा है, और कलेश मेरे घर में हो रहा है, और काफ़ी मजेदार लाइन के साथ जुड़ी हुई हैं सानिया सैफी जी। और चलिए आपके गाने को प्ले करते हैं बिना देरी किए, और ज्वाला प्लम्बर जो कि पानीपत हरियाणा से जुड़े हुए हैं, और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश बेहद खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, और गाने की फरमाइश है मौसम आशिकाना है, और सोनू कुमार सोनू और कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में गाना है, तो गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी बेहद खूबसूरत सा गाना मौसम आशिकाना है, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं, धन्यवाद मैम, थैंक यू मेरा गाना प्ले की इसके लिए। और मैसेज करने वाले हैं ज्वाला जी। और इसी के साथ जो कि हमारे पास अगले गाने की फरमाइश जो पहुँची हुई है, बिना देरी किए हुए प्ले करूँगी और टाइम भी हमारे पास कम है और न्यूज़ प्ले करना है। और उपेंद्र कुमार अहिरौली धन कुशीनगर यूपी से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं, मुझे गाना सुनना है। और गाने की बोल है ओ रांझना ओ रांझना, हिंदी फिल्म है और फिल्म है माँ तुझे सलाम। तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

और इसी गाने के साथ बढ़ेंगे दोपहर न्यूज की तरफ और हमारी फिर से मुलाकात होगी आपसे दोपहर न्यूज के बाद। और जो भी जिनके भी गाने प्ले नहीं किए हैं और जिनके भी मैसेज शामिल नहीं किए हैं दोपहर न्यूज के बाद फिर से शामिल करेंगे। तब तक आप सभी इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: policy reform to give developing nations greater voice. Continuous rain in Odisha, Chhattisgarh, Bihar and Uttar Pradesh disrupts normal life. Heavy rainfall alert for today over parts of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh. Iran proposes deal to reopen Strait of Hormuz in 7 days if US meets its conditions. US rejects the proposal. Indian women's kabaddi team clinches gold, beating Iran at Asian Games, wins 2 silver medals in women's shooting and men's marathon. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। ईरान ने अमरीका द्वारा उसकी शर्तें मानने पर 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडबरू मध्य खोलने का प्रस्ताव दिया। अमरीका ने प्रस्ताव खारिज किया। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा में एआई संसाधनों तक लोकतांत्रिक पहुंच, सुरक्षित और भरोसेमंद प्रणालियों के निर्माण, मानव क्षमता में निवेश तथा आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि समुद्री क्षेत्र में एआई से समुद्री गतिविधियों की निगरानी, खोज और बचाव, आपदा प्रबंधन तथा संदिग्ध गतिविधियों की पहचान में मदद मिल सकती है। एआई का उपयोग जहाजों, संचार नेटवर्क और समुद्र के भीतर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले साइबर अभियानों के लिए भी किया जा सकता है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों की आवाज और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G77 के विदेश मंत्रियों की 50वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री मिश्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से अल्पविकसित और विकासशील देशों को केवल नियमों का पालन करने वाले देशों की श्रेणी से आगे बढ़कर नियम तय करने में भागीदार बनना होगा। उन्होंने बहुपक्षवाद को जन केंद्रित और विकासोन्मुख बनाने में G77 की निरंतर प्रासंगिकता का भी उल्लेख किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं।
3: सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। उन्होंने कोविड महामारी से मिले अनुभवों को दीर्घकालिक निवेश, मजबूत संस्थागत क्षमता और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों में बदलने पर बल दिया। उन्होंने आवश्यक स्वास्थ्य उत्पादों तक सभी देशों की समान और उचित पहुंच की आवश्यकता का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भारत ने करीब 30 करोड़ वैक्सीन की खुराक लगभग 100 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को उपलब्ध कराई। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिसर में स्थापित किया गया है। ये केंद्र विभिन्न अपराधों के पीड़ितों, जिनमें अदृश्य पीड़ित भी शामिल हैं, को एक ही स्थान पर कानूनी अधिकार और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। यहां पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक सहयोग, परामर्श और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि बच्चों में नशे की लत को केवल जनस्वास्थ्य का मुद्दा नहीं बल्कि बाल संरक्षण के विषय के रूप में भी देखा जाना चाहिए। वे आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जोन ए में 16,726 अनधिकृत निर्माणों को सील कर ध्वस्त करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने शहर के 3 अन्य क्षेत्रों में अवैध निर्माण को लेकर भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 85वें स्थापना दिवस के अवसर पर तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और असमिया भाषाओं में 5 नई लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं का शुभारंभ किया। इन पत्रिकाओं को CSIR

0: राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान ने प्रकाशित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 358 तालुकों में से 265 को सूखा प्रभावित घोषित किया है, जो राज्य का 74% हिस्सा है। 32 जिलों में बारिश की कमी और लंबे समय तक सूखे की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ओडिशा में कम दबाव की वजह से लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई हिस्सों, खासकर उत्तरी जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। एक रिपोर्ट।
1: लगातार हो रही बारिश ने उत्तरी ओडिशा में तबाही मचा दी है, जिससे बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर में बाढ़ का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे भद्रक और जाजपुर के कुछ हिस्सों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के कारण केउंझर में जोड़ा के पास राणासाला घाट पर भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, जहां चट्टानों और मिट्टी के गिरने से लोगों और वाहनों को आवाजाही के लिए खतरा पैदा हो गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: बिहार में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है।
2: राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले चार दिनों से हो रही लगातार बारिश से कोसी, गंडक और बागमती समेत कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए एहतियातन वीरपुर कोसी बैराज के 40 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं पश्चिम चंपारण में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पटना समेत कई स्थानों पर हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उत्तर प्रदेश में बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के 63 जिले तेज बारिश की चपेट में हैं और पूरे राज्य में सिर्फ एक दिन में औसत से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। सभी जिलों में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी दिन में कुछ स्थान पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के जरिए देश सेवा के मंत्र और अटूट संकल्प के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 साल पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी विजन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि कैसे अहमदाबाद स्थित गिफ्ट सिटी जैसी दूरदर्शी पहलों के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
3: वर्ष 2008 में परिकल्पित और भारत के पहले ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी आधुनिक शहरी नियोजन और वैश्विक वित्त के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। स्वचालित कचरा संग्रहण प्रणाली, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम और समर्पित यूटिलिटी टनल जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ निर्मित गिफ्ट सिटी भारत का पहला कार्यात्मक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बन चुका है। गिफ्ट सिटी की दूरदर्शी नींव और उसके विकास पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
4: 2008 में वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस और रिसेशन का दौर था, लेकिन उस समय गुजरात फिनटेक के एक क्षेत्र में नए और बड़े कदम बढ़ा रहा था। मुझे खुशी है कि वो आइडिया आज इतना आगे बढ़ चुका है। गिफ्ट सिटी कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के हब के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। गिफ्ट सिटी वेल्थ और विजडम दोनों को सेलिब्रेट करता है। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगता है कि गिफ्ट सिटी के जरिए भारत विश्व स्तर पर सर्विस सेक्टर में मजबूत दावेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है।
3: इस अनूठे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
5: माननीय प्रधानमंत्री जी के गुजरात में निर्मित हुआ एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है गिफ्ट सिटी। आमतौर पर रियल एस्टेट के विकास का एक ट्रेंड होता है कि पहले उद्योग आते हैं, फिर लोग आकर बसते हैं और आवश्यकता अनुसार डेवलपमेंट होता है।
3: आज गिफ्ट सिटी भारत के बढ़ते प्रभुत्व का एक जगमगाता प्रतीक बन चुका है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और क्षेत्र में जारी संघर्ष समाप्त करने की बात कही गई थी। ईरान फिलहाल अमेरिका के आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहा है। ईरान ने प्रस्ताव दिया था कि सभी मोर्चों पर 7 दिन के भीतर संघर्ष समाप्त किया जाए, अमरीका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाए, ईरान की जब्त धनराशि जारी करे और उसके तेल पर लगे प्रतिबंधों में छूट दे। इसके बाद होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की बात कही गई थी। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। एशियाई खेलों में भारत का यह तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने महिला कबड्डी टीम को खिताब बरकरार रखने पर बधाई दी है। एशियाई खेलों में भारत के सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पुरुष मैराथन में रजत पदक जीतने वाले सावन बरवाल को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन, धैर्य, टीम भावना और दृढ़ संकल्प ने देश को गौरवान्वित किया है। भारत की तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने एशियाई खेलों में आज महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता और तिलोत्तमा व्यक्तिगत स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और कोचालुम कल और आशी चौकसी को बधाई दी है। स्क्वाश में अनाहत सिंह ने जापान की सतोमी वातानाबे को हराकर महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष सिंगल्स में अभय सिंह ने भी पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान को हराकर गोल्ड मेडल राउंड में प्रवेश किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
7: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
8: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
7: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
9: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
10: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
11: भरोसे वाले से लेंगे,
10: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
11: और कीमत भी।
10: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
12: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
13: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
12: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
14: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
12: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
15: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
12: कॉल करें 85070-32042 पे।
16: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
17: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
16: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
17: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
16: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
17: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
16: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
17: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
18: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
19: रेडियो रिमझिम,
18: सुनो दिल से।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923। दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-400 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
6: रेडियो रिमझिम।
5: सुनो दिल से।

0: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डीलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
5: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
6: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
7: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
8: रेडियो रिमझिम,
7: सुनो दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710 3992 या 9765065।

छोटे से ब्रेक और दोपहर न्यूज के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के जरिए जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98527-88291 और कॉल करने के जरिए हमारा नंबर है 72776-1665। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं

पर मैसेज पहुंच गया जो कि लिख रहा है, हेलो भारती मैम, मुझे भी गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मैसेज पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहा है बसंत कुमार ठाकुर, सरोज ठाकुर, ईश्वर राज पप्पू, प्राची ठाकुर, नया पारा भिरई जिला बलोद छत्तीसगढ़ से, फरमाइश भेजे फिल्म। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके भी गाने को हम प्ले करेंगे। और यहाँ पर मैसेज पूछा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हाय, और नाम मेंशन नहीं किया है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आप लोग अपना नाम मेंशन करिए ताकि मुझे दिक्कत ना हो। मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं जावेद अख्तर, धनबाद झारखंड से, और मुझे भी गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हाय भारती मैम, एमडी जावेद पुणे महाराष्ट्र से, मेरा दोस्त विनोद तेजे और मोहनदास दिनेश भगत। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं। और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है जो कि फरमाइश पहुंची है लिंक के माध्यम से। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं रेडियो म्यूजियम 90.4 FM पे।

लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि लिख रहे हैं, प्यार में मौत से डरता कौन है, प्यार हो जाता है करता कौन है, आप जैसे यार पर हम तो क्या सारी दुनिया फिदा है, लेकिन हमारी तरफ आप पर मरता कौन है। और आपका शुभ चिंतक धनेश कुमार मिश्रा। धनेश कुमार मिश्रा जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पूछा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं, क्या हाल है दीदी, आपके लिए शायरी सुना दूं? तो जी बिल्कुल। और मैसेज करने वाले हैं गोलू अनमोल, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और इसी के साथ बढ़ेंगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं, हेलो भारती, मैं मुझे भी गाना सुनना है, तो प्लीज़ चला दीजिए। और गाने के बोल हैं, हम जानते हैं तुम्हें बर्बाद करोगे, फिल्म खिलौना। और मैसेज करने वाले हैं मोहम्मद सदाम मुंबई से, तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं, और बहुत ही खूबसूरत है, और इंजॉय करते हैं रेडियो 90.4 FM पे।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9956-59536 या 9956-57902।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
2: जी हाँ, कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। योर वॉइस इज पहुंचने वाला जो कि लिख रहा है। मैडम जी, प्रोग्राम बहुत ही सुंदर चल रहा है और मैसेज करने वाले हैं गुरु नानक पूरा पंडिता पंजाब से, जो

आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा जी, हम रेडियो रिमझिम से जुड़ गए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। उससे पहले यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो मैम निजामुद्दीन, मेरा भी सॉन्ग चला दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपके भी, और आपके भी गाने को हम प्ले करेंगे। और यहाँ पे एक और मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं, हाय मैम हमको गाना सुनना है, और मेरा नाम अबेद खान है झारखंड से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके भी गाने को हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, हाय हेलो बहन प्लीज मेरा सॉन्ग बजा दीजिएगा, और सॉन्ग नेम है ये मेरी कॉलेज की लड़कियाँ, और लिख रहे सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा, मैं राजवीर सोनी बेगूसराय से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और चलिए हम आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे, और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है, तो एंजॉय करेंगे लो रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे ये प्यारा सा सॉन्ग।

अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे और इनके तरफ से मैसेज पहुंच गया जो कि लिख रहे हैं थैंक यू सो मच मैम गाना प्ले करने के लिए। और मैसेज करने वाले हैं राजवीर सोनी बरौली से, सॉरी बेगूसराय से। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं जी मनोरमा मैम नमस्ते कैसी हैं आप और सुपर सॉन्ग। और मैसेज करने वाले हैं उत्तम सोनी जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे एक और फरमाइश पहुँची और हमारे पास यहाँ पे एक और मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं हेलो मैम नमस्ते क्या हाल है, तो मैं ठीक हूँ आप बताइए कि आप कैसे हैं। और मैसेज करने वाले हैं जय किशोर प्रसाद जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आप बताइए कि आप कैसे हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं नमस्कार मैडम जी मैं सुनील शर्मा भरोसा से अभी हैदराबाद से आपका कार्यक्रम सुन रहा हूँ, मुझे गाना सुना दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और गाने के बोल है मर्दा पे केहू ताकि त गर्दा उड़ा दे आप और सिंगर शिल्पी राज की आवाज़ में। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं सुनील जी और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

बच्चों के लिख रहा है। नमस्कार भारती जी, मैं पारा भिरई से प्रमोद कुमार साहू, मेरा तबीयत ठीक है, मुझे गाना सुना दीजिए मनोरमा जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और चलिए आपके गाने को भी हम प्ले करते हैं। गाने के बोल हैं फूल गुलाब का, तो बहुत ही खूबसूरत।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
2: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
2: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
2: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
4: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
5: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
5: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
5: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
6: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है सुपर सॉन्ग मैम, और मैसेज करने वाले हैं जय किशोर प्रसाद जी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं धन्यवाद मैडम मनोरमा जी नए पारा धीरेई से, रूप नारायण, प्रमोद कुमार जी, और तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इनके गाने को हम प्ले किए थे जो कि मैसेज पहुंच गया, जो कि लिख रहे हैं धन्यवाद गाना बजाने के लिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मेरा भी रिक्वेस्ट है सॉन्ग सुना दीजिएगा, और मैसेज करने वाले हैं जावेद अख्तर धनबाद झारखंड से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। उससे पहले यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं मोर मर्दा पे केहू ताकि ता गर्दा उड़ा देला, उनकर मुस्कान देख के दिलवा खिल खिल खिल देला, और नजरिया में बसल बाड़े उनकर प्यार के नशा, वही के देख के हर घड़ी दिल मुस्कुरा देगा। और मैसेज करने वाले हैं

मैसेज करने वाले हैं ओम साइंट एनर्जी बंजारी रोड से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इन्होंने मैसेज किया है जो कि लिख रहे हैं मनोरमा मैम की सुरीली आवाज़ के नाम रेडियो रिमझिम की धड़कन बनकर जब आवाज़ आपकी आती है खामोश दिल की धड़कन भी मुस्कुराती है। योर वॉइस योर चॉइस का रंग जब महफिल में छा जाता है हर दोस्त का दिल बस आपकी आवाज़ सुनने को मचल जाता है। दोस्ती की इस प्यारी महफिल में बस इतना कहना है आपकी आवाज़ यूं ही दिलों को छूती रहे, रेडियो रिमझिम की महफिल यूं ही सजती रहे। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ पहुँचे हुए हैं ओम साइन टेलर जी जो कि बंजारी के रहने वाले हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हेलो मैम राधे राधे पाजी यूपी 54 से, मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपकी भी हाजिरी लग चुका है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हाय मैं बाबा सूरत यूनिक पटिया से और मेरा भी गाना चला दीजिए। तो चलिए हम आपके गाने को प्ले करते हैं और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं थैंक यू मैम गाना प्ले करने के लिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं नमस्ते भारती जी, रंजन कुमार तमकुही रोड कुशीनगर उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हैं, हमारा भी गाना बजा दीजिएगा, लिंक के माध्यम से भेज दिया तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी।

मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहा है, हमारा गांव भिरई ने पारा जिला बलोच छत्तीसगढ़ से बाढ़ खतरे से है। और यहां पे लिख रहा है जो कि मनोरमा जी मेरा फरमाइश कब पूरा करेंगे, मैं एक घंटा से इंतजार कर रहा हूँ, बसंत कुमार ठाकुर ने पारा भिरई से। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और गाने के बोल है गुरु गुरु आ जाओ गुरु प्यार में डूबे, और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है। तो चलिए बसंत जी आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तो ये प्यारा सा गीत

0: लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज। क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
0: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
0: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
1: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

छोटी सी ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँच गया जो कि अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे निजामुद्दीन जी की तरफ से, और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं थैंक्स मैम गाना प्ले करने के लिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं हेलो मनोरमा मैम कैसी हैं, और लिख रहे हैं आप और मैं फिर से शो में जुड़ गया हूँ और मैं रोहित देहरादून से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे

स्वागत है और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे और मैसेज करने वाले हैं समीर अंसारी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका।

प्ले किए, आपको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ लाख लाख। और मैसेज करने वाला बसंत कुमार ठाकुर, पप्पू ठाकुर। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले कर दिए और आप सुन ले इससे बड़ी चीज़ क्या चाहिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पूछा हुआ है। कि मैडम जी बहुत बहुत ही सुंदर चल रहा है और मेरा भी गाना बजा दीजिएगा। और मैसेज करने वाले हैं गुरु नानक पूरा पंडिता पंजाब से। तो चलिए आपके गाने को भी

0: गाए जा
1: सुन रुबिया, तुमसे प्यार हो

तो अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे जो कि मैसेज पहुंच गया जो कि लिख रहे हैं। मैडम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, हम आपने हमारी फरमाइश को पूरा किया। मैसेज करने वाले हैं पंडिता पंजाब से किशोर सबलिया परिवार की तरफ से नमस्कार जी। तो नमस्कार आपको भी और मैसेज किए हैं कि आपका दिल से शुक्रिया। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है हेलो मैडम जी, सहबुद्दीन अंसारी फरीदाबाद हरियाणा से, और सॉन्ग है तो प्लीज़ बजा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपके भी और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। उससे पहले यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है नमस्ते मैम, मैं आपके वॉइस का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपको सुनना अच्छा लगता है। आप कैसे हैं मैम? मेरा नाम रजेश है और मैं बेगूसराय से हूँ। एक सॉन्ग है प्लीज़ प्ले कर दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके भी गाने को हम प्ले करेंगे राजेश जी। इससे पहले यहाँ पे बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि यहाँ पे लिख रहा है जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है।

श्रोताओं, समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का। तो कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98527881। और कॉल करने के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72776665। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मैं आप सभी से लूंगी विदा। इससे पहले मैं यहाँ पे फरमाइश पहुँची हुई है राजेश जी की तरफ से। तो चलिए राजेश जी से आपके गाने को हम प्ले करते हैं, जो कि बेगूसराय से जुड़े हुए हैं।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
3: रेडियो रिमझिम,
2: सुनो दिल से।
4: देखी जब हमनी के माता के गर्भ में रही ले जा, तो भगवान से यह प्रार्थना करेल आदमी कि हे भगवान, एह नरक कुंड से हमरा के बाहर करी, अब हम जब बाहर आए तेरा और नाम गुन गायब, और यहाँ आके हमनी के भुला जतनी जा एह माया में। यही पर कवि विश्वनाथ राजपुरी जी के ई रचना बा, देखी वहाँ का कहतनी।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
8: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
9: रेडियो रिमझिम,
8: सुनो दिल से।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
5: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
3: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
8: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और, वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 8604348652 पे।
9: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
10: रेडियो रिमझिम,
9: सुनो दिल से।

0: जब बुझ जाई समैया, चाहे कतनो तेल लगा लो, अरे खा लो दूध मलैया।
1: राम नाम आधार बा एह जीवन में, यही से कवि कहतड़े, देही का कहतड़े।
0: राम नाम रस पिया, राम नाम रस पिया, भैया हंसी हंसी।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9939365923।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
6: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
6: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
9: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल। दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
10: रेडियो रिमझिम,
9: सुनो दिल से।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करे 85070-32042 पे। बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-39-51-51 पे।
6: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
7: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
6: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
7: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
6: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170-856-587।
7: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
6: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
7: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
6: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में, और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
7: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
6: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
7: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
6: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
9: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
10: रेडियो रिमझिम।
9: सुनो दिल से।

0: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
2: पता: कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
7: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439-45-651 या 9707-06-575।
8: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
9: रेडियो रिमझिम।
8: सुनो दिल।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-89973। त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
4: तो फिर देर क्यों, चलो अब।

0: 9393956923।
1: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा, मिला ही नहीं
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
5: रेडियो रिमझिम।
4: सुनो दिल।

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ

0: ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
1: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
2: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
3: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67-666।
4: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
5: Now pick it up,
6: hello.
5: Now pick your phone up,
6: hello.
5: Pick it up,
6: hello.
5: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो मैम, नमस्ते।
2: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: जी मैम, धन्यवाद। सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मायर MP से।
2: जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: बस ठीक है मैम, अभी तो ट्राई कर रहे थे तो थोड़ी देर पहले बंद होता रहा था, फिर चालू हो गया मैम, तो वही फोन ट्राई कर रहे थे और फोन भी लग गया मैम। और वहाँ का मौसम का क्या हाल चाल है मैम?
2: जी मौसम यहाँ बढ़िया है।
1: जी बारिश नहीं है मैम, हमारे यहाँ तो बारिश है मैम।
2: नहीं नहीं, हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है, हो जाता तो
1: ठीक है मैम। हम जी मैम, हम भेज रहे हैं, बारिश हो जाएगा यहाँ मैम।
2: जी जी, आपके यहाँ तो होते रहती है, थोड़ा भेज दीजिए कि इधर भी हो जाए।
1: जी जी जी मैम, आप गाना भेज दीजिए, हम बारिश भेज रहे हैं मैम।
2: अच्छा, तो आप गाना बता दीजिए।
1: जी फिल्म दर्द और गाने की बोल है तू मेरे सामने, और सुनवाएंगे कितने रेडियो रेंज दोस्त लोग सुनते हैं, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
2: जी तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: ओके मैम, धन्यवाद।
2: सुनते रहिए रेडियो रेंज 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 FM में। जी
0: जी हम योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
1: जी
0: हेलो।
1: हाँ
0: हाँ जी हाँ जी, बढ़िया है।
1: क्या हो रहा है अभी?
0: अभी तो बारिश हो रहा है घर में है।
1: अच्छा, चलिए बढ़िया है, बारिश का मौसम है, एंजॉय कीजिए। तो बता दीजिए इसी के साथ कौन सा गाना सुनिएगा?
0: गाना हमें सुनवा देंगे साजन मूवी का, कोई भी प्यारा सा गीत।
1: गाने की वो
0: देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यारी वाला गीत सुनवा देंगे।
1: बिल्कुल, तो गाना सुनाएंगे भी किसी को?
0: सभी साथियों
1: ओके, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो।
0: धन्यवाद।
1: 90.4 FM।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
1: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
5: Hello. जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
6: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेस्टोरेंट में।
8: नमस्ते मैम।
7: नमस्ते,
8: गाना सुना था मैडम।
7: जी नाम बता दिए आप। और कौन सा गाना सुनाई
8: बाजपुरी गाना सुना दे हम लाल यादव।
7: गाना के बोल बता दी,
8: पूरा गाना सुनवाए ना।
7: कौन सा
8: बेटा? और
7: अच्छा चलिए ठीक बाबे। और
8: भारती मैम बोलो, तो मनोरमा मैम बोलो भारती मैम।
7: भारती
8: सुनवा दे हम गाना है सबसे ऊँचे।
7: एक बार गाना प्ले करते नहीं सुनत रही रेडियो 90.4 FM।
8: आज बाजी की कल
7: काल बाजी
8: बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम आपका, सुनते हैं मैसेज भी करते हैं व्हाट्सएप से।
7: ओके।

0: अरे बाप रे।
1: सलामकुम वालेकुम असलम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
2: बोलिए क्या हो रहा है?
1: बस आप लोगों से बातें हो रही हैं।
2: तो गाना सुनना है?
1: बिल्कुल, बताइए कौन सा गाना सुनना है।
2: मौसम के हिसाब से बजा दीजिए। मौसम कैसा हुआ है आपके एरिया में?
1: मेरे यहाँ तो मौसम काफी सुहाना बना हुआ है।
2: बरसात की तरह लग रहा है?
1: बरसात हुई थी, अभी खुला हुआ है और हल्की हवा चल रही है।
2: हवा तो तेज है, हल्की कहाँ है?
1: नहीं, इधर थोड़ा हल्का ही है, उतना भी तेज नहीं है।
2: ठंडा ठंडा मौसम हुआ है, ठंडा लग रहा है।
1: ऐसा जी, ठंडा लग रहा है।
2: बता दीजिएगा मौसम के हिसाब से गाना।
1: तो मौसम के हिसाब से तो बहुत सारे गाने हैं, आपको कौन सा सुनना है?
2: यही वाला बजा दीजिएगा, बरसात का मौसम आया।
1: गाना किसी को सुनवाना भी है?
2: मेरे अब्बू है, कलमी मियाँ, मेरे भैया है, मौलवी मियाँ, जमशेद, अरमान, इरफान, शमशेद, भतीजी सब है, अनाज भाई मेरी सब श्रोता को और आपको।
1: आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
2: थैंक यू। वेलकम।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 8470309092 या 9765665750।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
7: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456 या 9790-06-575।
8: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
9: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो
11: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 91.4 FM में।
10: सही है, मैं बद्री नारायण मुनि बोल रहा हूँ, ग्राम
11: भलोई, जिला सिवान, जामो बाजार। जी जी, कैसे हैं आप?
10: हम तो बहुत बढ़िया है, आप कैसी हैं?
11: जी हम भी अच्छे हैं।
10: ठीक है जी, तो हमको एक गाना सुनना है।
11: बिल्कुल, कौन सा?
10: गंगा जमुना फिल्म का, वो गाना का बोल है, नैन लड़ जाइ है तो मनवा में कसक होइबे करी, फुटिया पटाका तो धमक होइबे करी।
11: जी जी,
10: वो गंगा जमुना का है, संगीत गीत लिखा है शकील बलानी ने, संगीत दिया है 9-7 साल।
11: गाना किसी को सुनवाना भी है?
10: अब पूरे जितना लिसनर है रेडियो रिफ्यूम का, सबको हम सुनवाएंगे और आपको भी सुनवाएंगे, पूरा रेडियो रिमझिम के परिवार को और सबको सुनवाएंगे। और हमारा लड़का है नागार्जुन, उसको भी सुनवाएंगे। धर्मेंद्र है हमारा लड़का, उसको सुनवाएंगे। और गांव में एक आदमी है परोड़ी नाम है उसका, उसको भी सुनवाएंगे।
11: ओके, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 जी। कल शाम को 5 से 7 मिलेगा सुनने को।
10: अच्छा, 5 से 7 बजे कल, ठीक है। ठीक है,
12: लागा गोरी गुजरिया से

0: अपना मुँह से सुना दियो बढ़िया पूरा जुड़वा कौआ
1: कौन
0: सुन दुनिया के लोग तो सुनबे कर पचास आदमी के नारे धरो टाइम पास करे खाना खा लगे पूरा खाली से सब सुन
1: तेरा और गाना प्ले करता नहीं
0: ठीक बोलो
1: मैं रेडियो 90.4 FM।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
7: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
9: Now pick it up,
10: hello.
9: Now pick your phone up,
10: hello.
9: Pick it up,
10: hello.
9: Now pick your phone up,
10: hello.
11: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
12: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: सलामत में,
14: वालेकुम अस्सलाम,
13: कैसा चल?
14: मेरा ठीक है, आप बताइए अपना, कैसी हैं आप?
13: हम ही ठीक, खाना खा लिए?
14: जी मेरा नाश्ता हो गया, आप बताइए आपका हो गया?
13: हमारे भी हो गया, आज सब बताइए।
14: और सब तो ठीक है।
13: मुझे गाना सुनना है।
14: बिल्कुल बताइए कौन सा?
13: यही गाना ना, ये मेरी चाहत किस मेरे नाम से धर के जिया।
14: एक बार और बताइए।
13: तेरे नाम से धर के जिया।
14: और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
13: सब श्रोताओं को।
14: आपके गाने को प्ले करते हैं?
13: ठीक,
14: सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
13: आपको ये सुनाएगा?
14: ये आपको कल सुनने को मिलेगा।
13: ठीक।

0: हेलो
1: हेलो
0: नमस्ते
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
0: गोपाल ओझा ग्राम कुटवासा से बोल रहा हूँ।
1: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: बढ़िया है, रहेगी अभी धूप निकल रही है, गर्मी पड़ रही है अभी तो।
1: अच्छा, आपके यहाँ गर्मी पड़ रही है?
0: गर्मी पड़ रही है, अभी तो फसल भी कटेंगी, अभी तो 2-4 दिनों बाद।
1: चलिए, कौन सा गाना सुनिएगा आज?
0: मुझे सुनना है कुमार सानू की आवाज में वो डी डॉन फिल्म का
1: गाने की बोल।
0: देखा दे तुम्हें दिल ये बेकरार हो गया, वो जाने जाना हमको तुमसे प्यार हो गया, वो वाला गाना।
1: अच्छा अच्छा,
0: और क्या वो डेडिकेट करना चाहते हैं?
1: बिल्कुल बताइए।
0: हमारे दोस्त है सुनील साहू जी, मक्सुनियाल है, ज्योति जी है, जीतन धाकड़ जी है और नरेश जी है, इनके लिए और आपके लिए भी।
1: तो गाना आपका प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 एफएम।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें।

0: जी संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
0: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: Now pick it up,
4: hello.
3: Now pick your phone up,
4: hello.
3: Pick it up,
4: hello.
3: Now pick your phone up.
5: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: नमस्ते
6: नमस्ते।
7: भोजपुरी में बात करी ना मैम? भोजपुरी में आपको बहुत अच्छा मीठा आवाज लगेगा।
6: अच्छा जी।
7: मनोरमा जी?
6: ना ना, भारती।
7: अच्छा अच्छा, भारती जी। आप लोग का दोनों जने का आवाज एक ही खानी बा।
6: बहुत आदमी कंफ्यूज हो जानी लो।
7: जी जी जी, मोने पानी होता?
6: हाँ, इन्हें तो पूरा एकदम पानी होता वाला पूरा।
7: अच्छा अच्छा,
6: अभी तो थोड़ा खुलल बावे।
7: और सब नाश्ता पानी हो गया मैम?
6: हाँ हाँ, नाश्ता पानी हो गया बावे, सब जाने अब अपना अपना काम में।
7: जी जी जी जी, एगो गाना सुना दी।
6: बता दी कौन सा?
7: सुनो, एगो गाना सुना दी खेसरिया के भोजपुरी।
6: अच्छा,
7: अपने मन से?
6: वैसे तो हम रोज अपना मन से बोलो के सुनाबे करे नी।
7: अच्छा, सुना दी है खेसरिया के सुना दी ना, मेरा आरू से के जीतल बा।
6: अच्छा अच्छा, गाना क्यों की सुनवा हूँ के बा?
7: ऋषभ ऋषभ।
6: अच्छा जी।
7: हाँ, प्रिंट वाला हवन ऋषभ फ्लेक्स वाला।
6: हाँ, ये सब ठीक बा न?
7: हाँ हाँ, सब बढ़िया बा। आप लोग के दुआ बा।
6: तो चली गाना और प्ले करता नहीं?
7: ठीक बा।
6: सुनाते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
7: नमस्ते।
6: नमस्कार।

0: अच्छा लग जा।
1: हेलो
2: हेलो
1: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: खाना खा ली?
2: हाँ जी, मेरा हो गया, आप बताइए आपका हो गया?
1: हाँ, गाना सुन रहे?
2: जी बिल्कुल, नाम भी बता दीजिए और गाना भी। बोल
1: अजमेरी खातून, खुदा जाने किस्मत कहाँ लेके जाए।
2: हेलो,
1: कौन सुन के गाना?
2: जी जी, और गाना क्यों सुना हूँ के बाद?
1: खुदा जाने किस्मत कहाँ लेके जाए, ये गाना सुन के।
2: ना हम पूछे थे गाना क्यों सुनेगो करे।
1: गुलाबसा खातून, चांदा खातून, मौलदीन या इरफान आलम और शानार खातून, ताबा खातून है, सहिमा खातून है, जमशेद चारमान है, शमशेर है, आपको भी है, जितना रेडियो सुनने वाले।
2: ओके, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
1: आपका नाम क्या है मैम?
2: मेरा नाम भारती है।
1: ठीक है, आपको अब सुनाइएगा।
2: ये आपको कल सुनने को मिलेगा।
1: कितना बजे?
2: शाम को 5 से 7 जो शो चलता है उसी में।
1: ठीक है,
2: ओके
1: सुना दीजिएगा।
2: बिल्कुल।

0: गोपालगंज। अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 309 45 651 या 97 097 06 575।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक

0: किया है।
1: ध्यान दें, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
7: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो,
9: नमस्कार मैम।
8: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 91.4 एफएम में।
9: कैसे हैं मैम?
8: जी मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
9: मैं थोड़ी तबीयत खराब हो गई, इधर का मौसम बहुत खराब है मैम। बहुत लगातार बारिश हो रही है 4-5 दिनों से, बहुत जोरों से दिन रात बारिश हो रही है। लगता है कि मैंने मानसून आ गया, इतनी बारिश हो रही है।
8: नहीं, इधर तो मतलब कल से शुरुआत हुई है, थोड़ा बारिश हो रहा है।
9: जी, ये पश्चिम बंगाल में जो चक्रवात उठे है ना, उससे झारखंड पर सीधे प्रभाव पड़ता है ना, सेटल है ना, बहुत बारिश हो रही है। आप भारती में बोल रही है ना? मनोरमा में।
8: भारती?
9: भारती में बोल रहे हैं।
8: जी जी,
9: मैं सुधीर कोल बोल रहा हूँ, कोरिजम्बा जिला देवघर झारखंड से।
8: तो आज बताइए कौन सा गाना सुनिएगा?
9: आज सुना दीजिए मैं प्रेम ग्रंथ फिल्म का गाना, ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित पर फिल्म आया गया है, जिसके बोल हैं दिल लेने की रुताई, दिल देने की रुताई।
8: पर गाना किसी को सुनवाना भी है?
9: जी, सबसे पहले मैं आपको, मनोरमा मैम को, जितने आर्जी हैं सबों को, और हमारे कुछ फ्रेंड हैं, मदन कोल हैं, प्रभु कोल हैं, राजकुमार हैं, किशन कोल हैं, भोलाना कोल हैं, केदारनाथ बोल रहे हैं, प्रसाद यादव, सुष्टिधर प्रसाद यादव, रोहित कुमार सिंह, राजीव रोशन, इन सब सारे साथियों को डेडिकेट करना चाहता हूँ।
8: तो आपका गाना प्ले करते हैं?
9: जी मैम।
8: सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4।
9: थैंक यू।

0: हेलो
1: हेलो मैडम, नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजिम 90.4 एफएम में।
1: जी, मैं मनान बोल रहा हूँ कपूरथला से।
0: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: हाल चाल तो बहुत अच्छा है। आपको गाना सुनवा दी मेरा।
0: जी,
1: आज कौन सा गाना सुनवाइएगा मैडम,
0: बता दीजिए।
1: समझता है कि मेरा पहला कॉल लगा है क्या?
0: जी जी, आपका पहला ही कॉल है
1: तो कोई गाना सुनवाइए आप। पहले कॉल में आपका पहला ही, आपके पहले मन से ही गाना बजे
0: मेरे मन से।
1: आप गाना सुनवाई है ना, वो वाला भारती जी बोल रही हैं?
0: हाँ।
1: तो नहीं, आप नहीं बजा रही हैं?
0: नहीं, वो तो मनोरमा जी बजाई थी ना।
1: अरे बाबा, मनोरमा जी से हम रिक्वेस्ट किए थे उनसे, लेकिन उनके बाद आपसे हम कहे।
0: हाँ।
1: तो आप कहे कि हाँ ठीक है, हम बजा देंगे। तो फिर आप बजाई तो दूसरा गाना बजा है ना, वो स्टेज प्रोग्राम वाला। फिर आप दूसरी बार हम कॉल किए तो आप कहे कि नहीं ठीक है, वो जो आप बता रहे हैं वही गाना हम खिलाफ फिल्म का बजा देंगे, अलका याग्निक वाला। तो बजा था, उसीलिए तो हम पूछ रहे हैं हम आपसे, हम सुने नहीं है।
0: क्योंकि अभी तो मेरे पास एक कॉल बचा हुआ है, तो अभी
1: तो खैर कॉल बचा हुआ तो सब छोड़ दीजिए, शायद उसमें हो मेरा।
0: हाँ,
1: है ना
0: जी।
1: तो हम सुने नहीं है, दूसरे तीसरे लोग सुने होंगे, पर दूसरा तीसरा हमसे कहा भी नहीं है कि आपका गाना बजा है या नहीं बजा है। तो हम क्या झूठ बोलने जाए, जो बात हकीकत है वो सही है।
0: नहीं, आपके लिए तो एक मैसेज आया हुआ था, किसी का किसी को आपका गाना पसंद आया था तो आपका नाम भी लिए थे।
1: वो नाम लिए थे। तो छोड़िए वो बातों को, ये बचा है तो कभी बच जाएगा वो मेरा, है ना। तो आज कोई खास कर जो है वो क्रांति फिल्म का गाना बजा दीजिए ना।
0: कौन सा वाला?
1: वो चाना चोर गरम वाला। चाना चोर गरम बाबू मैं लाया चाना चोर गरम।
0: अच्छा,
1: नहीं तो वो बजा दीजिएगा, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। हाँ, तो ये दोनों में से कोई एक बजा दीजिएगा।
0: जी जी।
1: तो दोनों क्रांति फिल्म का है, तो इसी का सुना दीजिए मैडम, बहुत अच्छा रहेगा। और बताइए, आपके यहाँ बारिश हुआ है या नहीं?
0: बारिश तो खूब हो रहा है,
1: मजा आ गया एकदम ठंडा में।
0: पूरा मौसम एकदम हो गया है।
1: आप लोग भुट्टा उट्टा खाते कि नहीं?
0: हम तो बहुत खाते हैं।
1: आप मेरे इतना नहीं खाती होंगी।
0: नहीं, बहुत अच्छा लगता है वो।
1: हर रोज 35-40 से जो है भुट्टा लाता हूँ, खरीद के भी लाता हूँ, अपने खेतों से लाता हूँ, लेकिन 35-40 डेली भुना जाता है उसको। इसीलिए कहे कि आप मेरे इतना नहीं खाते हो, खाने के लिए हम 4-5 खा जाते हैं।
0: अच्छा। हाँ, बाकी तो घर के लोग खाते होंगे।
1: तो और लोग भैया ना, हम ही थोड़ी हैं। तो चार या पांच इतना हम खा जाते हैं, है ना। लेकिन इस साल में मजा आ गया है मेरे खाने में। एकदम भुट्टे का जो बोलते हैं ना भोजपुरी में, धुरकत छोड़ा देना, वही है कि धुरकत छोड़ा दिए हम इस साल में। इतना खा रहे हैं, इतना बोल रहे हैं कि तुम लोग तुम्हारे पेट में इतना हजम कैसे हो जाता है हमको देखो। नहीं नहीं, हजम करने वाली बात ही है। और पहले के भुट्टे में पहले देसीला आता था, अब जो है फॉर्म वाला आ गया ना, तो फॉर्म वाले के जो छिलका बहुत मोटा होता है, तो हम खाते हैं वो जो दूध वाला रहता है ना, पूरा संचा बाल हम लोग बोलते हैं ना, संचा वाला, तो उसी को हम ज्यादा दांत से नचोड़ के खाते हैं, जिससे वो पूरा फट भी जाता है दाने और हजम भी हो जाता है। उसमें छिलके मोटे नहीं होते हैं, परंतु उसकी बहुत पतली होती है।
0: जी जी, वो खाने में भी बहुत अच्छा लगता है।
1: हाँ, मीठा भी लगता है ना। तो हम बाल ज्यादातर नचोड़ के खाते हैं। तो इस साल तो मजा आ गया मैडम, जो भी हो खरीदते हो या अपने खेतों से हो, बहुत भुट्टे खाए, बहुत भुट्टे खाए, इतना काला। अभी अभी ऑर्डर दे दिया है, आ रहा है 35 तो बाल आ रहा है।
0: चलिए,
1: तो बढ़िया है। पूरा इंजॉय बरसात के मौसम में, जानते हो ये अच्छा रहता है भुट्टा खाना, बैठ के भुट्टा खाते रहो। अभी तो बहुत तूफान आ गया है, ठंड भी बहुत पड़ रहा है।
0: देखिए
1: कल परसों से कैसे होता है दिन, देखा जाए। तो ठीक है मैडम, आप थोड़ा ये गाना जो है क्रांति फिल्म का,
0: जी जी बिल्कुल,
1: है ना, ये दोनों में से कोई एक गाना बजा दीजिएगा। ठीक है मैडम, तो
0: रेडियो रमजिम में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके, थैंक यू।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
2: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
1: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
2: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
1: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
2: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
1: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर

0: डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
0: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें बातें सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक। हर शनिवार समय 10 बजे से 2 बजे तक।
0: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80 029 94 911। जी हाँ, 80 029 94 911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है।
4: प्रणाम मैडम
5: जी। प्रणाम।
4: अरे लगा है कोशिश की नहीं लगा फोन मैडम।
5: अच्छा,
4: हम भी बोल रहे हैं बंजारी से।
5: जी जी, कैसे हैं?
4: ठीक हैं। जाना था मैडम नाकाबंदी के। जाना
5: नाकाबंदी कौन?
4: मित्र बाती जी।
5: हेलो।
4: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
4: जी जी, नमस्कार मैम।
5: नमस्कार। आपका नाम?
4: मेरा सुमित नाम है।
5: और कहाँ से रहने वाले हैं आप?
4: यही सरिया वार्ड नंबर 1 गोपालगंज है। और हेलो
6: हेलो,
4: मैं यहाँ पे काम करता हूँ। सोनिक पेपर है ना, इंजीनियर के साथ लगे काम करते हैं बंजारी मोड़। कब गाना सुनाएंगे मैडम?
5: ये आपको गाना कल सुनने को मिलेगा शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच।
4: नाकाबंदी गाना सुना दो मैडम।
5: बिल्कुल, गाना क्यों सुनाना?
4: नहीं सर, नहीं सुना मैडम,
5: खुद अपने दोस्तों में सुनना
4: है। बात कर मित्र,
6: वही कह रहा था मैं, कह रहा था कि मेरा यही पे है बगल में ही आपके एरिया में बंजारी में टिश्यू पेपर का मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे बैठा हुआ है। तो मैं वही सोच रहा था कि कैसे मतलब रेडियो रेंजियन से कैसे मतलब होलसेलर से हमको कॉन्टेक्ट कराना था, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों से को पता चले कि यहाँ पे टिश्यू पेपर का ये सेल मेरा बढ़े। अगर आपको होलसेलर सबसे कॉन्टेक्ट हो तो आप बताइए, वैसे फिर हम वैसे भी जुड़ सकते हैं। मतलब ये तो रिटेलिंग वाला काम नहीं है मेरा, जैसे मैन्युफैक्चरिंग B2B है, मतलब जो भी होलसेलर है बस वही उन्हीं से मेरा काम रहेगा, है ना। रिटेलिंग में तो बहुत कम हो जाएगा, जैसे है ना मेरा मैन्युफैक्चरिंग होता है लगभग 150 बंडल डेली का प्रोडक्शन है, है ना। और रिटेलर लोग जो है 1 बंडल 2 बंडल लेगा लोग, उससे मेरा काम तो चलेगा नहीं, है ना। तो वही मैं अपना सेल बढ़ाना चाह रहा हूँ।
5: जी, रेडियो रंजन में कॉल किए। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद।
4: कल 5 बजे समय में रहो।
5: जी, कल 5 से 7 में गाना बज जाएगा आपका।
4: ठीक है, नाकाबंदी कर।
5: ओके ओके, रेडियो रंजन में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: नमस्कार मैडम
0: जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 91.4 एफएम में।
1: रामायण गुप्ता पेनुंडा खास से बोल रहा हूँ
0: जी। कैसे हैं आप?
1: बरखा बरसता।
0: अच्छा, उन्हें बारिश होता?
1: हाँ, बारिश होता एकदम, घर में लुकायल बनी जा।
0: अच्छा, इन्हें तो अभी खुलल बावे तो मतलब
1: बरसता, धीमे धीमे धीमे धीमे बरसता। गीत सुने के बाद
0: बता दी, कौन सा गीत सुने के बाद?
1: माँ का दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं।
0: अच्छा, और गाना क्योंकि सुनाऊं के बाद?
1: सुने के बाद शंकर भाई बारे ऋषिया हरपुर के जी, हमारा सजाम गावेला प्रेमी बसारा लोग सुनी। गणेश चतुर्दशी के नमस्कार। गणेश चतुर्दशी अनुमत है आज?
0: हाँ हाँ, आज अनुमत है।
1: हाँ, दही चूड़ा खा गया आज नहा धोवा के?
0: बिल्कुल खाई जाये।
1: नमस्कार नमस्कार
0: नमस्कार। रेडियो रंजन में कॉल करनी हो खाती, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।

0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
7: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
6: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
8: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: जी सलाम मैम।
10: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजिम 90.4 FM में। हेलो
9: जी मैम, आज भी आपने क्या बात है।
10: आज भी हम ही हैं।
9: चलिए अच्छा लगा,
10: शुरुआत हम ही से होती है और एंडिंग वो करती है।
9: जी मैम, और इतना लेट से तो स्टार्ट हुआ है मैम।
10: हो जाता है कभी कभी, अभी जस्ट रिचार्ज हुआ तो कॉल लेना शुरू की
9: मैम। तो हम फर्स्ट में लगाने वाले थे लेकिन रिचार्ज को ऐसे लगा नहीं पाए।
10: कोई बात नहीं
9: मैम, मौसम का क्या हाल है उधर गोपालगंज में अभी?
10: क्यों, आप गोपालगंज में नहीं है?
9: नहीं है, लेकिन अभी हम गांव में हैं।
10: अच्छा,
9: टाउन में नहीं है
10: अभी। तो इधर एकदम मौसम, बारिश नहीं हो रहा है और ठंडा है, हवा चल रहा है।
9: मैम हवा तो इधर भी चल रहा है लेकिन हल्का हल्का बारिश भी हो रहा है।
10: नहीं अभी इधर थोड़ा रुका हुआ है
9: मैम। तो मौसम को देखते हुए हमको एक गाना सुनाइएगा।
10: बिल्कुल बता दीजिए
9: जी। गाने का बोल है, बरसते पानी का मजा कुछ और होगा।
10: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
9: जी गाना तो सभी दोस्तों को डेडिकेट है और आपको, और बताइएगा गाना कैसा है।
10: गाना तो अच्छा लग रहा है सुनने में।
9: आप कभी ना कभी तो सुनी होंगी लेकिन सब कोई नहीं सुना है, ये गाना बहुत कम ही चलता है।
10: जी जी, तो और सब ठीक है?
9: और सब बढ़िया है मैम, बारिश को वैसे हम भी गोपालगंज नहीं जा पा रहे हैं 2 दिनों से, हो गया कल से आज।
10: अच्छा चलिए बढ़िया है, कुछ दिन आराम भी करना चाहिए।
9: नहीं मैम आराम अच्छा नहीं लगता।
10: अच्छा,
9: घर में मन ही नहीं लगता।
10: घर में मन नहीं लगता है?
9: नहीं मैम, किचन में जाना पड़ेगा मन लगाने के लिए मैम। हर तरह के कुछ अलग अलग बनाएंगे तो मन लगेगा।
10: तो बनाइए खाइए।
9: और मैम और सब बताइए, आपका नाश्ता पानी हो गया?
10: जी जी, हम लोग का तो हो गया है,
9: उनसे बात हुआ, ज्यादा दिन हो गया।
10: जी तो थोड़ा लेट किए होते, 12 बजे के बाद तो उनसे बात हो जाती
9: मैम। चलते चलते भाजपुरी में बोलना चाहेंगे, यही
10: बोलिए
9: मैम, कब बाजी हम

0: गाना
1: राउर गाना काल बाजी
0: मैम आज ना बाजी
1: ना ना आज मनोरमा जी के रिकॉर्डिंग कुछ बातल भावे तो वहाँ के बजाय और हमारे काल बाजी।
0: अच्छा मैम धन्यवाद आज ना बोलेम वो दिन बोलेम जब बाजी तब
1: ठीक बा कोनो बात नहीं
0: और मैं बहुत वो दिन हम खुश रहनी है बजा दे
1: कभी कभी रवो लोग इनके बात के हमने के ध्यान में रखते हुए करे के पड़े ला रवो लोग इनके बात के पूरा
0: जी मैम दोनों आदमी की खुशी चाहिए। चलिए हम तो एडवांस में धन्यवाद बोलिए देता नहीं
1: चलिए ठीक बाबे तब और गाना प्ले करता नहीं।
0: ओके मैम बाय
1: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।

0: आज की हवा महल में हम आपको सुनवा रहे हैं सस्पेंस।
1: हेलो, कौन? सुनो, बोरे साहब, हाँ, अब बुलाता हूँ। बोरे साहब,
2: बॉम्बे से बंगाल है, सिन्हा साहब आपसे बात करना चाहते हैं।
3: आते हैं, आते हैं,
1: आइए।
3: करना चाहते हैं।
1: हेलो, अचारे आप वाले सिन्हा साहब? हाँ, मैं बेबर सिकंदरपुरी बोल रहा हूँ। जी आप ही के स्क्रीन प्ले पर काम चल रहा है। जी हाँ, नीचे अभी आप जरा आपका जो आइडिया है ना उसको विजुलाइज कर रहा हूँ। क्या फरमा? 15 दिन हो गए अजीत साहब, 15 दिन में तो फिल्म का टाइटल भी नहीं लिखा जाता। आप तो स्क्रीन प्ले की बात कर रहे हैं। जी अभी 15 दिन और लगेंगे। आप आना चाहते हैं? हाँ तो आ जाइए, आ जाइए, यहाँ मौसम भी बहुत अच्छा है। अच्छा जी है, खुदा हाफिज।
4: क्या कह रहे थे सिरे साहब?
1: क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि स्क्रीन प्ले जल्दी दे दो, वरना हीरोइन के डेट मिलनी मुश्किल हो जाएगी।
4: अरे वैसे तो बात ठीक है, 15 दिन हमने मौज करी ली, अब आज से काम शुरू कर ही दिया जाए। लेकिन सिन्हा साहब दरिया दिल आदमी है, खूबसूरत हिल स्टेशन पर कमरा बुक करवा दिया, यहाँ वाकई लिखने का मूड बन सकता है।
1: ये टेंशन तुम गधे हो चलाराम। अबे मूड तो फुटपाथ पर बैठ कर बन जाता है, ये तो प्रोड्यूसर पर रुआब गालिब करने की बात है। और फिर ये जो सिन्हा है ना, ये नया मुर्गा है, बेटा पहली फिल्म बना दिया, कायदे से हलाल होना चाहिए कि नहीं? तुम ऐसा करो, होटल के मैनेजर को फोन करो कि एक बाल्टी गर्म पानी, एक प्लेट सलाद और एक डंडा मेरे कमरे में भिजवा दे जाओ।
4: एक बाल्टी गर्म पानी, एक प्लेट सलाद और डंडा, इनका आपस में कोई ताल्लुक
1: तुमने समझोगे भैया? देखो अभी हम अपनी दवाई पियेंगे, सलाद साथ देने के लिए चाहिए, दवाई पी के हम नहाते हैं, अब नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए
4: जी।
1: और रात अंधेरे में डंडा पटकने की आवाज मुझे सन्नाटे और चौकीदार की याद दिलाती है।
4: जाते रहो,
1: सस्पेंस लिखने का मूड उसी से बनता है। तुम फोन करो, सामान मंगाओ, जाओ, हम अभी आते हैं।
4: एक बाल्टी सलाद, एक प्लेट डंडा, गर्म पानी, सलाद, डंडा, गर्म
1: सलाद। अरे अभी अपनी खटर पटर बंद करो, केलारा मेरी खोपड़ी में छू रहा है।
4: सर आपने कहा था डंडे की आवाज
1: तैयार
4: आ गया सर।
1: क्या आ गया?
4: आइडिया, जब आप अंग्रेजी बोलते ना तो आपको अक्सर आइडिया।
1: थैंक यू, यू आर वेरी क्लेवर असिस्टेंट। नहीं चलो लिखो
4: जी। बोलिए सर।
1: जी। रात का गहरा सन्नाटा है,
4: रात का गहरा सन्नाटा,
1: दूर से दो जिगरों के बोलने की आवाज आ रही है और गहरा सस्पेंस का माहौल है। लिखा।
5: लेकिन सर सिर्फ दो झिंगुर बोल रहा है, ये कैसे दिखाया जाएगा?
1: भैया दिखाया जाएगा है, शुरुआत में टोक दिया। अबे ये डायरेक्टर का काम है, समझे मेरा नहीं? तुम आगे लिखो।
4: जी बहुत अच्छा।
1: कैमरा पेड़ पर चढ़ा हुआ पेन कर रहा है,
5: कैमरा पेड़ पर चढ़ा हुआ पेन कर रहा है,
1: क्योंकि चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ है, इसलिए कैमरा भी कुछ नहीं देख पा रहा। कैमरा बेचैन होकर रोशनी की तलाश में घूमे जा रहा है, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी यहाँ, कभी उसकी नजर दूर एक बंगले पर जाकर अटकती है, जिसकी खिड़की से रोशनी की एक किरण बाहर फूट रही है। कट
5: कट,
1: कैमरा पेड़ पर से उतरता है चिलराम और दबे पांव बंगले की तरफ बढ़ता है।
4: कैमरा दबे पांव कैसे बनेगा बेबस साहब? क्या कह रहे हैं?
1: नहीं बनेगा तो गुंजा, तुम्हें नौकरी करने की नहीं है।
4: जी
1: कर कह रहा हूँ, वो लिखो चुपचाप, समझे
4: जी।
1: उसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक, हाँ बज रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे जैसे जैसे भूत राजू
4: लग रहा है ना।
1: अरे बेटा जब तुम डर रहे हो इसका मतलब फिल्म देखने वाले भी डरेंगे, और यही तो सस्पेंस फिल्म की कामयाबी है। आगे लिखो
4: जी।
1: शॉर्ट चेंज, एक हाथ क्लोजअप में कैमरे की तरफ झूम बढ़ता है, कैमरा लड़खड़ा जाता है, कैमरा में इसका हाथ फिसलता है और कैमरा उसके ऊपर आके गिरता है। कितनी प्यारी सिचुएशन है ना,
4: कितनी खौफनाक सिचुएशन।
1: खौफनाक नहीं चेला राम, दर्दनाक कहो। जब कैमरामैन उठकर कैमरे को संभालता है, कैमरामैन भी टूटा हुआ और कैमरा भी टूटा हुआ। उधर बंगले से एक दर्द भरी आवाज में एको को को को को को को को को करती हुई गाने की एक लाइन उभरती है।

0: मजा आया ना आखिर
1: जी जी जी मैं सिर्फ विजुलाइज कर रहा हूँ
0: वेरी गुड इट मींस यू आर आल्सो इंप्रूविंग
1: अच्छा एक बात बताओ तुमने कभी वो देखा है
2: कौन
3: पूछ रहे गुरु जी मैंने कभी नहीं देखा
0: अरे हमने तो भूत भी देखे हैं देखो चिला राम इस फिल्म इंडस्ट्री में भूतों की कमी है नहीं बच्चे एक बार ये भूत छिपक जाए ना तो बड़े बड़े हो जाने उतार पाते चलो आगे लिखो
3: जी
0: देखो कैमरा जो है वो क्लोजअप पर है
3: किसके क्लोजअप पर सर
0: अबे मेरे क्लोजअप पर सर अब ये डायरेक्टर तय करेगा चिरा राम तुम लिखो आगे
4: जनाब
0: और हीरो घबरा कर और अचकचा कर आदाब करता है और घूम कर देखता है
5: आदाब है
1: अरे आप पहुंच गए
6: आपसे बस फोन पर बात हुई और फौरन ही मैंने प्लेन पकड़ लिया और फिर एयरपोर्ट से बाय रोड पर समझ लिए 3 घंटे में यहाँ पहुंच गया
0: अच्छा किया देखिए ना मैं आप ही की ही स्क्रिप्ट को डिक्टेट कर रहा था अरे साहब सिन्हा साहब क्या आइडिया है क्या सस्पेंस और चलो राम की कसम क्या क्या माहौल है कसम से अगर आपने साहब इसी तरह से पिक्चराइज कर लिया तो बस मजा से मजा आ जाएगा अरे लोग डर के मारे हाल छोड़कर भाग जाएंगे जो प्रोजेक्शनिस्ट है वो प्रोजेक्टर बंद कर देंगे सिनेमा घरों में ताले लग जाएंगे और शहर में कर्फ्यू
6: बेबस साहब आप फिल्म का सीन लिख रहे हैं कि मेरी मौत का वारंट
0: अरे वो तो तभी लिख गया था भाई साहब जब आपने पिक्चर बनाने का फैसला किया क्यों भाई
6: जी
0: मैं कह रहा था सिन्हा साहब कि इस सीन का हॉरर कुछ ऐसा बन रहा है कि हिचकॉक जो है ना उसकी सारी फिल्में हिट हो जाएंगी
6: लेकिन मैं कमजोर दिल का आदमी हूँ डॉक्टरों ने ए सर्टिफिकेट वाली फिल्में देखने तक को मना किया हुआ है तो भला इतना हॉरर में कैसे शूट कर पाऊंगा बताइए
0: सुनिए ये बात तो आपको मुझसे स्क्रीन प्ले लिखवाने से पहले सोच लेना चाहिए
6: जी।
0: भाई मेरा क्या करूं मैंने तो हॉरर और सस्पेंस में स्पेशलाइज किया हुआ
6: जी।
0: हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले भैया मैं जासूसी नावल लिखा मैंने कम से कम 1500 जासूसी और भूतिया नावल लिखे
6: देखिए बेबस साहब नाराज मत होइए इंडस्ट्री के इतने सीनियर राइटर हैं और मैं भी नया दाखिल हुआ मैं आपकी बात कैसे काट सकता हूँ लेकिन मेरी दरखास्त सिर्फ इतनी थी कि अगर आप हॉरर को थोड़ा हल्का कर दें तो क्या नहीं चलेगा
0: हॉरर
6: जी हल्का जी हाँ प्लीज
0: चल जाएगा थोड़ी रकम बढ़ानी पड़ेगी चला देंगे ठीक है मैं यहाँ एक वो एक डांस सीन डाल दे
6: आप देखिए चलो नाम
0: वीरान बंगले में एक भूतनी नाच रही
6: है भूतनी बेबे साहब प्लीज मुझ पर रहम करिए सुनिए कोई कम खौफनाक सीन डाल दीजिए ना
0: अरे पहले हॉरर हल्का अब खौफनाक में भी हल्का पर ठीक है हमारा क्या जाता है हम वो जो है हम हेमा मालिनी का डांस डाल देते
6: हेमा मालिनी का सुनिए तो लेकिन वो हेमा मालिनी का डांस डालने के लिए तो हेमा मालिनी को बुक करना पड़ेगा और फिल्म लो बजट से हाई बजट हो जाएगी मैं तो फाइनेंस कहां से करूंगा
0: डॉक्टर ने कहा था कि आप मुझे से फिल्म लिखवाइए बनवाइए
6: जी मेरी बीवी ने कहा था और इत्तेफाक से वो डॉक्टर भी
0: है करेला भी है और नीम भी चढ़ा तो भैया मजबूरी है ऐसा है कि तो फिर आप ही मुझे बता दीजिए कि भैया कि मैं क्या सीन लिखूं आप ऐसे में
6: आप ऐसा करिए कि आप हीरो को बंगले के पास पहुंचा दीजिए
0: अच्छा
6: जब वो वहां पर पहुंचता है तो उसकी मुलाकात वहां बचपन की सहेली से होती है जो वहां पर बैठी हुई कीर्तन कर रही है
0: कीर्तन
6: जी हाँ जरा रास की बात है अपना कान तो इधर लाइए
0: कौन सा
6: अजी कोई सा भी एक डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझसे वादा किया है कि अगर फिल्म में धार्मिक भावना होगी तो फिल्म दूने दाम पे खरीद लेगा
0: अरे तो अपना कमीशन पक्का ठीक है अरे भाई हाँ भाई चला राम देखो ऐसा है कि भाई देखो हीरो जो है वो चुपचाप जाकर उसके पास बैठ जाता है और फट से उसके हाथों से मजीरा छीनता है और कीर्तन करने लगता है
6: बिल्कुल ठीक अब आप मेरा आइडिया समझ गए ना और जैसे ही कीर्तन होता रहता है वो लड़की भगवान की मूर्ति के चरणों में सिर झुकाती
0: वाह
7: हे भगवान मुझे मेरे प्रेमी से मिला दो ना
6: भगवान प्रकट होकर उसे इन्फॉर्म करते तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे पास बैठा है बगल में
7: सच भगवान अरे तुम कहाँ चले गए थे मैं तो कब से इस भूते बंगले में तुम्हारे लिए तपस्या कर रही थी चलो तुम आ गए अच्छा हुआ
0: और वो घूम कर देखती है उसके लग जाती है कहाँ गले
6: नो बेबसा
0: फिर उसे देखती है लेकिन पहचान नहीं पाती है
6: और फिर भगवान से कंप्लेंट करती है
0: क्या
7: लेकिन तुम वो नहीं हो तुम वो नहीं हो तुम वो तो छोटा सा पलमा था, सिर्फ 12 बरस का, और तुम तो जवान हो 24-25 बरस के।
0: खट उसके बाद भगवान खुदा के उसे समझाते हैं।
2: प्रेमिके, जब तुम इससे पहले मिली थी तब ये 12 बरस के बाद भगवान, मेरा मतलब बाल प्रेमी थे, और आप 12 बरस के बाद इससे मिल रही हो तो ये 24 बरस के हो गए। दाढ़ी मुझे वाले,
7: हाँ भगवान मुझे माफ कर दो, तुम भी मुझे माफ कर दो, माफ कर दो ना, मुझसे भूल हो गई। अब कहीं ना जाना, नहीं तो जिंदगी पर 12 का पहाड़ा पड़ना पड़ेगा। 12 एकम 12, 12 दिन 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60।
6: क्या बात है बेबस, आपके पैर कहाँ है?
0: अरे नहाए नहीं है।
6: अब कोई बात नहीं, जाने दीजिए, किस खूबी से आपने मेरे आइडिया को विजुलाइज किया। अरे अब तो फिल्म हिट क्या, सुपर हिट।
0: अरे साहब हम तो फिल्म ही ऐसे लिखते हैं, या तो होती है हिट या जाती है पिट।
6: देखिए बेबस साहब, आपकी इस बात से तो मैं नर्वस हो रहा हूँ।
0: नर्वस हो गए आप? वेरी गुड साइन, इसे कहते हैं सस्पेंस।
6: असिस्टेंट जी, जरा मुझे बाथरूम तो दिखाइए।
0: चला राम साहब के बाथरूम दिखाओ
1: जी। उदय
6: साहब, लेकिन मैंने तो कोई शेर नहीं कहा।
0: बाथरूम में शेर।
6: अरे शेर नहीं, शेर का बच्चा होगा। जी हाँ, मैं शिकारी हूँ, मेरा नाम रघुनंदन सिंह है।
0: ठीक है,
6: पास के जंगलों में आदमखोर शेरनी को मारने के लिए मुझे बुलाया गया था। उसी शेरनी का बच्चा है जिसे मैंने चिड़ियाघर को देने के लिए पकड़ा है। अभी मुश्किल से ही महीने भर का है और आप लोग खामखा डर गए।
0: अरे धरने की तो बात ही है, अरे शेर तो शेर है, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा चाहे जवान हो, ये बताइए वो बच्चा जो भी है हमारे बाथरूम में
6: कर रहा है। बताता हूँ।
0: बताइए।
6: दरअसल बात ये है कि हम दोनों के कमरों का ये कॉमन बाथरूम
0: है। चरका देते हो, दो कमरे बाथरूम है।
6: सुनिए, और दोनों तरफ से इसमें दरवाजे खुलते हैं।
0: हम क्या करें
6: भाई, मैं रात को देर से आया था।
0: क्यों?
6: और मैंने बाथरूम में इसे बंद कर दिया बस।
0: सिनाराम जी, सिन्हा साहब
6: जी,
0: इसे कहते हैं क्या, सस्पेंस।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: प्रसाद क्लिनिक,
8: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
7: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
8: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
9: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
10: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
9: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
10: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
11: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड, गोपालगंज। और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
12: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
13: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
14: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
15: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4।
16: रेडियो रिमझिम,
15: सुनो दिल

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90066 7231।
1: कॉल कीजिए 90066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564। अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
5: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
6: रेडियो रिमझिम,
5: सुनो दिल से।

0: साझा करेंगे। और वाल्मीकि नगर गंडक बराज से रिकॉर्ड मात्रा में पानी छोड़ा गया, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने की हालात की समीक्षा। अब समाचार विस्तार से। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि हर बच्चे को नशे से मुक्त, सुरक्षित और खुशहाल बचपन पाने का अधिकार है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत पटना स्थित लोक भवन में नशे से परे बचपन, सुरक्षित देखभाल और पुनर्समावेशन विषय पर संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नशे की लत बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर गंभीर प्रभाव डालती है, इसलिए ऐसे बच्चों को संवेदनशील देखभाल, सहयोग, उचित चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। श्री सूर्यकांत ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए हेल्पलाइन और कानूनी जागरूकता के लिए मल्टी यूटिलिटी वाहनों का भी शुभारंभ किया। भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज पटना स्थित बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिसर में देश के पहले विक्टिम्स राइट्स सेंटर, पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन किया। क्या है ये सेंटर, एक रिपोर्ट।
1: पटना में विक्टिम्स राइट सेंटर की शुरुआत की गई है। इस केंद्र के माध्यम से अपराध पीड़ितों को एक ही जगह पर कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक सहयोग और परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा। यह केवल एक सूचना केंद्र नहीं होगा बल्कि पीड़ित केंद्रित केस मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में यह काम करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने केंद्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि न्याय प्रणाली को नागरिकों तक खुद पहुंचना चाहिए। विक्टिम्स राइट सेंटर न्याय प्रणाली और पीड़ितों के बीच अंतर को दूर करने का एक प्रयास है।
2: विक्टिम्स राइट सेंटर इसके काम का ब्यौरा देने वाली बुकलेट, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए हेल्पलाइन और मल्टी यूटिलिटी गाड़ियाँ जो कानूनी मदद को कोर्ट रूम से बाहर ले जाएंगी। भले ही अलग अलग जरूरतों को पूरा करती हूँ, लेकिन ये सभी एक ही विश्वास से प्रेरित हैं कि न्याय को नागरिक के उस तक पहुँचने का इंतजार नहीं करना चाहिए, न्याय प्रणाली को खुद नागरिक तक पहुँचने का रास्ता खोजना चाहिए।
1: उम्मीद है कि विक्टिम्स राइट सेंटर पीड़ित को मिलने वाले कानूनी अधिकारों की पहचान करेगा और उन्हें तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने में मदद करेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: पुलिस महानिदेशक अभियान और विशेष शाखा कुंदन कृष्ण ने कहा है कि राज्य में हाल में छात्राओं के विरुद्ध घटी आपराधिक घटनाओं को पुलिस प्रशासन ने चुनौती के रूप में लिया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए श्री कृष्णन ने बताया कि सभी मामलों में कार्रवाई की जा रही है और महिलाओं में विश्वास बढ़ाने के लिए पुलिस दीदी की प्रतिनियुक्ति की गई है।
3: समस्तीपुर में दो घटना की तो सिद्धि हुई है कि ये घटना घटी है, कार्रवाई किए गए हैं। जमुई में जो घटना घटी, स्कूल्स में भी बच्चियों के साथ कुछ मामले सामने आए हैं। ये सब को देखते ही पुलिस दीदी की कॉन्सेप्ट आई और अब तो पुलिस दीदियों को बोला गया है मिलके लड़कियों से पूछिए कि कोई समस्या है तो बताएं। हमारा अपील ये है कि 112 है, वो सजग है, 15 मिनट के अंदर देहाती क्षेत्र में भी वो पहुंच जा। समाज को भी आगे आना पड़ेगा, अब पुलिस तत्पर है।
0: पुलिस महानिदेशक अभियान श्री कृष्णन ने बताया कि प्रदेश नक्सल मुक्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि अब पुलिस प्रशासन की प्राथमिकता पर्यटक स्थलों और दूर दराज के क्षेत्रों में पुलिस बल की उपस्थिति को और मजबूत करना है, साथ ही लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है।
3: पर्यटन स्थल अब जब नक्सल मुक्त हो गया है, जैसे कुंडर बैराज जहां जमुई की घटना घटी, 5 साल पहले तो वो नक्सल प्रभावित था, अब लोग जाने लगे हैं, तो ये तो जिला पुलिस को देखना है कि कहां सैलानी आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब हम लोग चाह रहे हैं कि बरहट, खड़गपुर, सिंह ऋषि ऐसे जगह पर्यटक स्थल में विकसित हो जाए, तो जरूर पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। सामाजिक स्तर पर भी लोग से अनुरोध किया जाएगा कि अगर आपका क्षेत्र को विकसित होना है, पर्यटक आएंगे तो आपके बिजनेस भी ज्यादा बढ़ेगी, आपको भी सामने आना।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज भारत और नेपाल के बीच विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद सभागार में आयोजित बैठक के दौरान भारत नेपाल सीमा सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान नेपाल से निकलने वाली नदियों में बाढ़ प्रबंधन समेत अन्य विषयों पर भी विचार विमर्श किया गया। प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आज प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई। जानकारी के अनुसार बैठक में विधान परिषद चुनाव को लेकर पार्टी उम्मीदवारों के नाम पर विचार किया गया है। भाजपा को अपने कोटे की 4 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करना है। बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, विनोद तावड़े और भीखू भाई दलसानिया समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। गौरतलब है कि एनडीए के सहयोगी दल जदयू ने 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। जन स्वराज पार्टी ने तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बदल दिया है। पार्टी ने श्याम नंदन यादव को विधान परिषद चुनाव में अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने आज इसकी घोषणा की। गौरतलब है कि सीट से पार्टी के पूर्व घोषित उम्मीदवार भूषण झा ने जन स्वराज छोड़ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विधान परिषद चुनाव लड़ने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स पर भी सुना जा सकता है। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पटना के ज्ञान भवन में बिहार सरस मेला 2026 का आयोजन किया जा रहा है। देश के 15 राज्यों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिला उद्यमी अपने उत्पादों के साथ मेले में शामिल हो रही हैं। एक रिपोर्ट।
5: मेले में हस्तशिल्प, हैंडलूम, मधुबनी पेंटिंग, सिल्क और खादी के कपड़ों के साथ साथ बांस, लकड़ी और अन्य ग्रामीण उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं। अलग अलग राज्यों के पारंपरिक व्यंजन भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। जिला जीविका परियोजना प्रबंधक माधवी चौधरी ने बताया कि बिहार सरस मेला 29 सितम्बर तक चलेगा।
6: 29 सितम्बर ये मेला चलेगा, सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक। आप लोग आइए, भारी मात्रा में आइए। यहाँ पे आपको बिहार के उत्पादों के साथ साथ 15 राज्यों से हमारे यहाँ जो है कि महिलाएं आई हुई हैं, जो अपने वस्तुओं का, अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रही हैं। यहाँ पर खाने पीने के अलावा विभिन्न प्रकार के हैंडलूम प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स सब आपको देखने को मिलेंगे।
5: जागृति जीविका अरवल से जुड़ी महिला उद्यमी रिंकी केशरी बताती है कि सरस मेला ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए एक खास मंच है।
7: सरस मेला ग्रामीण महिलाओं के लिए बहुत अच्छा मंच दिया है, जो कि हम लोग आकर मेला में सामान लगाते हैं। ग्रामीण महिला को बनाया हुआ सामान जो है वो मैं लगा रही हूँ यहाँ पे। मैं दशहरा दिवाली के सेल में करके सारे महिलाओं को अच्छा लगता है। हम लोग हर तरह का प्रोजेक्ट बना करके और इस मार्केट में हम लोग बेच लेते हैं।
5: बिहार सरस मेला ग्रामीण महिलाओं को अपने उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान कर रहा है। मेले में आने वाले लोग सीधे स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की खरीदारी कर सकते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सत्यम कुमार।
0: चक्रवाती तूफान अर्णब के प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न भागों में तेज हवा के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान मधुबनी जिले के झंझारपुर में सबसे अधिक 68.8 मिलीमीटर वर्षा हुई है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज जिले में कई स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा की आशंका है।
8: राज्य के पूर्वी चंपारण, गोपालगंज एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। साथ ही अत्यधिक भारी वर्षा होने की भी संभावना है। सारण एवं सिवान जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। मुजफ्फरपुर, पटना, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान एवं वैशाली जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: राज्य के विभिन्न भागों में बारिश के कारण गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी के जलस्तर में बक्सर, पटना के विभिन्न घाटों के साथ ही मुंगेर और भागलपुर में भी वृद्धि दर्ज की गई। गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज के डुमरिया घाट में फिर से खतरे के निशान को पार कर गया है। इधर नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण सीतामढ़ी जिले के बेलवा डैम पर दबाव बढ़ गया है। जिलाधिकारी के देश पर डैम की निगरानी बढ़ा दी गई है। बागमती नदी सीतामढ़ी के ढेंग ब्रिज और रून्नी सैदपुर में लाल निशान से ऊपर बह रही है। कोसी नदी के जलस्तर में भी बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है। नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से आधा मीटर से अधिक ऊपर दर्ज किया गया। पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर गंडक बराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। हमारे संवाददाता ने कुछ देर पहले बताया कि आज रिकॉर्ड 3,14,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने से गंडक नदी के तटीय क्षेत्रों में संकट बढ़ गया है। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और कई निचले इलाकों भेड़ियारी गांव के बंगाली कॉलोनी और रोहुआ टोला में कई घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। बगहा की एसडीएम चांदनी कुमारी ने आज बाढ़ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण किया। वहीं उप विकास आयुक्त काजल वैभव ने पीडी रिंग बांध का निरीक्षण किया है। कोसी नदी के जलस्तर में कमी दर्ज की गई है। हमारे सुपौल संवाददाता ने बताया कि भीमनगर कोसी बराज से आज अपराह्न 3 बजे 2,90,370 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया। बराज का जलस्तर फिलहाल स्थिर बना हुआ है। इधर नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र बराज से 1,97,000 क्यूसेक से अधिक पानी घटते क्रम में छोड़ा गया। नेपाल के तराई क्षेत्रों में भारी बारिश के साथ ही प्रदेश के विभिन्न भागों में लगातार बारिश के कारण नदी में उफान को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने 17 संवेदनशील जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने स्थिति को देखते हुए आवश्यक सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को सतर्क रहने को कहा गया है। साथ ही संभावित प्रभावित इलाकों में माइक के जरिए लोगों को सावधान किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने जल संसाधन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग समेत विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बनाकर संभावित स्थिति से निपटने के निर्देश दिए हैं। गया जी में त्रिपाक्षिक श्राद्ध पितृपक्ष का सर्वोच्च पिंडदान अनुष्ठान आज से शुरू हो गया। श्रद्धालु फल्गु नदी के किनारे स्थित पंचकोश के पवित्र वेदियों पर पूर्वजों का तर्पण कर रहे हैं। इससे पूर्व कल विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले की औपचारिक शुरुआत हुई। पटना पुलिस की ओर से कल पटना में मरीन ड्राइव गोलंबर से एलसीटी घाट तक स्केटिंग मैराथन का आयोजन किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक यातायात सागर झा ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है। राजस्व मामलों के निष्पादन को लेकर शेखपुरा जिला 79.32 अंक के साथ राज्य में प्रथम स्थान पर रहा है। जिले ने राजस्व गतिविधियों, दाखिल खारिज, परिमार्जन, राजस्व महाअभियान जैसे विभिन्न मानकों पर बेहतर प्रदर्शन किया है। हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा ने सुपौल के गांधी मैदान में गरीब चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने चौपाल को संबोधित किया। इस दौरान लोगों की समस्याएं सुनी गयी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, हर बच्चे को नशे से मुक्त, सुरक्षित और खुशहाल बचपन पाने का अधिकार है। पुलिस महानिदेशक अभियान कुंदन कृष्णन ने कहा, पुलिस प्रशासन अपराधियों के खिलाफ तत्परता से कर रहा है कार्रवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। और वाल्मीकि नगर गंडक बराज से रिकॉर्ड मात्रा में पानी छोड़ा गया, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने की हालात की समीक्षा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
9: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: और इस गीत के बाद

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है बांका जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता विदु शेखर।
1: बांका जिला प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के क्रियान्वयन में राज्य में पहले स्थान पर बना हुआ है। अब इस उपलब्धि को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और बेहतर अधिगम परिणामों से जोड़ने की पहल की जा रही है। इसी क्रम में जिला और प्रखंड स्तरीय तकनीकी टीम के सदस्यों के लिए समीक्षा सह उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गयी। इसमें जिले के सभी 11 प्रखंडों के तकनीकी टीम के सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता जिला शिक्षा पदाधिकारी देव नारायण पंडित ने की।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
7: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
8: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
7: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
8: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
7: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
8: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
7: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
8: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
9: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
10: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
7: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
9: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
7: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
7: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
9: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
7: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
9: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
11: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
12: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
12: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
13: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
14: रेडियो रिमझिम,
13: सुनो दिल से।

0: मेरे दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
7: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
6: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
8: ठक ठक।
9: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
10: अच्छा, मिला ही नहीं।
9: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
4: जी हाँ, कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
9: आप भी आए कमलश्री। कमल

0: से बारी मार्केट गोपालगंज।
1: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
4: रेडियो रिमझिम,
3: सुनो दिल से।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
3: कॉल कीजिए 90 066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
8: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
9: रेडियो रिमझिम,
8: सुनो दिल से।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
6: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
5: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
6: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
7: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
6: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
7: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
6: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
7: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
8: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
9: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
8: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
9: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
10: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
11: रेडियो रिमझिम,
10: सुनो दिल से।

0: दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
7: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
1: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड गोपालगंज।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
8: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
9: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
8: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
10: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
11: रेडियो रिमझिम।
10: सुनो दिल से।

0: रेडियो रूम जिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। कुडगी सुपर थर्मल पावर स्टेशन में डिप्लोमा प्रशिक्षु के पद के लिए एसटी बैकलॉग रिक्तियां भरने हेतु विशेष भर्ती अभियान के तहत डिप्लोमा प्रशिक्षु का एक पद भरा जाना है और इस पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी देखिए वेबसाइट पर। वेबसाइट का पता है careers.ntpc.co.in/recruitment। मुख्यालय तटरक्षक क्षेत्र पश्चिम में विभिन्न सिविलियन पदों पर प्रत्यक्ष आधार पर भर्ती की जा रही है। पद नाम है स्टोर कीपर ग्रेड 2, इंजन ड्राइवर, लश्कर, CMTD, MTS और MTS वॉचमैन। रिक्तियों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। नियुक्ति के तहत भारत के किसी भी हिस्से में सेवा करने की बाध्यता है। विस्तृत जानकारी आप हासिल कर सकते हैं 19 से 25 सितंबर 2026 के रोजगार समाचार पत्र में, अथवा आप देख सकते हैं भारतीय तटरक्षक बल की वेबसाइट www.indiancoastguard.gov.in। आयुध फैक्ट्री अंबरनाथ में श्रम कल्याण अधिकारी का एक पद भरा जाना है। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आयु न्यूनतम 27 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष हो सकती है। नियम और शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट ddpdoo.gov.in। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में सहायक अधिकारी सचिवीय के 10 पद रिक्त हैं। इनमें से 6 पद अनारक्षित हैं, एक पद एससी वर्ग के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 1 तथा पीडब्ल्यूबीडी वर्ग के लिए 1 पद आरक्षित है। शैक्षणिक योग्यता, नियम शर्तों, अन्य मापदंडों, तैनाती के स्थान आदि की विस्तृत जानकारी आप देख सकते हैं राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की वेबसाइट पर। और इसके अतिरिक्त आप 19 से 25 सितंबर 2026 के रोजगार समाचार पत्र में भी आवश्यक जानकारियां हासिल कर सकते हैं। कंपनी की वेबसाइट है www.rcfltd.com www.rcfltd.com। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कार्यालय में वरिष्ठ प्रशिक्षक पर्वतारोहण का एक पद रिक्त है। इस पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं सशस्त्र सीमा बल की वेबसाइट www.recruitment.ssb.gov.in अथवा SSB की मुख्य वेबसाइट www.ssb.gov.in पर भी आप ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
3: दिल बोले म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4 रेडियो रमजिम। सुनो दिल से।

0: सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
0: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: प्रसाद क्लिनिक,
3: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
2: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
3: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
6: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
7: भरोसे वाले से लेंगे,
6: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
7: और कीमत भी।
6: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
8: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
9: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
10: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
5: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे। दिल
11: नोटिस मिला, BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण, तजिंदर पाल सिंह तूर ने रजत पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
12: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है, तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना

0: नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बारे में निर्वाचन आयोग पर विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस के आरोपों की कड़ी निंदा की है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
2: इसी SIR को केरला की कांग्रेस ने सही माना कि उनके कारण हमको जीत मिली है, क्योंकि वामपंथियों में जो इलीगली नाम घुसवाए थे वो निकले फेक वोटर और हम जीते। चुनाव आयोग ने आज दूध का दूध और पानी का पानी विषय स्पष्ट कर दिया है।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि शी मार्ट कॉन्सेप्ट महिला उद्यमियों को बाजार से जुड़ने के लिए बेहतरीन मंच देगा।
3: NCCF द्वारा 2500 से अधिक रिटेल आउटलेट्स के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक में 300 से अधिक सी मार्ट स्टोर भारत ब्रांड उत्पाद और लोकल उत्पाद इसके लिए उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके कारण प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डायरेक्ट रिटेल मार्केट, इस सभी का फायदा किसानों को और इसके साथ साथ महिला उद्यमियों को मिलेगा।
1: श्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। गृहमंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृता नंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर मिसाल कायम की है।
3: 10 लाख से ज्यादा वृक्षारोपण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका की भावना और इसके साथ साथ 101 गांवों को पूर्णतया से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अम्मा ने बहुत बड़ा काम किया है। संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम विश्व शांति सम्मेलन और विश्व धर्म संसद जैसे कई मंचों में हिंदुत्व का, सेवा का संदेश अम्मा ने पहुंचाया।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि परीक्षा पे चर्चा पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है।
0: परीक्षा पे चर्चा एक वार्षिक संवाद कार्यक्रम है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करते हैं और परीक्षा के तनाव को कम करने के साथ साथ पढ़ाई को आनंददायक बनाने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। 2018 में एग्जाम वॉरियर्स अभियान के तहत शुरू की गई यह पहल युवाओं को तनाव के बजाय आत्मविश्वास के साथ परीक्षा का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। इस पहल ने परीक्षा को डर या दबाव के बजाय सीखने पर जोर दिया है। परीक्षा पे चर्चा के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें खुद को मजबूत बनाने और हर तरह के दबाव का सामना करने में सक्षम बनने की सलाह दी।
4: किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए, रोते बैठना नहीं चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, एक तो संकल्प करना।
0: आकाशवाणी समाचार से बात करते करते हुए मध्य प्रदेश की छात्रा कृतिका सेन ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा से उन्हें प्रेरणा मिली और परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिली।
5: पीएम नरेंद्र मोदी जी बहुत सरल स्वभाव के हैं। उन्होंने हमें बताया कि एग्जाम्स की तैयारी से लेकर फाइनल एग्जाम तक हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें एग्जाम्स के एकदम वॉरियर्स की तरह लड़ना चाहिए। फिर वहां से आके हमने बहुत अच्छे से एग्जाम्स दिए और हमने बहुत अच्छा स्कोर किया।
0: इस कार्यक्रम में सिर्फ अच्छे अंक लाने पर नहीं बल्कि छात्रों के समग्र विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। यह परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करने के साथ साथ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित करता है। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय प्रणाली को नागरिकों से मदद मांगने की प्रतीक्षा के बजाय खुद ही जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। मुख्य न्यायाधीश आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के पुनः एकीकरण विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए।
7: जब कोई बच्चा नशीले पदार्थ के संपर्क में आता है तो उसकी शिक्षा बाधित होती है, परिवार के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं, उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वो शोषण, हिंसा, मानव तस्करी और अन्य प्रकार के कई दुर्व्यवहारों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसलिए बच्चों में नशीले पदार्थों का सेवन केवल जन स्वास्थ्य की चिंता के रूप में नहीं बल्कि समान रूप से बाल संरक्षण से जुड़ी चिंता के रूप में भी समझा जाना चाहिए।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 10% से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर सकता है। उन्होंने अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। आईआईटी मद्रास के कार्यक्रम में सुश्री सीतारामन ने कहा कि उच्च विकास दर आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में प्रगति को गति देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा को कल तक के लिए रोक दिया गया है। तीर्थयात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम पर नजर रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। इस बीच राज्य में कई स्थानों पर कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। उधर ओडिशा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 10 जिलों में 73,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं।
8: उड़ीसा के 10 जिलों में लगातार बारिश से 80 ब्लॉक 325 ग्राम पंचायतों और 1071 गांव के 73,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 4,480 हेक्टेयर खेती की जमीन भी प्रभावित हुई है। उत्तरी ओडिशा में जड़का और बैतरणी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जबकि सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। पानी का बहाव बढ़ने के कारण हीराकुद बांध के 20 गेटों

0: आठ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सिरमौर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और किन्नौर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: इस बीच मौसम विभाग ने समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका के कारण 28 सितंबर तक केरलम, माहे, लक्षद्वीप और दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। केरलम तट पर 1 से 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका है। पर्यटन सहित समुद्र तट पर सभी प्रकार की गतिविधियों से पूरी तरह बचने की सलाह दी गई है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
2: जापान एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। प्राची चौधरी ने महिला 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाजी में तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। स्क्वाश में जोशना चिनप्पा और वेलावन संथिल कुमार की मिक्स डबल्स जोड़ी ने कांस्य पदक देश के नाम किया। वहीं अभय सिंह पुरुष सिंगल्स और अनाहत सिंह महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, SIR के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने केरल में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani.
4: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
5: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
6: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
5: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
6: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
5: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
6: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
6: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
6: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
8: ठक ठक
9: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं
9: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
10: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
9: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
10: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से।

0: ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
6: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
5: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
6: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
5: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
6: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
5: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
4: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-89-73।
7: सुनिए सुनिए सुनिए,
8: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
7: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
8: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
7: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को। बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98-523-52-599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे।
9: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल, शराब तस्करों की गाड़ी से दुर्घटनाग्रस्त होकर एक व्यक्ति की मौत, एक घायल। लगभग आधा दर्जन मामलों के आरोपी राजन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नदी के बढ़ते जलस्तर से तटवर्ती इलाके के लोगों में दहशत, प्रशासन अलर्ट। सड़क हादसे में एक शिक्षिका की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। और संरचनाओं के विकास को लेकर जिला पदाधिकारी ने की समीक्षा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। कुचायकोट थाना क्षेत्र के भटवां और करमैनी गांव के पास NH-27 पर शुक्रवार की देर रात शराब लदी हुई एक स्कॉर्पियो गाड़ी के चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं उसका दोस्त इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान माझा थाना क्षेत्र के भोजपुरवा गांव निवासी अनिरुद्ध प्रसाद के पुत्र करण कुमार के रूप में हुई है। तो वहीं जख्मी युवक शहर के पुरानी चौक निवासी विक्की कुमार बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद कुचायकोट थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक मोटरसाइकिल से NH 27 से होकर गुजर रहे थे। कुछ लोगों का कहना है कि जलालपुर में मेला देखने के लिए ये दोनों जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। भटवा और करमैनी गांव के बीच तेज गति से आ रही स्कॉर्पियो ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक वाहन लेकर भागने का प्रयास करने लगा, हालांकि सफल नहीं हो सका। इसके बाद वह गाड़ी को छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जब्त किया है, जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में स्कॉर्पियो में शराब लदे होने की बात सामने आई है। पुलिस वाहन और शराब को लेकर मामले की तफ्तीश में जुटी है। इधर शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद आज परिजनों को सौंपा गया। घटना के बाद से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। माधोपुर थाना की पुलिस ने लगभग आधा दर्जन मामलों में फरार चल रहे अभियुक्त राजन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले माधोपुर थाना की पुलिस ने लगभग 300 लीटर शराब बरामद किया था और इसी मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी और उसके शिनाख्त पर उस शराब तस्करी में संलिप्त राजन कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस पर अलग अलग थानों में लगभग आधा दर्जन मामले पहले से दर्ज है। राजन कुमार स्वर्गीय अर्जुन प्रसाद का पुत्र है और सिवान जिले के जामो का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर अब पुलिस ने इसे प्राथमिकी दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा है और इसके पूरे आपराधिक इतिहास को भी पुलिस खंगाल रही है। तो इधर माझा थाना क्षेत्र के भड़कुइया मोड़ के पास नेशनल हाईवे पर एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें स्कूटी सवार एक शिक्षिका की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि स्कूल से ड्यूटी समाप्त कर अपने पति के साथ शिक्षिका घर लौट रही थी, तभी यह सड़क हादसा हो गया। अज्ञात वाहन के चपेट में आने से शिक्षिका और उनके पति गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों को स्थानीय लोगों के सहयोग से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां शिक्षिका की मौत हो गई। पति का फिलहाल सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि मृत शिक्षिका माझा प्रखंड के लंगटू हाता उत्क्रमित मध्य विद्यालय में कार्यरत थी। मृत शिक्षिका का नाम शांति प्रभा बताया जा रहा है। घटना के बाद से इनके परिजनों में कोहराम मचा है और पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। पिछले तीन दिनों से नेपाल और बिहार के तमाम इलाकों में हो रही भारी बारिश के कारण गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। गोपालगंज में भी पिछले तीन दिनों से लगातार आफत की बारिश हो रही है। इसके वजह से जहां किसानों को भारी क्षति हुई है, तो वहीं धान के किसानों को काफी फायदा भी हुआ है। वहीं मक्का गन्ना और जो धान पक गए थे उन किसानों को नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि तेज हवा और बारिश के वजह से जगह जगह जल जमाव की समस्या भी हो गई है। इसी दरमियान नेपाल से गंडक नदी में भारी स्तर पर पानी को छोड़ा जा रहा है। इसके वजह से गंडक नदी में भी जल स्तर की लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। इसको लेकर गोपालगंज जिला प्रशासन अलर्ट है। पूरे तटबंधीय इलाकों का लगातार वरिष्ठ पदाधिकारी दौरा कर रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से जगह जगह तटबंधों पर पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। रात में भी पेट्रोलिंग की जा रही है। अभी शुक्रवार की रात में लगभग 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जो गोपालगंज से निकल गया। इसके बाद फिर से लगभग 4 लाख क्यूसेक पानी वाल्मीकि नगर बराज से छोड़ा गया है, जो आज रात में गोपालगंज से होकर गुजरेगा। नेपाल से छोड़े जा रहे पानी को लेकर गोपालगंज के निचले इलाकों में माइकिंग कर ग्रामीणों को सतर्क किया जा रहा है और सुरक्षित स्थान पर जाने की बात कही जा रही है। ICO सदर रजत कुमार बर्णवाल ने भी माइकिंग के माध्यम से निचले इलाकों को अलर्ट किया। ग्रामीणों से नदी किनारे नहीं जाने और मवेशियों को दूर रखने की अपील की जा रही है। साथ ही नाविकों और मछुआरों को नदी में नहीं उतरने की हिदायत दी जा रही है। धारा 163 के तहत नदी में नाव चलाने पर प्रतिबंध जिला पदाधिकारी ने लगा दिया है। तटबंधों की क्षमता 6.5 से 7 लाख क्यूसेक तक है। इस वजह से जिला प्रशासन का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है। जल स्तर बढ़ने पर कटाव और अंडर कट को लेकर प्रशासन सतर्क है। सांप काटने पर झाड़ फूंक के बजाय अस्पताल जाने की अपील भी लोगों से की जा रही है। अक्सर जब नदी में जल स्तर की वृद्धि होती है और निचले इलाकों में पानी बढ़ता है, तो सांप काटने की घटनाएं भी सामने आती हैं। ऐसे में लोगों को सांप काटने पर तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की सलाह दी जा रही है। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने आज जिले में संचालित विभिन्न विकास एवं अवर संरचनात्मक योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान योजनाओं की वर्तमान प्रगति, निर्माण कार्यों की स्थिति, भूमि एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र से संबंधित मामलों तथा लंबित कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं कार्यकारी एजेंसियों को योजनाओं को निर्धारित समय पर पूर्ण कराने तथा कार्यों में अनावश्यक विलम्ब नहीं होने देने का निर्देश दिया है। समीक्षा के दौरान सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, पंचायत सरकार भवन निर्माण, सामुदायिक भवन सह वर्क शेड निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण सहित अन्य योजनाओं के प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने कहा कि जिले के आधारभूत संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण सरकार की प्राथमिकता है। योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलम्ब नहीं होना चाहिए। जिलाधिकारी ने संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी को योजनाओं से संबंधित लंबित अनापत्ति प्रमाण पत्र यथा शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने भूमि एवं प्रशासनिक स्तर से लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा। पंचायत सरकार भवनों की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य से संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को गति बढ़ाने का निर्देश दिया। स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन एवं भवन निर्माण प्रमंडल के अभियंताओं को भी निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों की नियमित निगरानी करते हुए गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित करने को कहा गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता मानकों का पालन करते हुए निर्धारित अवधि में योजनाओं को पूर्ण करें। बैठक में सामुदायिक भवन सह वर्क शेड तथा आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण के प्रगति की भी समीक्षा की गई। संबंधित पदाधिकारियों को लंबित कार्यों की नियमित समीक्षा करने तथा निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा कराने का निर्देश दिया गया। वहीं जिलाधिकारी ने जनगणना से संबंधित आगामी कार्यों को भी निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप समयबद्ध तरीके से संपादित करने पर बल दिया। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों एवं कार्यकारी एजेंसियों को योजनाओं के प्रगति की नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का उद्देश्य आम जन को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है, इसलिए स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी तरीके से सुनिश्चित करें। बैठक में उप विकास आयुक्त, पंचायती राज पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, भवन निर्माण प्रमंडल के अभियंता तथा संबंधित अन्य पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। सिरीपुर थाना की पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के खामपार थाना क्षेत्र के कुकुर घाटी का रहने वाला मुन्ना यादव, पिता स्वर्गीय महेंद्र यादव बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि आरोपी चोरी की मोटरसाइकिल से आ रहा था। पुलिस शुक्रवार की देर रात सिरीपुर थाना क्षेत्र के मिश्र बतराहा पेट्रोल पंप के पास गश्ती कर रही थी, तभी पुलिस की गाड़ी को देखकर आरोपी मोटरसाइकिल लेकर भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने पीछा कर आरोपी को पकड़ा। जांच पड़ताल करने पर मोटरसाइकिल चोरी की पाई गई, जिसके बाद आरोपी मुन्ना यादव को गिरफ्तार कर मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है और इसमें अब पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर प्रत्येक दिन रात्रि बस सेवा पुलिस के द्वारा संचालित की जा रही है। यह बस सेवा मीरगंज रेलवे स्टेशन, थावे रेलवे स्टेशन, गोपालगंज बस स्टैंड और गोपालगंज रेलवे स्टेशन पर संचालित हो रही है। रात्रि में इन स्टेशनों पर उतरने वाले यात्रियों को उनके सुरक्षित स्थान पर पुलिस के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। पुलिस इसके लिए निःशुल्क बस सेवा का संचालन प्रत्येक दिन रात्रि में कर रही है। वहीं इस बस में पुलिसकर्मी और पदाधिकारियों की तैनाती भी की गई है, ताकि सभी यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्यों तक पहुंचाया जा सके। हथुआ नगर में पोस्ट ऑफिस के पास 3 विशाल पेड़ गिर गए हैं। बताया जा रहा है कि पेड़ गिरने से आवागमन काफी देर तक प्रभावित रहा, जिसके बाद नगर परिषद के कर्मियों ने किसी तरह से आवागमन को बहाल किया है। गनीमत रहा कि पेड़ गिरने से किसी की मौत नहीं हुई, अन्यथा जिस तरीके से विशाल पेड़ मुख्य सड़क पर गिरे हैं, किसी की जान जा सकती थी। 3 दिनों से हो रही तेज बारिश और आंधी के वजह से पेड़ गिर गया है। हालांकि और भी कई इलाकों से पेड़ गिरने की खबर आई है। बारिश और आंधी के वजह से लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है। जगह जगह जल जमाव की समस्या से भी लोग जूझ रहे हैं, तो वहीं बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को इस बारिश और आंधी के वजह से काफी परेशानी हो रही है। जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने वर्चुअल बैठक के माध्यम से आगामी 2 अक्टूबर को जिला में नीतीश संवाद जीविका के 20 साल बेमिसाल कार्यक्रम के संदर्भ में तैयारियों का जायजा लिया। वर्चुअल बैठक में प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, विधान परिषद में मुख्य सचेतक संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी जी, प्रदेश महासचिव सह मुख्यालय प्रभारी शंभू कुशवाहा सहित तमाम लोग जुड़े रहे। अध्यक्ष के साथ वर्चुअल बैठक कर कहा गया कि 2 अक्टूबर 2026 को जीविका के 20 साल पूरा हो रहे हैं, जिसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 वर्षों से जीविका योजना समूह का गठन कर महिलाओं के विकास के लिए जो काम किया है वह बेमिसाल है। इसको जदयू पार्टी उत्सव के रूप में मनाएगी। जिला अध्यक्ष प्रमोद पटेल ने कहा कि 28 सितंबर को जदयू जिला कार्यालय में 1 बजे से कार्यक्रम की ऐतिहासिक सफलता के लिए तैयारी बैठक भी रखी गई है, जिसमें पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल होंगे।
10: और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए रेडियो रिमझिम के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही प्ले स्टोर से रेडियो रिमझिम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दुनिया के किसी भी कोने से आप रेडियो रिमझिम की सेवा का लाभ अपने मोबाइल फोन में ले सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। शराब तस्करों की गाड़ी से दुर्घटनाग्रस्त होकर एक व्यक्ति की मौत, एक घायल। लगभग आधा दर्जन मामलों के आरोपी राजन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नदी के बढ़ते जलस्तर से तटवर्ती इलाके के लोगों में दहशत, प्रशासन अलर्ट। सड़क हादसे में एक शिक्षिका की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। अवर संरचनाओं के विकास को लेकर जिला पदाधिकारी ने की समीक्षा। इसके साथ ही स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
12: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
13: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
14: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
13: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
14: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
13: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
14: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
13: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
14: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
15: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
16: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
17: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
18: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
17: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
15: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
19: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
20: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86-034-48-652 पे।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
21: रियाज रेट्रो।
22: चोर भी, चौकीदार भी, समाज के ठेकेदार भी, कोई गोरा चिट्टा बाबू सा, कोई चाचा सा, कोई साबू सा, सब लाएंगे खुशहाली, हर दिन होली, हर रात दिवाली। यहां वादे बहुत, इरादे कम, गठबंधन है पर बंधन कम, कोई सेवक है, कोई आदमी आम, कर देगा हर कोई काम तमाम। हम जनता नहीं अनजान है, ये गणतंत्र है, ये उंगली ही भगवान है। चाहे इधर गिरो या उधर गिरो, कमल खिलाओ, हाथ थामो या झाड़ू दो, हर 5 साल की ये रीत है, अपना वोट वहां डालें जहां आपका ट्वीट है।
23: बाजू।

यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पर ये डेमोक्रेसी मदमस्त हाथी की तरह चलती तो रहती है। कॉमेडी, ट्रेजेडी, फार्स सब होता है यहाँ पर पॉलिटिक्स के नाम पे, पर इट्स ऑल वर्थ इट। इस साल तो तमाशा इतना ज्यादा है कि हर रोज अखबार में कुछ पढ़कर समझ में नहीं आता कि हंसें या रोएं। कोई मास्क और टैटूज बेच रहा है, तो कोई संस्कृत श्लोक पाठ के चैलेंजेस दे रहा है, कोई किसी को मेंटली अनस्टेबल कह रहा है, तो कोई और डॉक्टर और चौकीदार में फर्क बता रहा है। आज जो नेगोशिएशंस में लगा हुआ है, कल पता चलता है उसने इलेक्शन ही नहीं लड़ना इस साल। इट्स ऑल वेरी वियर्ड एंड पर्प्लेक्सिंग। रियाज रेट्रो। मैं आपके साथ रिया, और मैं फिर भी कहूंगी नोटा इज नॉट एन ऑप्शन। चुनना तो है ही किसी को जिसको अगले 5 साल तक झेल सकें। वैसे सोच के देखो तो मजेदार बात है, राजनीति में हम 5 साल में ही उब जाते हैं, चुनाव के इंतजार में रहते हैं, तो साल दर साल लोग शादी कैसे निभा लेते हैं यार। ना कोई परफॉर्मेंस अप्रेजल, ना कोई इलेक्शंस और गोल्डन जुबली की पार्टी आ गई, देखो हाउ स्ट्रेंज। एनीवे, कमिंग बैक टू वो रिश्ता जिस पर हक आजमाया जा सकता है हर 5 साल में एक बार, यानी जनता का अपनी सरकार के साथ रिश्ता। तो ऐसा है, वो हक जताना तो बनता है और अपना फर्ज निभाना भी बनता है। गाड़ी की चाबी किसी ड्राइवर कैंडिडेट के हाथ देने से पहले हम 10 सवाल पूछते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस देखते हैं और ड्राइविंग टेस्ट भी करवाते हैं। और यहाँ तो देश की चाबी दे रहे हैं भाई, कुछ तो सोचो, मैनिफेस्टो पढ़ो, क्वालिफिकेशंस देखो अपने कैंडिडेट्स के, और सोच समझ विचार पढ़ाई के बाद वोट जरूर जरूर जरूर डालो। हम जो उस एक दिन लेजी हो जाते हैं, वोटर आईडी कार्ड नहीं मिल रहा, पास वाले गवर्नमेंट स्कूल का पता नहीं जानते, छुट्टी मनाने और नेटफ्लिक्स के मूड में आ जाते हैं, हमें कोई हक नहीं फिर आगे शिकायत करने का। पर ये तो मैं मानती हूं, आपसे संवेदना रखती हूं कि चुनना मुश्किल होता है कभी, नोटा नन ऑफ द अबव जहन में होता है कभी। इट्स अ टफ चॉइस एंड समटाइम्स अ चॉइस बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। फिर भी इस अधिकार का भार उठाना तो है ही, देयर इज नो वे अराउंड इट। मैंने 5 साल पहले ये लाइंस लिखी थी पोलिंग बूथ से ठीक वापस आने के बाद, आज ये लाइंस जहन में बार बार उमड़ के फिर वापस आ रही हैं। ये उंगली पे निशान दामन पे दाग न बन जाए, आज ये स्याही है कल ये आग न बन जाए।

0: को देना। हम करते हैं सेवा, वो खाता है मेवा। हम करते हैं सेवा, वो खाता है मेवा। तोबा नाम न उसका लेना।
1: वो झूठा है, वो न उसको देना।

0: ये पैसे पे मरता है।
1: अरे बाप रे, बड़ा क्रोध है।
0: ये मिलते ही मौका दे जाएगा धोखा, फिर हम उसे ना कहना। वो झूठा है वो जन उसको देना, नोट भी दे तो वो जन उसको देना। हम करते हैं सेवा।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
8: फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी की नमक हराम, जिससे कितने ही इवोकेटिव गाने सुनाए हुए हैं मैंने आपको यहाँ, बट दिस वन कुछ अलग अंदाज में। असरानी और रेखा का कैंपेन सॉन्ग वो झूठा है वोट ना उसको देना, किशोरदा की आवाज, संगीत RD बोल आनंद बख्शी, और बख्शी साहब का ही लिखा उससे पहले वाला गाना भी, झूठा है तेरा वादा फिल्म दुश्मन, आवाज इसमें भी किशोरदा, संगीत LP। पर अब अगर सब झूठे हैं तो वोट किसको दें? और सबके सब तो झूठे वादे नहीं करते होंगे, नहीं तो इस देश का बंटाधार कब का हो चुका होता। थिंक अबाउट इट। काम तो हर सरकार करती है, कोई थोड़ा कम, कोई थोड़ा ज्यादा, पर काम तो आपकी उंगली के डर से ही करती है। हाँ हाँ, मुझे पता है, हर पॉलिटिशियन के दिल में देश प्रेम की भावना उमड़ रही है, उबल रही है। देश की सेवा करने के लिए सब उतावले हो रहे हैं, ऑफ कोर्स। सब बस अपनी जिंदगी देश की भलाई में ही निछावर कर देना चाहते हैं, ऑफ कोर्स यस। पर हम और हमारी उंगली इस पे नचाते तो हैं हम हर पार्टी को। मैं आपके साथ रिया, और सोशल मीडिया पर हैंडल्स बदलने के बाद, व्हाट्सएप की DP में अपने वाले पार्टी का इलेक्शन सिंबल लगाने के बाद, प्रोफाइल फोटो में अपनी जगह अपने नेता को बिठाने के बाद, वोट भी दे आओ यार। सारी की सारी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा की कायनात मिलकर भी देश की तकदीर नहीं बदल सकती, पर आपका वोट ये काम कर सकता है। अनलेस आप उनमें से हैं जो कहते हैं की फर्क पैंदा है, सब ठीक ठाक ही तो है।

0: आवाज महेंद्र कपूर, और अपने यूजुअल रूहानी स्टाइल से हटकर मस्त कोलैबोरेशन इसमें मदन मोहन और राजा मेहंदी अली खान का। सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। अब ऐसी अनपढ़ जैसी बातें हम देश के नागरिक तो नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा कि गुलजार जी ने कहा उससे पहले, बीए किया है, एमए किया है, लगता है वो भी एमए किया है, काम नहीं है, वरना यहाँ आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है। फिल्म मेरे अपने, संगीत सलिल चौधरी। रियाज रेट्रो। मैं आपके साथ रिया, और मैं जानती हूँ आप यही सोच रहे हैं कि वोट डालने वाले थीम की आड़ में मैं अपने पर्सनल पॉलिटिक्स जता रही हूँ आज यहाँ। तो इससे पहले कि आप ये इल्जाम मुझ पर डालें और गुस्से से भरा ट्वीट कर दें, मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ, अपने सर की कसम खाती हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। पर ये तमाम मुद्दे बहुत पेचीदे हैं, और हर सरकार, हर जीती हुई पार्टी, हर नेता, हर मंत्री को आखिरकार इन सवालों का सामना करना ही पड़ता है कि नौकरियां कहाँ हैं, ग्रोथ कितनी है, जवानों और किसानों के क्या हाल हैं, फॉरेन डेट कम हुआ कि नहीं, सड़कें बनी कि नहीं, बिजली पानी हाउसिंग का क्या। 1950 हो या 70 या आज, मुद्दे वही घूम घूम कर बार बार सामने आते हैं, और क्योंकि ये गणतंत्र है और हमारे हाथ में वोट का हथियार है, तभी इन मुद्दों पर काम होता रहता है, कभी कम कभी ज्यादा। इसी बात पर मुझे गुलजार जी की बनाई फिल्म आंधी की भी याद आ गई, जिस पर 1975 में इमरजेंसी के चलते रोक लगा दी गई थी, रिलीज में बहुत अड़चने आई थी, लूजली बेस्ड ऑन इंदिरा गांधी। सुचित्रा सेन का परफॉर्मेंस लूमिनस था इस किरदार में, और बहुत ही सेंसिटिव फिल्म भी थी, खासकर इसका पर्सनल ट्रैक संजीव कुमार और सुचित्रा जी के बीच। वो गाने तो हम हजार बार सुन चुके हैं यहाँ पर, आज इस फिल्म का लेसर नोन कैंपेन सॉन्ग सुन लेते हैं, कटाक्ष और व्यंग से भरा, सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं।
1: आरती मन मानती, कहना क्यों नहीं मानती, पाठशाला में छुट्टी हो गई, बस्ता क्यों नहीं बांधती।

0: भाई, जब तू पहली बार हमारी बस्ती में आई थी ना बिजली लगवाने, हमने देखा था तेरा चेहरा खिल उठा था, लाल हो गया था। फिर पानी के नल लगवाने आई तो तेरी गर्दन ऊंची हो गई। फिर 2 साल बाद कंबल, अनाज और किसानों के लिए बीज बांटने आई और कहा वोट सावंतराव गदरे की पार्टी को देना। वहां से तू बिजनेस समझ गई, तेरी दुकानदारी शुरू हो गई।
1: बंदोबस्त है, जबरदस्त है,

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710309 या 90765665750।
5: प्रसाद क्लिनिक,
6: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
5: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
7: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
8: पहचाना पहचाना, गाना पहचाना, हेल्प करो। बंदोबस्त है, आवाज रूप कुमार राठौड़, संगीत विशाल भारद्वाज जी, गुलजार जी का 1999 पॉलिटिकल ड्रामा हो तू तू। आज तो गुलजार स्पेशल होता जा रहा है, एंड दैट्स नॉट सरप्राइजिंग, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट उन्होंने अपने पॉलिटिक्स को, अपने वर्ल्ड व्यू को अक्सर दर्शाया है स्क्रीन पर। हिंदी फिल्म जगत से जुड़े लोग कई बार इससे कतराते हैं, पर गुलजार जी उनमें से नहीं। वैसे गुलजार जी ने मुझसे कहा था कि 2019 इलेक्शन ईयर है, तो इस साल बर्थडे इंटरव्यू में उनके पॉलिटिकल गीत सुनेंगे, पर देखिए वो कॉन्सेप्ट मैंने उनसे चुरा कर पहले ही कर दिया, क्योंकि अगस्त में जब उनका बर्थडे है तब तक तो इलेक्शन का माहौल कब का खत्म हो चुका होगा ना, तो तब हम फिर उनके पास राज चांद और मैं की बातें करने पहुंच जाएंगे।
9: Riyaz Retro. Riyaz Retro. Only on Gaana.
8: मुझे पता है रियाज रेट्रो सुनने वालों में से बहुत सारे लोग इंडिया के बाहर रहते हैं, वो दिल से, जिगर से, रूह से, सिटीजनशिप कार्ड से इंडियन हैं, पासपोर्ट से इंडियन हैं, पर ज्योग्राफिकली अभी इंडिया के बाहर हैं। और क्योंकि आज हम उंगली उठाने की और वोट डालने की बात कर रहे हैं इस इलेक्शंस में, मैंने कहा हु बेटर टू स्पीक टू देन संजीव भार्गव, डायरेक्टर ब्रांड टाइम्स ऑफ इंडिया। और संजीव, लोग सोचेंगे ये पेड कॉन्टेंट है या स्पॉन्सर्ड कॉन्टेंट है, तो मैं अभी सबको बता दूँ, मुझे किसी ने कहा है नहीं है कि ये बताऊं मैं यहाँ पे रियाज रेट्रो पर, बट आई एम रियली फैसिनेटेड बाय दिस इनिशिएटिव जो टाइम्स ऑफ इंडिया कर रहा है, और मैंने सोचा कि आपसे बेहतर कौन है इसके बारे में बात करने के लिए। सो कैन यू टॉक अ लिटिल अबाउट व्हाट इज द लॉस्ट वोट्स कैंपेन, व्हाट इज द टाइम्स ऑफ इंडिया ट्राइंग टू डू, और इससे लोग कैसे फायदा उठा सकते हैं जो इंडिया के बाहर हैं और देश की पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं?
10: लॉस्ट वोट्स जो कैंपेन है ये डिजाइन करी गई है फॉर एक्चुअली द माइग्रेंट पॉपुलेशन। माइग्रेंट का माने पीपल हु आर टेम्पररीली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर प्लेस वेयर देयर वोट इज रजिस्टर्ड।
8: ओके,
10: प्रिंसिपल के तौर से देखा जाए तो वेदर द पर्सन इज अब्रॉड और इन इंडिया, अगर वो माइग्रेंट है तो वो हमारे हिसाब से लॉस्ट वोट है।
8: अच्छा अच्छा।
10: नाउ गवर्नमेंट ने एक्चुअली कई प्रोविजंस बना रखी हैं। वन ऑफ द प्रोविजंस इज कि आप अपना वोट रीरजिस्टर करिए। NRIs कैन ऑल्सो रीरजिस्टर देयर वोट। उनके पास एक प्रोविजन है कि वो एम्बेसी में जाके वोट दे सकते हैं। विद इन इंडिया ऑल्सो माइग्रेंट पॉपुलेशंस हैव ऑफकोर्स टेक्निकली स्पीकिंग द राइट टू गेट देयर वोट ट्रांसफर्ड टू द सिटी दे आर प्रेजेंट इन.
8: राइट राइट.
10: प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब लोग बाग टेम्पररीली माइग्रेंट्स होते हैं, वेदर दे आर एनआरआई, कोई दो साल के डेपुटेशन पे गया है, कोई पोस्टिंग पे गया है, तो कोई ट्रैवलिंग जॉब के अंदर है. ऐसे ही देर आर पीपल इन इंडिया हु आर टेम्पररीली डिस्प्लेस्ड, वेदर दे आर स्टूडेंट्स, माइग्रेंट लेबर, इवन एग्जीक्यूटिव्स इन जॉब्स.
8: ओके,
10: तो इन लोगों के लिए हम ये कह रहे हैं कि इनका वोट आज की तारीख में इनवैलिडेट इसलिए हो जाता है क्योंकि वो वोट दे ही नहीं पाते. जिस दिन वोटिंग है उस दिन वो लोग अपने शहर में है ही नहीं. और लॉस्ट वोट जो कैंपेन है वो ये कहता है कि हम हर हिंदुस्तानी सिटीजन को ये हक दें कि उसके पास ये एबिलिटी हो कि वो जहां पे भी हो वहां से अपना वोट डाल सके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर.
8: बिल्कुल बिल्कुल.
10: इसके लिए टेक्निकल पॉसिबिलिटीज बहुत हैं और वो अभी अनरेवल हो रही हैं. गवर्नमेंट उन पर तवज्जो दे रही है.
8: अच्छा,
10: होपफुली बाय द नेक्स्ट इलेक्शन दैट विल हैपन. आज की तारीख में द गवर्नमेंट इज रीअश्योरिंग द पब्लिक थ्रू देयर ओन कैंपेन सेइंग दैट द माइग्रेंट पॉपुलेशन वी आर ट्राइंग टू मेक इट एज इजी एज पॉसिबल फॉर देम टू वोट.
8: ओके,
10: और यही सुविधा जो है मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेल कर सकें और वोट करें इस इलेक्शन में.
8: दिस इज वंडरफुल, क्योंकि ये मैंने भी बहुत बार सुना है लोगों से, और आई थिंक गैर जिम्मेदार होने का बहाना भी बन जाता है ये कि मैं तो अपने शहर में ही नहीं हूँ, मैं क्या करूँ. मैंने अपने ऑफिस में कॉलीग्स को बोलते सुना है कि देखो मैं अब अगर इस वक्त रांची में होता तो मैं ज़रूर वोट डालता. बट वी ऑल्सो नो कि आप रांची शायद 2 साल बाद 4 साल बाद जाएंगे, कभी कभी घर जाते हैं छुट्टी मनाने, पर ऐसा तो है नहीं कि इलेक्शन टाइम पर जाएंगे. सो आई थिंक इट गिव्स अस एन एक्सक्यूज टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड नॉट डू व्हाट्स आवर ड्यूटी एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर डेमोक्रेसी. दिस इज़ वंडरफुल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस. अगर आपने कहा कि यू नो यू आर गेटिंग रीअश्योरेंसेज एंड द गवर्नमेंट इज ऑल्सो गिविंग रीअश्योरेंसेज इंडिपेंडेंटली, किस किस्म के रीअश्योरेंसेज हैं थोड़ा अगर उसके बारे में बता सकें कि क्या कर सकते हैं ऐसे लोग अगर वो सुविधाएं अभी हासिल नहीं भी हुई हैं तो आगे जाके हाउ आर दे लाइकली टू मेक इट पॉसिबल दैट इफ आई एम लिविंग इन बॉम्बे एंड माई वोटर कार्ड सेज आई एम फ्रॉम आसनसोल, हाउ डू आई कास्ट माई वोट, हाउ विल दे मेक इट पॉसिबल.
10: Yeah, the government machinery is really huge and they have to contend with a lot of legalities. Unka sabse bada daitv yahi hai ki wo dekhen ki jo bhi system wo banaye usme hera feri na ho paaye. Isliye iski jo perfect solution hai, technology aided solution jo hai, usko banne mein time lagega, uska parliament mein consensus hone mein time lagega. और इसीलिए जो है वो शायद इस इलेक्शन में इम्प्लीमेंट ना हो.
8: राइट राइट.
10: गवर्नमेंट ने जो किया है वो शायद एक फॉर्म 6 होता है. व्हाट दे हैव डन इज दे हैव मेड इट अवेलेबल ऑन द नेट, दे हैव मेड इट इजी टू फिल अप एंड दे हैव मेड इट इजी टू ट्रांसफर योर वोट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर इवन इफ इट इज फॉर अ लेट अस से अ पीरियड ऑफ 2 years or whatever.
8: ओके,
10: ये जो सुविधा है ये सुविधा पहले थी पर इतनी सुविधाजनक नहीं थी, पहले थी पर उसके बारे में लोगों को पता नहीं था. तो इसका जो प्रचार किया है, इसकी जो एडवर्टाइजिंग करी है, इसको जो प्रमोट किया है, आई थिंक दैट इज द स्टेप दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन इन रिकॉग्निशन ऑफ द लॉस्ट वोट्स कैंपेन एंड आई फील इट इज अ रोबस्ट स्टेप टू टेक एज अ फर्स्ट स्टेप. और इसके आगे बहुत कुछ होना है पर उसमें टाइम लगेगा.
8: यस ऑफ कोर्स, दीज थिंग्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम. और जैसा कि आपने कहा, हमारे देश में कोई भी सिस्टम बनाते वक्त सबसे पहला ख्याल यही आता है कि ये सिस्टम बिगड़ ना जाए, इसका मिसयूज ना हो जाए, तो वो चेक्स एंड बैलेंसेस पहले से सोच के बनाना पड़ता है. दैट डिलेज अस बट दैट डिले इज वर्थ इट. थैंक यू सो मच संजीव. आई गेस आपके वेबसाइट पे, टाइम्स ऑफ इंडिया डिजिटल पेजेस पे कहाँ जाके लोग इसके बारे में और थोड़ा पढ़ सकते हैं? इज देयर अ लिंक दैट वी कैन टेल देम अबाउट और गाइड them towards an edition of the paper?
10: Yes, yeah, this is lostvotes.com, lostvotes.com.
8: Okay.
10: Lostvotes.com pe there is a comprehensive information on the issue, its scale, and the number of people who are supporting the cause. Aap bhi wahan ja ke is cause ko support kar sakte hain. And that is how you can lend your support to the thing so that the government takes cognizance of it and takes speedy action going forward.
8: Of course.
10: यहाँ पे experts के comments हैं, panel discussions के videos हैं. जरूर जाइए वहाँ पे और इस cause को support कीजिए.
8: LostVotes.com, LostVotes.com. अगर आप कहीं बैठे हैं जहाँ पे आपको लगता है आपको वोट कास्ट करना चाहिए पर आप कर नहीं पा रहे, इस साल करें ना करें, आप एटलीस्ट इस वेबसाइट पे जाके, इस यूआरएल पे जाके इसके बारे में पढ़ तो सकते हैं. संजीव भार्गव विद अस फ्रॉम द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हेड ऑफ टीओआई ब्रांड. थैंक यू सो मच संजीव फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस वेरी स्पेशल एपिसोड.
10: थैंक यू सो मच रिया. एंड माय फाइनल मैसेज टू ऑल योर लिसनर्स, इफ यू डेयर टू ड्रीम देन केयर टू वोट.
8: If you dare to dream, if you dare to dream for your country, then care to vote. बहुत ही बढ़िया. I love this. और अब हम सब की तरफ से सारे politicians को ये एक गाना dedicated है कि हमसे पंगा मत लो, हमारी उंगली में बहुत दम है जी.

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे, किसी में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किसी में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

तुम्हें अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ खैर जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं किसी से भी, हारे नहीं हम।

देखिए, अब अगर वो हैं जो दो और दो पांच बना दें, यानी हमारे राजनेता, तो हम क्या कम हैं? उंगली दबा के अंगूठा बना देंगे टाउ टाउ, वो भी अपनी उंगली के दम पर। तूने अभी देखा नहीं, फ्रॉम द फिल्म दो और दो पांच, आवाज किशोरदा, संगीत राजेश रोशन, बोल अनजान, उससे पहले गुलजार जी, येट अगेन, मकड़ी से, ओ पापड़ वाले, पंगा ना ले, उपगना पांड्या, आलाप मजगावकर की आवाजें, संगीत विशाल भारद्वाज। आप जिसको भी सपोर्ट करते हो, जैसे भी हो आपके पॉलिटिक्स, जिस भी आइडियोलॉजी से आप सहमत हो, मेरी बस इतनी सी इल्तजा है कि अगर आप इस देश के नागरिक हैं, खुद को इंडियन सिटीजन कहने में गर्व महसूस करते हैं, तो फिर प्लीज उंगली उठाओ, प्लीज प्लीज डू कास्ट योर वोट। ड्रॉइंग रूम्स, आर्म चेयर्स, ट्विटर, FB, इंस्टा पर देश नहीं बनता। पॉलिटिक्स डिस्कस जरूर होती है वहां, और होती रहनी चाहिए तमीज, तहजीब और इज्जत से। पर फाइनली जब देश की किस्मत की बात आती है, तो वहां थम नहीं, फिंगर चलता है। द पावर ऑफ द वोट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। जो शोर मचाते हैं, जो चुप रहते हैं, जो अपने ख्याल शेयर करते हैं, जो अपनी पॉलिटिक्स अपने तक ही रखते हैं, इट डजंट मैटर। पर इस देश से अगर हम एक भी बेनिफिट, वैल्यू, कन्वीनियंस का लाभ उठाते हैं, किसी भी सिस्टम या प्रोसेस के हिस्सेदार हैं, तो हम वोट ना करें ये सरासर गलत होगा। So please do vote, look for that voter ID card now, find out where the booth is nearest to you, और देखिए उस लिस्ट में आपका नाम आया कि नहीं। At least जहां तक देश की बात है, उसी से मिलता है हक। To dare to dream, dare to love.

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित कर रहे हैं। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECINET प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सारणी में निर्वाचन आयोग ने संशोधन किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब महाराष्ट्र की संशोधित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 16 नवंबर को किया जाएगा। पहले अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होनी थी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मॉर्ट पहल सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
2: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: गृहमंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृतानंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्ण

रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: अक्षरों में करियर है।
1: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो मैम, नमस्ते।
2: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: जी मैम, धन्यवाद। सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मायर MP से।
2: जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: बस ठीक है मैम, अभी तो ट्राई कर रहे थे तो थोड़ी देर पहले बंद होता रहा था, फिर चालू हो गया मैम, तो वही फोन ट्राई कर रहे थे तो फोन भी लग गया मैम। और वहाँ का मौसम का क्या हाल चाल है मैम?
2: जी मौसम यहाँ बढ़िया है।
1: जी बारिश नहीं है मैम? हमारे यहाँ तो बारिश है मैम।
2: नहीं नहीं, हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है, हो जाता तो
1: ठीक है मैम। हम जी मैम, हम भेज रहे हैं, बारिश हो जाएगा आपके यहाँ मैम।
2: जी जी, आपके यहाँ तो होते रहती है, थोड़ा भेज दीजिए कि इधर भी हो जाए।
1: जी जी जी मैम, आप गाना भेज दीजिए, हम बारिश भेज रहे हैं मैम।
2: अच्छा, तो आप गाना बता दीजिए।
1: जी फिल्म डर और गाने की बोल है तू मेरे सामने, और सुनवाएंगे कितने रेडियो रेंज दोस्त लोग सुनते हैं, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
2: जी तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: ओके मैम, धन्यवाद।
2: सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 FM में।
0: जी, हम योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
1: जी,
0: हेलो।
1: हाँ
0: हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया है।
1: क्या हो रहा है अभी?
0: अभी तो बारिश हो रहा है घर में है।
1: अच्छा, चलिए बढ़िया है, बारिश का मौसम है, एंजॉय कीजिए। तो बता दीजिए इसी के साथ कौन सा गाना सुनिएगा?
0: गाना आप हमें सुनवा देंगे, साजन मूवी का कोई भी प्यारा सा गीत।
1: गाने की बोल
0: देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यारी वाला गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो गाना सुनाएंगे भी किसी को?
0: सभी साथियों।
1: ओके, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो।
0: धन्यवाद।
1: 90.4 FM।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
3: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेस्टोरेंट में।
4: नमस्ते मैम।
3: नमस्ते,
4: हमें गाना सुना था। बताओ
3: जी, नाम बता दिए अपन। और कौन सा गाना सुनेगा?
4: और चूरी गाना सुना दे हम।
3: गाना के बोल बता दी।
4: पूरा गाना सुनवाए
3: कौन सा?
4: बेटा और कुछ ले।
3: अच्छा चलिए ठीक बाबे। और
4: भारतीय मैम बोलते तो मनोरमा मैम बोला था। भारतीय मैम,
3: भारतीय
4: वहाँ पे हम गाना है सबसे उसे सुने गए।
3: ठीक बस गाना प्ले करते नहीं सुनत रही रेडियो 90.4 FM।
4: आज बाजी जी कहाँ?
3: काल बाजी।
4: बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम आपका, सुनते हैं मैसेज करते हैं व्हाट्सएप से।
3: ओके।

0: अरे बाप रे।
1: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम 90.4 एफएम में।
2: बोलिए क्या रहा है।
1: बस आप लोगों से बातें हो रही हैं।
2: तो गाना सुनना है।
1: बिल्कुल बताइए कौन सा गाना सुनना है।
2: मौसम के हिसाब से बजा दीजिए। मौसम कैसा हुआ है आप एरिया में।
1: मेरे यहाँ तो मौसम काफी सुहाना बना हुआ है।
2: बरसात की तरह लग रहा है।
1: बरसात हुई थी, अभी खुला हुआ है और हल्की हवा चल रही है।
2: हवा तो तेज है, हल्की कहाँ है।
1: नहीं इधर थोड़ा हल्का ही है, उतना भी तेज नहीं है।
2: ठंडा ठंडा मौसम हुआ है, ठंडा लग रहा है।
1: ठंडा जी ठंडा लग रहा है।
2: बता दीजिएगा मौसम के हिसाब से गाना।
1: तो मौसम के हिसाब से तो बहुत सारे गाने हैं, आपको कौन सा सुनना है।
2: यही वाला बजा दीजिएगा, बरसात का मौसम आया।
1: गाना किसी को सुनवाना भी है।
2: मेरे अब्बू है, सलामी मियाँ, मेरे भैया है, मौलवी मियाँ, जमशेद, अरमान, निशान, शमशेद, भतीजी सब है, खाना मेरी सब श्रोता को और आपको।
1: आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमशिम 90.4 एफएम।
2: थैंक यू मैम।
1: वेलकम।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
2: सही है, मैं बद्री नारायण मुनि बोल रहा हूँ, ग्राम भलोई जिला सिवान जामो बाजार।
3: जी जी, कैसे हैं आप?
2: हम तो बहुत बढ़िया है, आप कैसी हैं?
3: जी हम भी अच्छे हैं।
2: ठीक है जी, तो हमको एक गाना सुनना है।
3: बिल्कुल, कौन सा?
2: गंगा जमुना फिल्म का। वो गाना का बोल है, नैन लड़ जाई है तो मनवा में कसक होइबे करी, फुटिया पटाका तो धमक होइबे करी।
3: जी जी,
2: वो गंगा जमुना का है। संगीत गीत लिखा है शकील बरानी ने, संगीत दिया है नौशाद साहब।
3: गाना किसी को सुनवाना भी है?
2: अब पूरे जितना लिसनर है रेडियो रिमझिम का, सबको हम सुनवाएंगे और आपको भी सुनवाएंगे, पूरा रेडियो रिमझिम के परिवार को और सबको सुनवाएंगे। और हमारा लड़का है नागार्जुन, उसको भी सुनवाएंगे। धर्मेंद्र है हमारा लड़का, उसको सुनवाएंगे। और गांव में एक आदमी है परोड़ी नाम है उसका, उसको भी सुनवाएंगे।
3: ओके, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4। जी कल शाम को 5 से 7 मिलेगा सुनने को।
2: अच्छा, 5 से 7 बजे कल। ठीक है, ठीक है।
4: लागा गोरी गुजरिया से

0: हाँ
1: क्रिसमस बोलते हैं
0: जी जी
1: कहा ठीक बा बाबू
0: ठीक बानी ना
1: हाँ ठीक बानी चला घोड़ा हमें ठीक बन
0: ठीक
1: है चाहे तो गाड़ी सुना दियो
0: बता दी
1: आप अपना मुंह से सुना दियो बढ़िया पूरा जुड़वा कौवा
0: क्यों
1: सुन रहे हैं दुनिया के लोग तो सुनबे कर रहा 50 साल के नारे धरो टाइम पास करे खाना खा लगे पूरे खाली से सब सुनी
0: तेरा और गाना प्ले करता नहीं
1: ठीक बोलो
0: रेडियो 90.4 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: सलामत में।
3: वालेकुम अस्सलाम।
2: कैसा चल?
3: मेरा ठीक है, आप बताइए अपना, कैसी हैं आप?
2: हम ही ठीक। खाना खा लिए?
3: जी, मेरा नाश्ता हो गया, आप बताइए आपका हो गया?
2: हाँ, हमारे भी हो गया। और सब बताइए?
3: और सब तो ठीक है।
2: मुझे गाना सुनना है।
3: बिल्कुल, बताइए कौन सा?
2: यही गाना नहीं है, मेरी चाहत किस मेरे नाम से धर के जिया।
3: एक बार और बताइए।
2: तेरे नाम से धर के जिया।
3: और गाना किसी को सुनवाएंगी भी?
2: सब श्रोताओं को।
3: आपके गाने को प्ले करते हैं? सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: आपको ये सुनाएगा?
3: ये आपको कल सुनने को मिलेगा।

0: हेलो
1: हेलो
0: नमस्ते
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: गोपाल ओझा ग्राम कुकवासा से बोल रहा हूँ मैं।
1: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: बढ़िया है, रहेगी अभी धूप निकल रही है, गर्मी पड़ रही है अभी तो।
1: अच्छा, आपके यहाँ गर्मी पड़ रही है?
0: गर्मी पड़ रही है, अभी तो फसल भी कटेंगी, अभी तो 2-4 देना बाद।
1: चलिए, कौन सा गाना सुनिएगा आज?
0: मुझे सुनना है कुमार सानू की आवाज में वो डी डॉन फिल्म का
1: गाने की बोल।
0: देखा दे तुम्हें दिल ये बेकरार हो गया, वो जाने जाना हमको तुमसे प्यार हो गया, वो वाला गाना।
1: अच्छा अच्छा
0: और क्या, वो डेडिकेट करना चाहते हैं?
1: बिल्कुल बताइए।
0: हमारे दोस्त है सुनील साहू जी, मक्सू ने लिखा, ज्योति जी है, जीतन धाकड़ जी है और नरेश जी है, इनके लिए और आपके लिए भी।
1: तो गाना आपका प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: नमस्ते
5: नमस्ते।
6: भोजपुरी में बात करी ना मैम? भोजपुरी में आपको बहुत अच्छा मीठा आवाज लगेगा।
5: अच्छा जी।
6: मनोरमा जी?
5: ना भारती।
6: अच्छा अच्छा, भारती जी। आप लोग का दोनों जने का आवाज एक ही खानी बा।
5: बहुत आदमी कंफ्यूज हो जानी लो।
6: जी जी जी, उन्हें पानी होता?
5: हाँ, इन्हें तो पूरा एकदम पानी होत रहा पूरा।
6: अच्छा अच्छा,
5: अभी तो थोड़ा खुलल बावे।
6: और सब नाश्ता पानी हो गया मैम?
5: हाँ हाँ, नाश्ता पानी हो गया बावे, सब जन अब अपना अपना काम में।
6: जी जी जी जी, एगो गाना सुना दी।
5: बता दी कौन सा?
6: उन्हों एगो गाना सुना दी खेसरिया के भोजपुरी।
5: अच्छा,
6: अपना मन से?
5: वैसे तो हम रोज अपना मन से वालों के सुनाबे करे नी।
6: अच्छा, तो सुना दी है खेसरिया के सुना दी ना, मेरा आरू से के जीतल बा।
5: अच्छा अच्छा। गाना केहू के सुनवा हूँ के बा?
6: रिसभ रिसभ।
5: अच्छा जी।
6: हाँ, प्रिंट वाला हवन रिसभ
7: फ्लेक्स वाला।
5: और ये सब ठीक बा ना?
6: हाँ हाँ, सब बढ़िया बा। आप लोग के दुआ बा।
5: तो चली गाना रहा और प्ले करता नहीं।
6: ठीक बा,
5: सुनाते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: नमस्कार
5: नमस्कार।
8: ए जी, एक बात बताई।

0: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
1: अच्छा एगो और बात बताई, केकरा हाथ के खाना मिठाई लगे?
2: तहारा हाथ के।
1: केकरा हाथ के मिर्चाई लगे?
2: भौजाई के।
1: सो क्यूट बेबी, एक और बात बताई।

0: खा लग जला।
1: हेलो
2: हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: खाना खा ली?
2: हाँ जी, मेरा हो गया, आप बताइए आपका हो गया?
1: गाना सुन रहे
2: जी? बिल्कुल, नाम भी बता दीजिए और गाने भी बोल।
1: अजमेरी खातून, खुदा जाने किस्मत कहाँ लेके जाए।
2: हेलो,
1: कौन सुन के गाना?
2: जी जी, और गाना क्यों सुना हूँ के बाद?
1: खुदा जाने किस्मत कहाँ लेके जाए, ये गाना सुन।
2: ना, हम पूछे थे गाना क्यों सुनेबो करे।
1: गुलाबसा खातून, चांदा खातून, मौलदीन या इरफान आलम, और शानार खातून, तारा खातून है, सहिमा खातून है, जमशे चार मान है, शमशेर है, आपको भी जितना रेडियो सुनने वाले।
2: ओके, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
1: आपका नाम क्या है मैम?
2: मेरा नाम भारती है।
1: ठीक है, आपको अब सुनाइएगा।
2: ये आपको कल सुनने को मिलेगा।
1: कितना बजे?
2: शाम को 5 से 7 जो शो चलता है उसी में।
1: ठीक है,
2: ओके
1: सुना दीजिएगा।
2: बिल्कुल।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो,
6: नमस्कार मैम।
5: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 91.4 FM में।
6: कैसे हैं मैम?
5: जी मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
6: मैं थोड़ा तबीयत खराब हो गई, इधर का मौसम बहुत खराब है मैम, बहुत लगातार बारिश हो रही है 4-5 दिनों से। बहुत जोरों से दिन रात बारिश हो रही है, लगता है कि मैंने मानसून आ गया, इतनी बारिश हो रही है।
5: नहीं इधर तो मतलब कल से शुरुआत हुई है, थोड़ा बारिश हो रहा है।
6: ये पश्चिम बंगाल में जो चक्रवात होते हैं ना, उससे झारखंड पर सीधे प्रभाव पड़ता है ना, चटल है ना, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। आप भारती में बोल रही है मनोरमा में?
5: भारती,
6: भारती में बोल रहे हैं
5: जी। जी
6: मैं सुधीर कोल बोल रहा हूँ, कोरिजम्बा जिला देवघर झारखंड से।
5: तो आज बताइए कौन सा गाना सुनिएगा?
6: आज सुना दीजिए मैं प्रेम ग्रंथ फिल्म का गाना, ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित पर फिल्म आया गया है, जिसके बोल हैं दिल लेने की रुताई, दिल देने की रुताई।
5: पर गाना किसी को सुनवाना भी है
6: जी? सबसे पहले मैं आपको मनोरमा मैम को, जितने आर्जी हैं सबो को, और हमारे कुछ फ्रेंड हैं मदन कोल हैं, प्रभु कोल हैं, राजकुमार हैं, किशन कोल हैं, भोलानाथ कोल हैं, केदारनाथ बोल रहे हैं, प्रसाद यादव, सृष्टिधर प्रसाद यादव, रोहित कुमार सिंह, राजीव रोशन, इन सब सारे साथियों को डेडिकेट करना चाहता हूँ।
5: तो आपका गाना प्ले करते हैं
6: जी मैम,
5: सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: मैडम, नमस्कार
0: नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजिम 90.4 एफएम में।
1: जी मैं मनान बोल रहा हूँ कोटपुरा से।
0: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: हाल चाल तो बहुत अच्छा है। आप तो गाना सुनवा दी मेरा।
0: जी
1: आज कौन सा गाना सुनवाइएगा मैडम,
0: बता दीजिए।
1: ऐसा लगता है कि मेरा पहला कॉल लगा है क्या?
0: जी जी, आपका पहला ही कॉल है
1: तो कोई गाना सुनवाइए। आप पहले कॉल में आपका

0: पहला ही आपके पहले मन से ही गाना बजे
1: मेरे मन से।
0: आप गाना सुनवाई है ना वो वाला भारती जी बोल रही है?
1: हाँ।
0: तो नहीं आप नहीं बजा रही हैं?
1: नहीं वो तो मनोरमा जी बजाई थी ना।
0: अरे बाबा मनोरमा जी से वो हम रिक्वेस्ट किए थे उनसे, लेकिन उनके बाद आपसे हम कहे तो आप कहे कि हाँ ठीक है हम बजा देंगे, तो फिर आप बजाई तो दूसरा गाना बजा है ना वो स्टेज प्रोग्राम वाला। फिर आप दूसरी बार हम कॉल किए तो आप कहे कि नहीं ठीक है वो जो आप बता रहे हैं वही गाना हम खिलाफ फिल्म का बजा देंगे अलका याग्निक वाला, तो बजा था उसी लिए तो हम पूछ रहे हैं हम आपसे, हम सुने नहीं है
1: क्योंकि अभी तो मेरे पास एक कॉल बचा हुआ है तो अभी।
0: तो खैर कॉल बचा हुआ तो सब छोड़ दीजिए, तो उसमें हो मेरा है ना
1: जी।
0: हम सुने नहीं है, दूसरे तीसरे लोग सुने होंगे पर दूसरा तीसरा हमसे कहा भी नहीं है कि आपका गाना बजा है या नहीं बजा है, तो हम क्या झूठ बोलने जाए, जो बात हकीकत है वो सही है।
1: नहीं आपके लिए तो एक मैसेज आया हुआ था किसी का, किसी को आपका गाना पसंद आया था तो आपका नाम भी लिए थे।
0: हाँ वो नाम लिए थे तो छोड़िए वो बातों को, ये बचा है तो कभी बच जाएगा वो मेरा है ना। तो आज कोई खास कर जो है वो क्रांति फिल्म का गाना बजा दीजिए ना।
1: कौन सा वाला?
0: वो चाना चोर गरम वाला। चाना चोर गरम बाबू मैं लाया चाना चोर गरम।
1: अच्छा,
0: नहीं तो वो बजा दीजिएगा जिंदगी की ना टूटे लड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। हाँ तो ये दोनों में से कोई एक बजा दीजिएगा।
1: जी जी।
0: हाँ तो दोनों क्रांति फिल्म का है। हाँ तो इसी का सुना दीजिए मैडम बहुत अच्छा रहेगा। और बताइए अब आपके यहाँ बारिश हुआ है या नहीं?
1: बारिश तो खूब हो रहा है।
0: मजा आ गया एकदम ठंडा में।
1: पूरा मौसम एकदम हो गया है।
0: आप लोग भुट्टा उट्टा खाते कि नहीं?
1: हम तो बहुत खाते हैं।
0: आप मेरे इतना नहीं खाती होंगी।
1: नहीं बहुत अच्छा लगता है वो।
0: हर रोज 35-40 से जो है भुट्टा लाता हूँ, खरीद के भी लाता हूँ अपने खेतों से लाता हूँ, लेकिन 35-40 डेली भुना जाता है उसको। इसीलिए कहें कि आप मेरे इतना नहीं खाते हो, खाने के लिए हम 4-5 खा जाते हैं।
1: अच्छा। हाँ बाकी तो घर के लोग ही खाते होंगे।
0: हाँ तो और लोग भी है ना, हम ही थोड़ी है। तो चार या पाँच इतना हम खा जाते हैं है ना। लेकिन हाँ इस साल में मजा आ गया है मेरे खाने में। एकदम भुट्टे का जो बोलते हैं ना भोजपुरी में धुरकत छोड़ा देना, वही है कि धुरकत छोड़ा दिए हम इस साल में, इतना खा रहे हैं, इतना बोल रहे हैं कि तुम लोग तुम्हारे पेट में इतना हजम कैसे हो जाता है हम तो देखो। नहीं नहीं हजम करने वाली बात ही है, और पहले के भुट्टे में पहले देसीला आता था, अब जो है फॉर्म वाला आ गया ना, तो फॉर्म वाले का जो छिलका बहुत मोटा होता है, तो हम खाते हैं वो जो दूध वाला रहता है ना पूरा संचा पाल हम लोग बोलते हैं ना संचा वाला, तो उसी को हम ज्यादा दांत से नचोड़ के खाते हैं, जिससे वो पूरा फट भी जाता है दाने और हजम भी हो जाता है, उसमें छिलके मोटे नहीं होते हैं परंतु उसकी बहुत पतली होती है।
1: जी जी वो खाने में भी बहुत अच्छा लगता है।
0: हाँ मीठा भी लगता है ना, तो हम बाल ज्यादातर के वो नचोड़ के खाते हैं। तो इस साल तो मजा आ गया मैडम, जो भी हो खरीद के हो या अपने खेतों से हो, बहुत भुट्टे खाए बहुत भुट्टे खाए, इतना कर अभी अभी ऑर्डर दे दिया है, आ रहा है 35 तो बाल आ रहा है। पूरा इंजॉय बरसात के मौसम में जानते हो ये अच्छा रहता है भुट्टा खाना, बैठ के भुट्टा खाते रहो। अभी तो बहुत तूफान आ गया है, ठंड भी बहुत पड़ रहा है,
1: देखिए
0: कल परसों से कैसे होता है दिन देखा जाए। तो ठीक है मैडम आप थोड़ा ये गाना जो है क्रांति फिल्म का
1: जी जी बिल्कुल
0: है ना, वो ये दोनों में से कोई एक गाना बजा दीजिएगा। ठीक है मैडम, तो
1: रेडियो ओरिएंट में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके थैंक यू।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone din de bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है।
5: प्रणाम मैडम।
6: जी प्रणाम।
5: अरे कॉलर लगाए कोशिश की नहीं लगा फोन मैडम।
6: अच्छा,
5: अम्मी जी बोल रहे हैं बंजारी से।
6: जी जी, कैसे हैं आप?
5: ठीक हैं। गाना सुन मैडम, नाकाबंदी के गाना।
6: नाकाबंदी कौन?
5: मित्र है बात जी।
6: हेलो।
7: हाँ हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
7: जी जी, नमस्कार मैम।
6: नमस्कार। आपका नाम?
7: मेरा सुमित नाम है।
6: और कहाँ से रहने वाले हैं आप?
7: यही सरिया वार्ड नंबर 1 गोपालगंज से। और हेलो
5: हेलो, मैं यहाँ पे काम करता हूँ। सोनी पेपर है ना, दिल्ली के सारे लगे काम करते हैं बंजारी मोड़। कब गाना सुनाएंगे मैडम?
6: ये आपको गाना कल सुनने को मिलेगा शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच।
5: नाकाबंदी गाना सुना दो मैडम।
6: बिल्कुल। गाना क्योंकि सुनाऊंगा?
5: नहीं सर, नहीं सुना मैडम,
6: खुद अपने दोस्तों में सुनना है।
5: हाँ दोस्त, अन्य बात मित्र
7: वही कह रहा था। मैं कह रहा था कि मेरा यही पे है, बगल में ही आपके एरिया में बंजारी में टिश्यू पेपर का मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे बैठा हुआ है। तो मैं वही सोच रहा था कि कैसे मतलब रेडियो रिमझिम से कैसे मतलब होलसेलर से हमको कांटेक्ट कराना था, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों से को पता चले कि यहाँ पे टिश्यू पेपर का ये सेल मेरा बढ़े। अगर आपको होलसेलर सबसे कांटेक्ट हो तो आप बताइए, वैसे फिर हम वैसे भी जुड़ सकते हैं। मतलब ये तो रिटेलिंग वाला काम नहीं है मेरा, जैसे मैन्युफैक्चरिंग B2B है, मतलब जो भी होलसेलर है बस वही उन्हीं से मेरा काम रहेगा, है ना। रिटेलिंग में तो बहुत कम हो जाएगा, जैसे है ना मेरा मैन्युफैक्चरिंग होता है लगभग 150 बंडल डेली का प्रोडक्शन है ना, और रिटेलर लोग जो है 1 बंडल 2 बंडल लेगा लोग, उससे मेरा काम तो चलेगा नहीं, है ना। तो वही मैं अपना सेल बढ़ाना चाह रहा हूँ।
6: रेडियो रिमझिम में कॉल किए, बहुत बहुत धन्यवाद।
5: कल 5 बजे समय मेरा हूँ।
6: जी कल 5 से 7 में गाना बज जाएगा आपका।
5: ठीक है, नाकाबंदी कर।
6: ओके ओके, रेडियो रिमझिम में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: नमस्कार मैडम
0: जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 91.4 एफएम में।
1: रमायण गुप्ता पेनुडा खास से बोल रहा हूँ
0: जी। कैसे हैं आप?
1: बरखा बरसता।
0: अच्छा, उन्हें बारिश होता?
1: हाँ बारिश होता एकदम, घर में लुकायल बनी गया।
0: अच्छा, यानी तो अभी खुलल बावे तो मतलब
1: बरसता धीमे धीमे धीमे धीमे बरसता। गीत सुने के बाद
0: बता दी, कौन सा गीत सुने के बाद?
1: माँ का दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं।
0: अच्छा, और गाना क्योंकि सुनाऊ के बाद?
1: सुने के बाद शंकर भाई बारे ऋषिया हरपुर के जी, हमारा अष्टयाम गावेला प्रेमी बसारा लोग सुनी। गणेश चतुर्दशी के नमस्कार। गणेश चतुर्दशी अनुमत है आज?
0: हाँ हाँ आज अनुमत है।
1: हाँ दही चूरा खा लिया आज नहा धोवा के?
0: हाँ हाँ बिल्कुल खाई जाए।
1: नमस्कार नमस्कार
0: नमस्कार। रेडियो रंजन में कॉल करनी हो खाती, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: जी सलाम मैम।
3: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। हेलो
2: जी मैम, आज भी आप हैं, क्या बात है।
3: आज भी हम ही हैं।
2: चलिए अच्छा लगा,
3: शुरुआत हम ही से होती है और एंडिंग वो करती हैं।
2: जी मैम, और इतना लेट से तो स्टार्ट हुआ है मैम।
3: हो जाता है कभी कभी, अभी जस्ट रिचार्ज हुआ तो कॉल लेना शुरू की
2: मैम। तो हम फर्स्ट में लगाने वाले थे लेकिन रिचार्ज को लगा नहीं पाए।
3: कोई बात नहीं
2: मैम, मौसम का क्या हाल है उधर गोपालगंज में अभी?
3: क्यों, आप गोपालगंज में नहीं है?
2: नहीं है, लेकिन अभी हम गांव में हैं।
3: अच्छा,
2: टाउन में नहीं
3: है अभी। तो इधर एकदम मौसम, बारिश नहीं हो रहा है और ठंडा है, हवा चल रहा है।
2: मैम हवा तो इधर भी चल रहा है लेकिन हल्का हल्का बारिश भी हो रहा है।
3: नहीं अभी इधर थोड़ा रुका हुआ है
2: मैम। तो मौसम को देखते हुए हमको एक गाना सुनाइएगा।
3: बिल्कुल बता दीजिए
2: जी। गाने का बोल है बरसते पानी का मजा कुछ और होगा।
3: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
2: जी गाना तो सभी दोस्तों को डेडिकेट है, और आपको, और बताइएगा गाना कैसा है।
3: गाना तो अच्छा लग रहा है सुनने में।
2: आप कभी ना कभी तो सुनी होंगी, लेकिन सब कोई नहीं सुना है, ये गाना बहुत कम ही चलता है।
3: जी जी, तो और सब ठीक है?
2: और सब बढ़िया है मैम, बारिश को वैसे हम भी गोपालगंज नहीं जा पा रहे हैं, 2 दिनों से हो गया कल से आज।
3: अच्छा चलिए बढ़िया है, कुछ दिन आराम भी करना चाहिए।
2: नहीं मैम, आराम अच्छे नहीं लगता।
3: अच्छा?
2: घर में मन ही नहीं लगता।
3: घर में मन नहीं लगता है?
2: नहीं मैम, किचन में जाना पड़ेगा मन लगाने के लिए मैम।
3: हर
2: तरह के कुछ अलग अलग बनाएंगे तो मन लगेगा।
3: तो बनाइए खाइए।
2: और मैम और सब बताइए, आपका नाश्ता पानी हो गया?
3: जी जी, हम लोग का तो हो गया है,
2: उनसे बात हुआ, ज्यादा दिन हो गया।
3: जी तो थोड़ा लेट किए होते, 12 बजे के बाद उनसे बात हो जाती।
2: मैम चलते चलते भोजपुरी में बोलना चाहेंगे, यही
3: बोलिए
2: मैम। कब बाजी हमारा गाना?
3: और गाना काल बाजी
2: मैम, आज ना बाजी।
3: ना ना, आज मनोरमा जी के रिकॉर्डिंग कुछ बाचल भावे तो वहाँ के बजाय और हमारे काल बाजी।
2: अच्छा मैम, धन्यवाद, आज ना बोलेम, वो दिन बोलेम जब बाजी तब।
3: ठीक बा, कोनो बात नहीं।
2: और मैम बहुत वो दिन हम खुश रहनी बजा दे
3: कभी कभी रवो लोग इनके बात के हमने के ध्यान में रखते हुए करे के पड़े ला रवो लोग इनके बात के पूरा।
2: जी मैम, दोनों आदमी की खुशी चाहिए। चलिए हम तो एडवांस में धन्यवाद बोलिए देता नहीं।
3: चलिए ठीक बाबे, तब और गाना प्ले करता नहीं।
2: ओके मैम बाय।
3: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: नमस्ते मैम
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: गाना सुना है मैम?
1: नाम बताइएगा अपना।
0: सिमरन
1: जी।
0: हाँ सही सर।
1: और कौन सा गाना सुनना है आपको सिमरन जी?
0: मैम वो गाना नहीं है पवन सिंह का, जीना भी क्या जीना बिना के।
1: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
0: रेडियो रेंज सुनने वाले सभी को।
1: क्या हाल चाल है सिमरन जी?
0: बढ़िया है मैम, अपना बताइए।
1: मेरा ठीक है।
0: तो खाना हुआ है कि नहीं बारिश में?
1: जी बारिश हो रहा है तो खाना क्यों छोड़ा जाएगा, खाना तो और मजा आता है खाने में।
0: हाँ
1: तो आपका गाना प्ले करते हैं।
0: ठीक है,
1: सुनते रहिए रेडियो रेमिशन 90.4 FM।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: का हुआ पुछू बेबी?
2: बेबी
1: वो का कोई ले बरू बताइबू की बीपी बढ़ाइबू
2: तो बर्दाश्त कर लेबा ना।

0: बॉडी।
1: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।